0: रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी। अहो ऐकलत का हो आमचा रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।

कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। चल, चल।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज हम स्वामी विवेकानंद के तेजस्वी विचारों की चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत थे जिनके रोम का हर कण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। राष्ट्र के दीनहीन लोगों की सेवा को विवेकानंद ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। उन्होंने युवाओं के हृदय को जितना झंकृत किया उतना शायद किसी और ने किया हो। विवेकानंद जी ने करोड़ों देशवासियों को समृद्ध करना ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाया था। उन्होंने 4 जुलाई सन 1902 को देह का त्याग कर दिया। वे भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना

काम कर रही है। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद को केवल 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी भाई बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ, परम और पवित्र है। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इसी प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही केवल आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्यों के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। श्रोतो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजी शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुते हो स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल वचन प्रसिद्ध हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। वे कहते थे, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, करना ये है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर। कोई एक विचार ले और इसे ही अपने जिंदगी का एकमात्र विचार बना ले, इसी विचार के बारे में सोचे, सपना देखे और इसी विचार पर जिए। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है, यही समाज की रीत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हर जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किसी की निंदा न करें, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया। आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, साधारण मनुष्य अपने विचार का 90% विचार व्यर्थ विचार करता है, इसीलिए वो निरंतर भूले करता है। एक प्रशिक्षित मन कभी कोई भूल नहीं करता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर आप अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को शूरवीर मानता हूँ जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय ही सबसे कठिन विजय होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है, उसकी मांगे जो जो पूरी कर की जाती है त्यों त्यों और गर्जना करता रहता है। वे कहते थे, ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। वे कहते हैं, आज वही कल है जिस कल की चिंता तुमने कल की थी। वे कहते हैं, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, मगर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। वे कहते थे, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता, जीवन के हर कदम हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। वे कहते हैं, प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वो जो प्रेम करता है वही जीता है, वो जो स्वार्थी है वह मर रहा है। इसीलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, संभव की भी सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाए। वे कहते हैं, भय और अधूरी इच्छा ही समस्त दुखों का मूल है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। वे कहते हैं, विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता, वो भयभीत होते हैं और यही असफलता का कारण है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुन रहे हैं पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुति हो, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। वे कहते हैं, जो अपने लिए नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे। हजारों असहाय नर नारी हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहे और हम मठ में रहे, ये असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। वे कहते हैं, किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भयता ही है जो क्षण मर परम आनंद लाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो अग्नि हमें गर्मी देती है वो हमें नष्ट भी कर सकती है, ये अग्नि का दोष नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हार के डर से कोशिश छोड़ देने से अच्छा है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। वे कहते हैं, धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। ये शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ये देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीज़ें अभी भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है उसके बल पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है, महान है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा तब ये संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। वे कहते हैं, मनुष्य अपने अंदर से जितना करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा वो संसार को भी उसी तरह पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सकें। वे कहते हैं, जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आनंदाचे सुर पुण्याचा नाद आपण ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
2: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। अब हम समझ पा रहे हैं कि मेडिटेशन यानी योग, जिसके लिए हम कब से बात करते आ रहे हैं कि उसी से जीवन परिवर्तित होगा। मेडिटेशन जीवन के आखिरी पड़ाव में नहीं बल्कि शुरू में ही जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि जीवन के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो सुधर जाएं। और अगर पिछली कड़ी याद हो आपको, तो हमने देखा था मेडिटेशन का, योग का फिजियोलॉजिकली या हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं उस पर क्या असर पड़ता है। साइंटिफिकली भी अब बातें हमारे सामने आ रही हैं। आज थोड़ा और बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मेडिटेशन हमारे जीवन का जब तक हिस्सा नहीं बनेगी, दिनचर्या का हिस्सा नहीं रहेगी, तब तक हमें वो अनुभव, वो प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए हमें ये जीवन मिला था। बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। आपसे बात शुरू करते हैं। इस श्रृंखला में बहुत सी बातें की, मेडिटेशन और योग, जिसका अगर हम कहें कि अवेकनिंग का की नींव रही है, राजयोग पे हर बार आपने जोर दिया है, और आई थिंक ये वो प्लेटफॉर्म है जिसपे हमने कहा है कि जितनी छोटी उम्र से योग या मेडिटेशन की शुरुआत हो उतना अच्छा। पिछली कड़ी पे जाते हैं तो साइंटिफिकली भी अप्रूव हुआ। अभी भी हम इतना समझने के बाद योग को जीवन में, या अगर देखा जाए तो हर इंस्टीट्यूट में, क्यों नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे, क्यों नहीं अपना पा रहे?
1: भले ये हर इंस्टीट्यूट में नहीं अपनाया गया है, लेकिन कई जगहों पर इसकी अवेयरनेस और इसकी इम्पोर्टेंस अब रियलाइज़ हो रही है। काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन कॉरपोरेट सेक्टर्स, बहुत सारी कंपनीज भी मेडिटेशन को अपने यू नो डेली रूटीन में लेकर आ रहे हैं। बट मेडिटेशन इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी फोर्स्ड ऑन समवन। तो अगर कोई स्कूल के प्रिंसिपल या हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इसको इन्फोर्स कर देता है, समटाइम्स पीपल जस्ट मूव अवे कि ये क्या है, हमें नहीं इसकी ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन हैज़ टू बी बाई चॉइस। कोई भी चीज़ वैसे भी आप किसी पर फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये अंदर का काम है। बाहर का काम आप किसी पर फोर्स कर दो, आप उनसे करवा सकते हो। मेडिटेशन आप कंपल्सरी नहीं करवा सकते, वो कोई बैठ सकते हैं उसमें, लेकिन अंदर क्या चिंतन चल रहा है, अगर वो मेरी चॉइस से होगा, आई विल पुट इन माय बेस्ट इनटू इट।
0: अनदर थिंग आई वांट टू आस्क यू,
2: और एक बात जो होती है ना कि भी क्यों नहीं, क्योंकि लोग उसको रिलीजन के साथ जोड़ रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाए कि धर्म नहीं है, ये वास्तव में एक बहुत ही पावरफुल सेल्फ इम्प्रूवमेंट की साइंटिफिक टेक्निक है, तो सभी उसको अपनाएंगे।
0: वेरी ट्रू एक्चुअली। यही बात आज जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो बहुत बार मुझसे कहते हैं कि आप ना प्रोग्राम में जो होते हैं तो हमें मेडिटेशन सीखना है, ज्ञान नहीं समझना, ज्ञान की बात नहीं या वो सारी चीज़ें जो हैं, मेडिटेशन सीखना है। आई वॉन्ट टू आस्क, मेडिटेशन बिना नॉलेज के, बिना अंडरस्टैंडिंग के राजयोग क्या संभव है?
1: राजयोग तो नॉलेज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको थॉटलेसनेस एक्सपीरियंस करनी है और आपको लगता है वो हो सकती है, वो बिना ज्ञान के होगी। अगर आप कोई एक मंत्र का उच्चारण बार बार करते हैं, उसके लिए भी कोई ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन राजयोग मेडिटेशन में सोल कॉन्शियसनेस देन कनेक्टिंग टू द सुप्रीम पावर, ये उसके बिना नहीं होगी। विदाउट द नॉलेज आई एम अ सोल, क्वालिटीज ऑफ द सोल, हु इज़ द सुप्रीम पावर, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता, ये सारा ज्ञान है। दिस इज़ लाइक दो लोगों के बीच में रिश्ता जोड़ना, वो तब तक नहीं हो सकेगा ना जब तक हम उन दो लोगों को जानते नहीं होंगे। हम चाह रहे हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, प्राप्ति हो जाए, बिना ये जाने कि कौन वो दो एंटिटीज़ हैं जिनके बीच वो रिश्ता जुड़ रहा है। तो ज्ञान कोई रिलीजन नहीं है, ज्ञान उल्टा हमारे हर जो भी हम रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं उसको हमें अच्छी तरह से समझने में मदद करता है। ज्ञान जो राजयोग और ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जो ज्ञान मिलता है, व्हाट इज़ दैट, हु एम आई, एवरी रिलीजन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, एंड हु इज़ ही, एवरी रिलीजन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, ओनली इट कम्स आउट नाउ इन अ वेरी सिंपल, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक वे। तो उसको अडॉप्ट करना और फिर उसको प्रैक्टिकल में लेके आना, वो ईजी हो जाता है। रिलीजन हमारे जीवन का एक एस्पेक्ट हुआ करता है, लेकिन हमने कभी रिलीजन को जीवन के प्रैक्टिकल में नहीं लाया है। स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करता है, रिलीजन ने जो हमें सिखाया उसको अपने जीवन में लेकर आना, ताकि वो रिलीजन का जो, इसे रिलीजन इज माइट कहा गया, तो वो रिलीजन की जो माइट है आज हम क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर रहे, हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेकर
0: आए। धर्म जो था वो धारण करने के लिए था।
1: Exactly.
0: तो हमें धारण करने के लिए आध्यात्मिकता चाहिए।
1: हमने तो धर्म के नाम पर ही हम एक दूसरे से उल्टा अलग हो गए, तो इसका मतलब हम अपनी धारणाओं से काफी दूर थे।
0: तो आते हैं मेडिटेशन के फिर कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पर। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, बिकॉज हमारा बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जब मेडिटेशन में हम हैं, किस तरह से मेरे बॉडी के पार्ट्स पर और मेरे थॉट पैटर्न्स पर मेडिटेशन का प्रभाव पड़ता है।
2: जो फाउंडेशन हमने समझा था कि मेडिटेशन से सिंपैथेटिक अराउजल है वो कम होता है और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम थोड़ी सी ओवर एक्टिवेट होती है, उससे बहुत सारे बेनिफिट
0: है। बैलेंस जो था।
2: हाँ, बैलेंस हो जाता है। एक तो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, पल्स रेट कम हो जाती है, जो सांस की गति है वो डीप और धीमी होती है। साथ साथ बहुत ही पावरफुल बेनिफिट है, लैक्टिक एसिड की मात्रा काफ़ी कम होती है, नींद के साथ तुलना करें तो करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा वह कम हो जाती है। और अच्छा सा बेनिफिट है कि जो ब्रेन वेव पैटर्न्स है वो अल्फा पैटर्न्स को हम मेंटेन कर सकते हैं, उससे भी स्लो जो थीटा पैटर्न है वह भी संभव है। हमने भी देखा कि बिगिनर्स में भी मेडिटेशन से अल्फा या थीटा पैटर्न को जब मेंटल एरिथमेटिक कर रहे हैं तब भी उसको मेंटेन कर सकते हैं,
0: वो एक्टिविटी करते हुए।
2: हाँ, और एक अच्छा बेनिफिट है जिसका हमने पहले डिस्कशन नहीं किया है, वह है स्किन रेजिस्टेंस। क्योंकि जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फ्लो हो रहे हैं वो हमारे अणु-अणु में फ्लो होते हैं, और स्किन में भी एक माइक्रो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है, और जब ब्रेन वेव्स रिलैक्स हुए तो माइक्रो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है वो भी स्लो डाउन होंगे, और वह कम हुए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वह इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस से अपोजिट है, तो इसके कारण स्किन रेजिस्टेंस बढ़ता है।
0: ओके, स्किन रेजिस्टेंस मींस व्हाट?
2: स्किन एक्चुअली तो वह करंट है जो स्किन में फ्लो हो रहा है, वो करंट कम होता है, और आपने समझा भी होगा कि रेजिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपोजिट होता है करंट से, तो इसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है,
0: तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा।
2: कम हुआ
0: तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी लेस
2: भी कम होगी, साथ साथ आपकी जो कहेंगे कि अराउजल है वो भी कम होती है। आप देखना, जो लोग थोड़े नर्वस होते हैं उनके हाथों में पसीना आने लगता है,
0: एक्साइटमेंट लेवल्स जो है,
2: हाथ ठंडे होते हैं, हाथों में पसीना आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस उनके बढ़ गए, जो ब्लड फ्लो है वो कम हुआ, और इसके कारण हाथों में पसीना आने लगा। परंतु जब मेडिटेशन करते हैं तब ब्लड फ्लो बढ़ता है कि जिसके कारण भी हाथ थोड़े से आपके वार्म होंगे, वो अच्छी पॉजिटिव फीलिंग भी देता है।
0: अच्छा, इसके साथ ही क्या जो ब्रेन में जो चेंजेस की बात आपने कही थी, तो मेडिटेशन में ऐसा भी कुछ संभव है, खासकर कंसंट्रेशन की जो बात है? आजकल पेरेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता है, तो उसमें मेडिटेशन की जो रिजल्ट है वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना भी हो सकता
2: है? बढ़ाएगी। उससे पहले मैं आपको एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताता हूँ कि जिससे कंसंट्रेशन पर क्या प्रभाव है वो भी सिद्ध हो जाएगा। हाल ही में ये स्टडीज तो पहले भी हुई है, हम सब ने MRI सुना है, तो ऐसे ब्रेन का MRI कर सकते हैं। अभी ही लेटेस्ट आया है फंक्शनल MRI, कि पहले था वह था स्ट्रक्चरल MRI कि जो स्ट्रक्चर को मेजर करता है, फंक्शनल MRI जो कार्यवाही है ब्रेन की उस कार्यवाही को भी मेजर करता है। और बस एक साल पहले ही फंक्शनल MRI के द्वारा जो लोग मेडिटेशन कर रहे थे उनका फंक्शनल MRI किया गया, जो लोग नहीं कर रहे थे उनका भी किया और फॉलोअप किया गया काफ़ी सालों तक, तो देखा कि जो मेडिटेशन करते थे उनके फंक्शनल MRI में जो ब्रेन की थिकनेस है, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस कहते हैं, वह सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस भी बढ़ी, भले वह 1/1000 है, बहुत कम है, लेकिन वो थोड़ी सी भी थिकनेस बढ़ना बहुत बड़ी प्राप्ति है। उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली जब ये रिसर्च मैंने देखी, तो कि आमतौर पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस कम होती जाती है, अगर मेडिटेशन का अभ्यास करके हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस को बढ़ा सके तो एजिंग प्रोसेस को हम स्टॉप कर सकेंगे,
0: अच्छा,
2: बुढ़ापा नहीं आएगा,
0: बॉडी का एजिंग प्रोसेस,
2: हाँ बॉडी का एजिंग,
0: वंडरफुल,
1: एंटी एजिंग क्रीम नहीं यूज करनी पड़ेगी,
2: तो हार्मफुल है
0: एंटी एजिंग, और एज को रोकने के, ये जो पुराना कहा जाता था कि ऋषि मुनि जो थे वो कभी बूढ़े हुए ही नहीं, तो वो यही मेडिटेशन मस्ट हैव बीन द रीजन,
2: इसी का संबंध कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी के साथ भी है, क्योंकि हम क्रिएटिव कार्य कैसे करते हैं कि ब्रेन सर्किट्स क्रिएट करता है, और अगर थिकनेस बढ़ी तो ब्रेन ज्यादा सर्किट्स क्रिएट कर सकेगा,
0: ज्यादा जगह होगी,
2: हाँ उसमें सर्किट्स क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि न्यूरॉन्स न्यूरॉन से जुड़ते हैं और सर्किट्स क्रिएट होते हैं, तो ब्रेन ज्यादा सर्किट क्रिएट कर सकेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि वो जो ब्रेन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, भले आत्मा यूज करती है परंतु ब्रेन तो एक साधन है, वह साधन पावरफुल हुआ तो आत्मा भी उसका उपयोग सही ढंग से कर सकेगी,
0: नहीं तो ये साधन पावरफुल तब हुआ जब वो जो उसकी थिकनेस, उसकी थिकनेस बढ़ने शुरू हुई, क्योंकि हमने अगर मेडिटेशन में बैठे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए, एक्चुअली हो क्या रहा होगा
2: कि आत्मा ब्रेन से डिटैच हुई, पहले अटैच हो रही थी, उस पर स्ट्रेस दे रही थी, फोर्स कर रही थी, तो ज्यादा ही न्यूरॉन्स पर इफेक्ट होती थी और न्यूरॉन्स मर रहे थे, परंतु अब जब आत्मा डिटैच हुई तो ब्रेन को भी रेस्ट मिला, और जब ब्रेन को रेस्ट मिला तो जो न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे थे वो डैमेज होना कम हो गया, उसकी थिकनेस बढ़ी, और रिजुवेनेट हुए, जैसे हम रेस्ट करते हैं तो कैसे एनर्जी को फील करते हैं, ऐसे ब्रेन को भी एनर्जी मिली और न्यूरॉन्स भी बढ़ गए,
0: तो आत्मा अपने स्वरूप में अगर आई तो उसने ब्रेन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कम
2: करती, हाँ उस पर जो प्रेशर डाल रही थी वो प्रेशर भी कम हुआ,
0: ये पूरी श्रृंखला में हमने जिंदगी की एक्चुअली ऐसी ऐसी कलाएं सीख रहे हैं जो शायद अनअवेयर थे, अगर हम अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चों के साथ मेडिटेशन के प्रयोग करना शुरू करते हैं, कौन से वो थॉट्स हम उनके साथ दें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, शायद वो उतना ज्ञान को अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत बार बोलते हैं, अभी जैसे आपने कहा कि राजयोग में ज्ञान के बिना मेडिटेशन का कोई वैल्यू नहीं है, तो बच्चों के साथ किस तरह से ज्ञान लेकर आए कि वो मेडिटेशन में बैठ पाए,
1: सबसे पहले अपने साथ करें, यू नो, बिकॉज द मिनट पेरेंट्स विल लिसन टू दिस, वो अपने बच्चों को कहेंगे आप मेडिटेशन करो ताकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी हो जाए, ताकि आप पढ़ेंगे ताकि आपके नंबर अच्छे हो जाए, नहीं, कोई बच्चा वो नहीं करेगा जब तक हम नहीं कर रहे हैं, तो पहले हमें उसको करना है और हमें उसका एक्सपीरियंस करना है, और हमारा 100% उसके प्रति कन्विक्शन अगर होगा जो हम कर रहे हैं, इट्स ऑटोमेटिकली इन द हाउस, वो घर का एक कल्चर बन जाता है, और जो हमें लगता है कई बार कि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है बहुत सारे लेबल्स लगते जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस हम ज़्यादा होते जाते हैं, एक बच्चे के लिए सोल कॉन्शियस होना इट्स क्वाइट नेचुरल, तो इसलिए बच्चों के साथ अगर आप ये छोटी छोटी बातें भी शेयर करेंगे, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, दे आर एबल टू एक्सपीरियंस इट एंड रिलेट टू इट फास्टर समटाइम्स दैन द एल्डर्स, तो जो हमने सीखा इट्स नॉट डिफरेंट बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, जो हम कर रहे हैं वो उनके साथ भी करना है, अगर उनके साथ हम 2-3 मिनट भी ये करें, पीसफुल सोल कनेक्टिंग टू द ओशन ऑफ पीस, और वो तो विजुअलाइज भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, बच्चे बहुत प्यार से इसको करते हैं, एंड फिर उनको ये सिखाएं कि हमेशा पढ़ने से पहले 2-3 मिनट ये करके फिर पढ़ने बैठें, इट विल हैव अ वंडरफुल इफेक्ट, एंड क्योंकि वो मेडिटेशन ऐसे धीरे धीरे कर रहे हैं, उनके थॉट्स फोकस्ड होते जा रहे हैं, सेल्फ इस्टीम धीरे धीरे बढ़ रही है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, कॉन्सेंट्रेशन क्यों टूट रही है, मेरा डिस्ट्रैक्शन है ना किसी न किसी और बात की तरफ, कोई और चीज़ मेरे मन में है, किसी से बात करने को मन कर रहा है, खेलने का मन, दीज डिस्ट्रैक्शंस विल स्टॉप ग्रेजुअली, कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम ईजियर फॉर द चिल्ड्रन, तो इसलिए मेडिटेशन छोटे बच्चों को बहुत हेल्प करेगा।
2: हमने जो ब्रेन की थिकनेस की बात की ना, और दो छोटी छोटी स्टडी से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिससे भी लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, हमने पहले चर्चा की थी ब्रेन में 900 केमिकल्स हैं, उसमें से एक होता है डोपामाइन, तो ये रिसर्च की गई कि जो मेडिटेटर्स थे और लोग, और एक केमिकल है सी रिक्लोपाइन, यह केमिकल को इंजेक्ट किया गया और फिर वो ब्रेन के रिसेप्टर पर कितना चिपकता है, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कहते हैं, अगर वो कम बाइंड हो रहा है तो ज्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है.
0: ओके.
2: एक से करीब 6 गुना ज्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है. तो ये देखा नॉन मेडिटेटर्स और मेडिटेटर्स में कि करीब 60% ज्यादा डोपामाइन रिलीज हुआ जो मेडिटेशन कर रहे थे उनमें. सिरिक्लोपाइड था वो करीब 6-7% कम हुआ, उसका मतलब इट इज ऑलमोस्ट 60% मोर. ये भी एक बहुत ही प्रेरणादायक रिसर्च है.
0: डोपामाइन इज अ गुड केमिकल,
2: वेरी गुड केमिकल एक्चुअली. वो जो दवाइयां भी लेते हैं ना डिप्रेशन में आदि, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं हो सकता है, कि यहाँ तो आप मेडिटेशन करते हो डायरेक्टली डोपामाइन को रिलीज कर रहे हो. और एक बात है आईजी एंटीबॉडीज, जो हमारी लार में आईजी एंटीबॉडीज होती है, कि वो जितनी ज्यादा हो तो आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, आपकी जो इम्यून कैपेसिटी है वो अच्छी होती है. तो ये भी देखा कि जो लोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं उसमें आईजी एंटीबॉडीज करीब डबल होती है जो नहीं कर रहे उनकी कंपैरिजन में, जो भी प्रूव करता है कि हमारा रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ता है.
0: डॉक्टर साहब एक और बात जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन, आज अभी हमने बच्चों से जुड़ी हुई बात तो की, कई बार लोग कहते हैं कि हम किसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन के वो तरीके हैं, ध्यान का ध्यान करते हैं, तो क्या उस फिलॉसफी को मानते हुए जीवन की राजयोग अपना सकते हैं?
2: बिल्कुल अपना सकते हैं, क्योंकि उल्टा मैं तो समझता हूँ कि जो ऑलरेडी कुछ फिलॉसफी को समझ रहे हैं वो राजयोग को जल्दी समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दे आर डूइंग लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ आवश्यकता यह है कि फिर सही नॉलेज को भी समझे, या तो फोकस को समझे. जैसे भी आत्मा की बात तो सब करते हैं, आप देखेंगे बचपन से हमको आत्मा की बात बताई गई है, लेकिन हमारे मन में राजयोग से पहले मेरे में क्या था आपको बताता हूँ, यही था कि भी ये शरीर इंपॉर्टेंट है, आत्मा जैसी कोई चीज है इसमें. किंतु राजयोग के बाद ये क्लियर हुआ कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर गौण है. आगे चलते चलते तो ये हुआ कि भी आत्मा ही सब कुछ है. आत्मा ठीक हो गई, उसकी अवेयरनेस अगर सारा दिन रही तो बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा. तो बस जो लोग और रियल चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो शायद इस बात को और जल्दी समझ जाएंगे. इस बात को समझ ले और फिर अगर राजयोग का अभ्यास करने लगे तो वह भी अभ्यास कर सकते हैं, उल्टा और गहराई में जा सकते हैं.
0: क्योंकि आपने जो बात कही कि इट्स अ टेक्निक, यू नो, प्रॉपर सही लाइफस्टाइल अपनाने की टेक्निक है. आपने एक और भी बात कही थी कि कॉर्पोरेट्स में भी राजयोग मेडिटेशन के अब यू नो ये एस्पेक्ट्स लिए जा रहे हैं, वो कैसे इनकॉर्पोरेट? बहुत से लोग देख रहे होंगे, बहुत कुछ जानना चाहेंगे, इंस्टीट्यूट्स के प्रिंसिपल्स देख रहे होंगे, टीचर्स देख रहे होंगे, वो चाहेंगे कि किस तरह से शुरू करें, बिकॉज इनिशिएट नहीं कर पाते. अब समझ में आ रही है, अपना भी अनुभव किया, लोगों ने इंडिविजुअल किया, मास लेवल पे करना चाहते हैं.
1: कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि अगर वो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हम पहले सीधा मेडिटेशन नहीं कराते, मतलब बेसिक थोड़ा मिनट एक्सपीरियंस कराते, बट वी आर नॉट शेयरिंग द राजयोग फिलोसफी एकदम से, बिकॉज शायद पूरी जो टीम है दे आर नॉट रेडी फॉर इट या दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट. लेकिन हर एक टीम मेंबर को स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, इमोशन मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट, लीडरशिप क्वालिटीज, इनके ऊपर तो ज़रूर चाहिए. अब आज दिन तक बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई इन बातों के ऊपर, लेकिन इन किसी भी वर्कशॉप्स का एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं था, एक कॉन्शियसनेस लेवल पर फाउंडेशन नहीं था. ज़्यादातर बातें बाह्य हुआ करती थी. आज हम सुनते हैं कि बहुत लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स कराते हैं तो उसमें कहते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो नेचुरल है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो चाहिए मोटिवेशन के लिए, क्योंकि जो करा रहा है वर्कशॉप उसका अपना एक्सपीरियंस ही वो है कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस तो होगा ही, तो वो औरों को भी क्या कहेगा. अब जब बाकी सुन रहे हैं उनके अंदर तो ऑलरेडी स्ट्रेस है, तो वो कहेंगे हाँ राइट, थोड़ा तो है. फिर थोड़ा और ज़्यादा कब हो जाता है उसका तो पता ही नहीं चलता. लेकिन जब स्पिरिचुअल लेवल पर उसकी प्रैक्टिस हो रही है तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी, कॉन्फिडेंटली, क्योंकि हर एक का अपना अनुभव है. और सिर्फ बहनें आश्रम में रह रही हैं वो नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करते हुए भाई बहन एक कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं. अब जब वो अपने अनुभव से और स्पिरिचुअल फाउंडेशन से सभी टीम के साथ शेयर करते हैं, बिकम्स ईजियर फॉर देम टू वर्क ऑन इट. तो कॉर्पोरेट्स में इस तरह की वर्कशॉप्स होती, फिर उनमें से जिनको उसमें और इंटरेस्ट आता, देन वी स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन विद देम इन द वर्कशॉप. कई ऑर्गेनाइजेशंस में मेडिटेशन रूम्स खुल चुके हैं और सभी एम्प्लॉयज़ जिनको भी इंटरेस्ट हो वो हर रोज़ ऑफिस में आने से पहले और ऑफिस से जाने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन रूम में जाकर बैठते हैं. कई जेल्स के अंदर मेडिटेशन रूम्स खुले हैं, कई स्कूल्स के अंदर खुले हैं, छोटे छोटे साइलेंस रूम कह सकते हैं उसको, एक्सपीरियंस रूम कह सकते हैं, समवेयर वे यू कैन अनवाइंड, रिलैक्स, फोकस एंड चैनलाइज. सो स्कूल्स में हम वैल्यूज पर वर्कशॉप्स करते हैं एंड रिलेशनशिप्स, टीचर्स के लिए पेरेंटिंग वर्कशॉप स्कूल्स में होती है, बट ऑन अ स्पिरिचुअल फाउंडेशन धीरे धीरे मेडिटेशन उसमें इंट्रोड्यूस होता.
0: एक बहुत इंटरेस्टिंग अभी बात आपने कही है, उसको मैं लेना चाहूँगी. आपने कहा कि जैसे ही स्पिरिचुअल नॉलेज हमें आती है, वेरी कॉन्फिडेंटली वी से इट इज़ अननेसेसरी. स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, यू नो, ये सारी चीज़ें जिन्हें अभी तक हमने नेचुरल कहा था, थोड़ा थोड़ा थोड़ा हो सकता है. और जैसे आपने कहा कि मोटिवेशन के लिए चाहिए था, बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा गुस्सा, हेल्दी गुस्सा, पॉजिटिव गुस्सा, यू नो, पॉजिटिव एंगर, पॉजिटिव ईगो, यू नो, ये सारी चीज़ें आप बहुत लोग बोलते हैं, चाहे राजयोग का ही अभ्यास जो कर रहे हैं. कि अच्छा, आपने कहा कि इट्स एब्सोल्युटली नॉट नीडेड, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन है तो सी. और वो जो हमें सिखा रहे हैं,

0: आएगा ना उसके अंदर, इट विल बी ऑफ अ डिफरेंट लेवल.
1: आई विल नॉट गिव लिवरेज.
0: यस, लेकिन इफ आई से कभी कभी बीमार होना तो नेचुरल है, परफेक्ट हेल्थ तो पॉसिबल ही नहीं है. तो मैं अपने आप को बहुत लिबर्टी दे देती हूँ गलत चीज़ें खाने की पीने की, जस्ट बाय सेइंग कि कभी कभी बीमार होना तो नेचुरल है. अब जो अगर मैंने अपने आप को कहा कभी कभी बीमार होना नेचुरल है, तो वो कभी कभी की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ती जाती है. आज हम ब्रह्मा कुमारी में अपनी दादीज को देखते हैं. दे आर 85-90+, हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओवर 9 लाख पीपल, एंड वी आर सीइंग देम एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री इन एवरी सिचुएशन. कौन सी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जो इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आई होगी, जहाँ 9 लाख लोग हैं, 25,000 सिस्टर्स हैं. आज एक घर में एक बेटी हो तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं. जहाँ 25,000 बहनें हैं, 9 लाख ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिचुएशंस आएंगी. वी हैव सीन देम एब्सोल्युटली स्टेबल, एंड देन व्हेन वी लुक एट देम एंड वी से यस दिस इज पॉसिबल. फिर हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि कहाँ पहले थे, कहाँ अभी हम पहुँच रहे हैं, एंड देन वी आर वेरी क्लियर कि यस वी विल ऑल्सो रीच देयर. बट वो कन्विक्शन के साथ हम करते हैं तो फिर एफर्ट बहुत जेन्युइन और फुल हार्टेड एफर्ट होता है. वी आर नॉट एबल टू गिव लिबर्टी टू आवरसेल्व्स. अब इसमें अगर थोड़ा स्ट्रेस हो भी गया, गुस्सा आ भी गया, आई इमिजिएटली हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड गेट माई सेल्फ बैक टू द फाउंडेशन. लेकिन अगर मैंने कहा होता कि थोड़ा थोड़ा तो ओके है, तो हर टाइम होगा तो हम कहेंगे थोड़ा थोड़ा तो ओके है, थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा करते करते संस्कार पक्का हो गया. जब कहा जीरो पर लेकर आना है तो थोड़ा थोड़े को ख़त्म किया तो संस्कार भी फिनिश हो जाता है. सो द होल पर्सपेक्टिव विल चेंज.
1: इज इट पॉसिबल टू लीड अ परफेक्ट लाइफ द वे वी आर टॉकिंग?
2: जैसे शिवानी बेन ने समझाया कि अगर वो गोल होगा और हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो करते करते एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे, और गोल नहीं होगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगी.
1: कई बार क्या होता है कि उसका ही स्ट्रेस, मतलब खासकर मैं इसी की बात नहीं कर रही, जिंदगी में अगर हम स्पिरिचुअल कोई फिलॉसफी को लेते हैं, कई बार हम उस स्ट्रेस में भी आ जाते हैं कि वी हैव टू डू इट परफेक्टली. तो वो जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें अपनों से दूर करता है, लोगों से दूर करता है. उससे कैसे बचें? आज हम लाइफ की स्किल्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो सारे एस्पेक्ट्स चाहते
0: हैं. वो तब होता है जब हमारा सारा फोकस बाहर की चीज़ों पर है, मुझे बाहर सब कुछ ऐसे ऐसे करना है, चाहे वो रिचुअल्स को लेकर है, चाहे वो कोई भी अपने जीवन की प्रिंसिपल्स को लेकर है. इट इज़ वेरी गुड अपने प्रिंसिपल्स के साथ बहुत अटेंशन और यू नो स्ट्रिक्टली चलना. लेकिन अगर मेरा अटेंशन अंदर नहीं है तो कई बार मैं अपने बाहर के प्रिंसिपल्स पर स्ट्रिक्टली चलने के लिए गुस्सा भी कर सकती हूँ, किसी को डांट भी सकती हूँ, इरिटेट भी हो सकती हूँ अगर मैं नहीं कर पा रही, देन आई हैव लॉस्ट द फोकस एनीवेज. लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल्स की बात हो रही है वो अंदर है, कि अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर कांस्टेंट अटेंशन रखना है. तो फिर ये बातें टेंशन नहीं क्रिएट करेंगी. यू विल ओनली डू इट विद कांस्टेंट अटेंशन इनसाइड, एंड इट्स अ वेरी ग्रेजुअल नेचुरल प्रोसेस, फोर्सफुल नहीं है. अगर बाहर से अंदर की तरफ परिवर्तन लाना होता तब हम कुछ फोर्स कर सकते हैं. ये तो एक नेचुरल धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए पता भी नहीं चलता एक्चुअली कि कब परिवर्तन हो रहा है. वी डोंट इवन कम टू नो. जब सिचुएशन आती है कोई
1: तब पता चलता.
0: अच्छा पहले अगर हम होते तो वी वुड हैव रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे, टुडे वी हैव रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे. एब्सोल्युटली.
2: और एक बात ये भी होती है कि फाउंडेशन फाउंडर जो है वह क्या बताते हैं. हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा ने भी एक लाइट लाइफ लीड की, जो भाई बहन थे बिल्कुल बाबा रिलैक्स होते थे, खेलते खेलते सिखाया. दादी प्रकाशमणि जी को हमने देखा एकदम लाइट थे, अंत तक बिल्कुल लाइट थे. तो जब उनमें लाइटनेस है तो जो पुरुषार्थ करने वाले हैं उनमें भी लाइटनेस आ जाती है, स्ट्रिक्टनेस नहीं आती.
1: लीडर पे बहुत डिपेंड कर रहा है. जो आपका जो जैसे चाहे वो घर का बड़ा हो, परिवार के बड़े हों, या फिर ऑफिस के या ऑर्गेनाइजेशन के हों, कहीं के भी हों, सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल हर बार की तरह हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं. वो स्किल्स अब तो मैं कहूँगी कि भूले हुए थे लेकिन काफ़ी समय से भूले हुए थे, काफ़ी जन्म से भूले हुए थे ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपने जीवन में हम देख ही नहीं पा रहे थे. अब इसको देख रहे हैं तो नेचुरल लग रहे हैं. थैंक यू सो मच. अब मेडिटेशन के महत्व को समझा, खासकर इस नई जीवन शैली में अगर हम नींव मेडिटेशन से रखते हैं, योग से रखते हैं, खुद अपने आप को पहचानने से रखते हैं, फिर देखें

धीरे धीरे, क्योंकि आज हमने उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी देख लिए, जान लिया, हम अवेयर हैं अब कि हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर क्या असर पड़ रहा है, अब इसको देखना शुरू करें। अभी तक रिश्तों को देखा था, अभी तक इनफैक्ट बाहर की चीज़ों को देखा था कि मेडिटेशन से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, अब अपनी बॉडी के हर हर एस्पेक्ट, हर अंग को देख पाएंगे। कोई बात मन में है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में आज की कड़ी में इतना ही। फिर मिलेंगे। ओम शांति।

0: रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी। अहो ऐकलत का हो आमचा रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी।
1: मैं जंगल का राजा

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।

0: मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग विशेष बातें करेंगे करियर के बारे में। करियर इन इलेक्ट्रिक में हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम इस फील्ड में जो है आगे बढ़ सकते हैं और अपना जो है करियर अच्छा से बना सकते हैं। तो हमारे साथ आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, गगनदीप सिंह, जो लुधियाना से बिलोंग करते हैं, पंजाब से, और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आप सभी को अपना अनुभव शेयर करेंगे और साथ ही साथ किस तरह से हम अपना करियर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का हमारा भी मन रहता है, कभी कभी हम लोग खिलौने देखते हैं या वायरिंग देखते हैं तो एक छोटा सा आकर्षण रहता है ना। कभी कभी हम लोग बैटरी और वायर जोड़ के लाइट जलाते हैं तो कितनी खुशी हो जाती है, बचपन की बातें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक के साथ जोड़ने के लिए या इलेक्ट्रिक चीज़ों में आपको रुचि बताता है और आप अपना करियर इसमें कर सकते हैं। तो आइए, आज के इस शो में हम लोग गगनदीप सिंह से बात करेंगे कि उनके जीवन का जो यात्रा है वो कैसे शुरू हुआ और उन्होंने करियर कैसे अपना फ्रेम आउट किया, उसके बारे में जानते हैं। तो आप सभी की तरफ से गगनदीप सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया जी।
1: जी जी जी। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और अपनी बचपन की कुछ यादें ताज़ा करिए। आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ पर हुआ?
2: मेरा जो बर्थ है वो है फिरोजपुर में, पंजाब में।
1: जी जी जी।
2: जो कि बहुत वैसे फेमस है, हुसैनी वाला बॉर्डर है ना, हमारे दो बॉर्डर पड़ते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: एक तो अमृतसर में है वाघा बॉर्डर है, तो एक फिरोजपुर में है हुसैनी वाला बॉर्डर। तो 10 किलोमीटर दूर हमारा वो शहर है, तो वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई। तो मैंने 4th तक वहाँ पे स्टडी की। तो मेरे पिताजी रेलवे में है ना, तो उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गया अंबाला में, सानेवाल में, लुधियाना में, ऐसे करके।
1: अच्छा।
2: तो उनकी ट्रैवलिंग की वजह से फिर मेरे को
1: स्कूल भी आपका चेंज ही होता रहा।
2: स्कूल चेंज होता रहा बीच बीच में। तो पर जिस भी जगह से स्कूल छोड़ा तो वहाँ पे जो हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल होते थे वो कहते जाना इनको नहीं, इसको नहीं लेके जाना, तो दूसरे दोनों भाइयों को ले जाओ। तो शुरू से स्टडी में इंटरेस्ट था, तो चलो बाद में फिर ऐसे करते करते फिर 4th तक वहाँ पे स्टडी किया फिरोजपुर में।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ जी, वो हमारी फैमिली सारी वहाँ पे थी। तो सारे मेरे पिताजी और बड़े ताया जी, मेरे ग्रैंडफादर, वो सारे रेलवे में थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ जी,
1: बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा स्कूलिंग के बारे में, मना जहाँ पर आपकी एक ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग को भी अच्छा लगता है कि इस जगह पे।
2: हाँ,
1: तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये क्या घड़ी घड़ी चेंज करना है?
2: इसमें ऐसा है अभी, चलो जिस भी जगह पे गए, पहले थोड़ा सा अटैचमेंट थी। हाँ, ग्रैंड मदर के साथ।
1: अच्छा,
2: तो जब जाते थे तो थोड़ा सा रहता था, अभी इमोशनली टच होता है फिर पूरा ना। तो जब फिर वापस आना फिरोजपुर में तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाना। तो पर वहाँ जैसे वहाँ पे सानेवाल में गए पहले, तो 1997 के अराउंड वहाँ पे गए, तो थोड़ा सा मन नहीं लगा पढ़ाई में या क्लास में भी रोते रहना। फिर वहाँ पे एक और दिक्कत आ गई भी, वो कहते भी जो आपका स्कूल है वो एफिलेटेड नहीं है। तो मैं 6th में था, तो वो कहते आपको 7th में 5th भी करनी पड़ेगी।
1: अच्छा।
2: तो उस टाइम पे भगवान ने बहुत साथ दिया भी, चलो 5th में भी मैंने 7th में एग्जाम दी और 6th के भी 7th में चले, और मेरे 5th में भी 75% आ गए 7th में करते करते।
1: अच्छा, क्या?
2: तो 6th में भी फिर मैंने, वैसे तो मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर मैंने हिंदी मीडियम चूज किया।
1: अच्छा।
2: तो मेरे में सारे लगभग जो संस्कार हैं वो हिंदू धर्म वाले हैं, या कह लो सनातन धर्म वाले हैं। तो शिवरात्रि का जैसे होता था वो मेरे को शुरू से रहता था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, दीपावली का। तो ये सारे मेरे में, तो मैं एक पंजाबी लड़का एक ही था भी जो हिंदी मीडियम जिसने चूज किया।
1: अच्छा।
2: तो और उसमें भी मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे थे, वो हिंदी मीडियम वालों से भी ज्यादा थे। तो वो फिर सानेवाल में न्यू मॉडल स्कूल था।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो वो बहुत अच्छा उस टाइम पे अच्छा स्कूल था, आजकल तो काफी ब्रांडेड स्कूल आ गए ना। अच्छा, तो उस टाइम पे वो कह लो भी क्रीमी स्कूल था उस टाइम पे। हाँ जी। तो वहाँ पे मैंने स्कूलिंग की, तो 10th में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, और मेरिट में आने से मेरे थोड़े से मार्क्स रह गए थे, पर मेरे 100 of 100 मैथ्स में आए, जो कि सभी का कह लो भी डिफिकल्ट लगता है, 100 out of 100। और अच्छा। दो जनों के आए थे, एक मेरे और एक जो लड़की आई थी मेरिट में, उसके आए थे। हाँ जी, बहुत अच्छा वहाँ का जो सफ़र है उस स्कूल का, तो यादें उससे काफ़ी जुड़ी हुई हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि बचपन की हम लोग का जैसे कुछ इवेंट्स होते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी होते हैं, उस समय भी हम लोग का जो है कहीं ना कहीं हम लोग फंक्शन में जुड़ जाते हैं। अच्छा। तो क्या ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ आपने या स्पोर्ट्स में कुछ एक्टिविटीज़ बचपन में रही हो?
2: हाँ, बचपन में मतलब बचपन से लेके अभी तक का जो मेरा ना वो जो सफ़र है भी, उसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, अंतर्मुखी, जो कि इस टाइम पे जो मेरे को लगता भी वो जरूरी भी था, अभी मेरे को पता चला भी उसकी वैल्यू कितनी थी। तो मैं शुरू से ज़्यादा इंट्रोवर्ट ही रहता था, ज़्यादा मतलब मेरे को उसमें थोड़ी सी वो रहती थी, झिझक रहती थी। तो मैंने पार्टिसिपेशन कम ही किया जब स्कूल में थे तो फिरोजपुर में, तो उस टाइम पे मैंने जैसे हमारे को ना पिकनिक पे लेके जाते थे, एक वहाँ पे सारागढ़ी गुरुद्वारा था, तो उस टाइम पे वहाँ पे मैंने थोड़ी से पार्टिसिपेट किया था, जैसे आर्मी का उन्होंने बनाया था भी, उन्होंने उस टाइम पे बोला भी आपको आर्मी की, एक होता है ना पिकनिक पे वो पार्टिसिपेशन करवाते हैं, चाहे आर्मी की करवाते हैं चाहे वो भांगड़ा में करवाते हैं, तो उस टाइम पे मैंने पार्टिसिपेट किया था। बाकी बीच बीच में तो होती रही हैं, जैसे क्वाली की एक बार पार्टिसिपेशन हुई वो भी मैंने की थी।
1: अच्छा।
2: फिर हमारे वहाँ पे फंक्शन होते थे स्कूल में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया, तो गेम्स में भी मैंने डिप्लोमा में किया।
1: अच्छा।
2: उसके बाद टेंथ के बाद फिर मैं डिप्लोमा किया, तो वो मैं फिर दोबारा वहाँ पे अपने होम टाउन में चला गया फिरोजपुर में, वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजपुर है, तो वहाँ पे मैंने 3 ईयर डिप्लोमा किया
1: जी,
2: 2002 से 2005 तक। तो वहाँ पे मैंने हॉकी 2 साल खेली वहाँ पे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे स्कूल लाइफ में हमारी जो है टीचर्स होते हैं या हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, उनके साथ भी हमारी बड़ी अटैचमेंट हो जाती है कभी कभी, कोई टीचर पढ़ाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, उनके साथ जो है हमारी एक बनी रहती है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में जो टीचर आपको याद रहे या प्रोफेसर?
2: हर एक जगह पे एक्सपीरियंस रहे हैं, हर एक स्कूल में।
1: जी जी।
2: तो जैसे न्यू मॉडल स्कूल सानेवाल में जब हम गए, फिरोजपुर से शिफ्ट हो गए पापा की जॉब की वजह से, तो वहाँ पे चलो स्कूल में तो पढ़ते, तो वैसे ही मैंने थोड़ा सा न्यू था ना स्कूल में, तो थोड़ा सा लगा भी इंग्लिश थोड़ी सी उस टाइम पे वीक थी, लग रहा था ऐसे। तो फिर बाद में जो सब्जेक्ट में मैं वीक था उसी में मैं टॉपर बनता गया धीरे धीरे।
1: अच्छा, अच्छा।
2: जैसे 8th में भी मैं फर्स्ट आ गया, फिर जैसे लड़कियां होशियार होती ना पढ़ने में, वो भी मतलब फिर बैक एंड पे चली गई धीरे धीरे।
1: अच्छा, अच्छा।
2: मतलब मैंने सभी को पिछाड़ दिया कह लो। फिर उस टाइम पे एक टीचर थे हमारे, वो इंग्लिश भी पढ़ाते थे, और एक शशि मैडम, जैसे हमारे शशि मैडम थे, तो वो पढ़ाते थे उस टाइम पे, तो वो उस टाइम पे कहते थे तुम बहुत आगे जाओगे, उन्होंने मुझे उस टाइम पे ही बोला था,
1: मोटिवेट किया।
2: हाँ जी। तो वो टीचर एक कह लो भी इस टाइम पे भी अभी मिल नहीं पाया उनसे काफ़ी टाइम, क्योंकि अभी जॉब की वजह से जाना नहीं हुआ। तो पर मैं बीच बीच में ना, जैसे इससे पहले मेरी जॉब थी एक, तो मैं टीचिंग करता था, 5 साल मैंने टीचिंग किया डिप्लोमा कॉलेज में, तो उससे रिलेटेड मेरे को जाना पड़ता था काउंसलिंग के लिए, उस टाइम पे बच्चों की काउंसलिंग करते थे भी, आप यहाँ पे हमारे कॉलेज में एडमिशन करो, तो मैं उसी स्कूल में जाता था, तो फिर वहाँ पे मैथ्स वाले सर भी होते थे, तो वो भी बताते थे इसके 100 out of 100, वो फिर मेरे से वो थोड़ा सा बुलवाते भी थे। अच्छा, भी आप अच्छा। बच्चों को प्रेरणा दो थोड़ी सी। तो इसके लिए हम बिहार पटना तक भी गए अभी काउंसलिंग के लिए, वहाँ से बच्चे लेने के लिए। हाँ जी। तो वो एक टीचर थे भी जो हिंदी पढ़ाते थे हमारे को, शशि मैडम, और डिप्लोमा में भी थे और बीटेक में भी थे। बीटेक में मेरे एक टीचर थे, जब मैंने बीटेक किया सिटी इंस्टीट्यूट जलंधर से किया
1: जी, जी।
2: तो वहाँ पे भी हमारे जो एचओडी थे उनसे मतलब मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मतलब मेरे में उस टाइम पे थोड़े से होते ना जब हम पढ़ते हैं वो थोड़े से हम कह लो मैच्योर नहीं होते पूरे, तो मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा सा और था, मैंने बाल खड़े किए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने फिर मेरे को समझाया भी थोड़ा सा, मेरे को उनकी बातें टच हुई फिर, तो फिर अभी वो भी सेम डिपार्टमेंट में है मेरे। तो हमारे उस कॉलेज में जितने भी इलेक्ट्रिकल के टीचर होते थे वो सारे बिजली बोर्ड में सिलेक्ट हो जाते थे।
1: अच्छा, अच्छा।
2: उस कह लो भी उस कॉलेज को एक ऐसा वरदान मिला हुआ था।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: भी मैंने नहीं देखा भी जो उस कॉलेज में गया भी वो टीचर इस डिपार्टमेंट में ना आया हो। और एक वो एचओडी हमारे, उनका नाम शुभिंदर सिंह सिद्धू है, वो मोहाली में जॉब करते हैं।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
2: तो वो भी कह लो भी उनकी रिस्पेक्ट दिल से है।
1: चलिए, गगनदीप सिंह जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, और आशा करूंगा बचपन की यादें आपने ताज़ा करी, आपने पढ़ाई के दौरान जो चीज़ें हुई उसके बारे में आपने बताया, और निश्चित तौर पे हमारे विद्यार्थी मित्र जो हमें सुन रहे हैं उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा, और अपनी बचपन की यादें, स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ की कुछ ताज़ी बातें जो हैं अच्छी तरह से उनके जीवन में आ रहा होगा, यादें आपकी जो है खूबसूरत बन रहे होंगे। बचपन की यादें किसे अच्छा नहीं लगता है ना, एक बार हम लोग खो जाते हैं तो बड़ा एक सुकून मिल जाता है। तो निश्चित निश्चित तौर पे आपको अगर कभी कोई बात ऐसी मुश्किल वाली लगती है तो बचपन की बातें ज़रूर याद कीजिए, इससे आपको जो है बेहद सुकून मिलेगा और अच्छा लगेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ ले चलता हूँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जो है विशेष गगनदीप सिंह जी हैं, जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी बात हो रही है, जिस तरह से हम लोग पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखते जाते हैं लेकिन अपने करियर को लेकर कहीं ना कहीं हम लोग उतना अवेयर नहीं होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप करियर को लेकर गगनदीप जी, किस तरह से बचपन में आपको क्या बनना पसंद था, किस तरह के विचार आपके मन में आते थे, इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं, ऐसे कुछ सोचते थे तो किन चीज़ों पे फोकस करते थे?
2: जैसे बचपन में होता ना, भी हमें टीचर हमारे पूछते हैं भी आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है ना, वो नॉर्मली हम आंसर दे देते हैं भी। कोई कहता मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई डॉक्टर कह देता, कोई साइंटिस्ट कह देता। ऐसे मेरे मन में भी कुछ ऐसा विशेष नहीं था, क्योंकि हमें पता ही नहीं अभी हमारा एक्चुअल में गोल क्या होता है। गोल तब बनेगा ना भी जब हमारे पास पता भी हम कर क्या रहे हैं, हमें एक्चुअल में हम किस ट्रैक पर चल रहे हैं, या फिर हमें सोर्स कौन से मिल रहे हैं, क्योंकि वो गाइडेंस नहीं है, वो ना पेरेंट्स देते हैं। टीचर सिर्फ हमें ये सिखा देगा भी आप ये बन जाओ, पर उसके लिए हमारे पास ये नहीं रहता भी एक्चुअल में मेरे अंदर क्या चल रहा है। हमें अपनी क्वालिटीज नहीं, अगर हम शॉर्ट में मैं बोलूँ तो हमें अपनी क्वालिटीज नहीं पता होती है, और उसको लगता भी मेरे को उसको जानने के लिए हमें शायद थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में या फिर भगवान की तरफ जाना पड़ता है, तभी हमें वो क्वालिटीज आती हैं। तो इसके मेरे कुछ अनुभव बचपन से ही, जैसे भगवान ने किस किस टाइम पर हेल्प की है, बहुत अच्छे इसमें अनुभव हैं। तो जब आप अगर चाहेंगे तो मैं उसको बताऊँगा भी, एक बहुत अच्छा अनुभव था उस टाइम पे भी।
1: जी जी जी, जरूर सुनाइए, स्वागत है।
2: हाँ जी, तो उस टाइम पे ना जैसे हम सानेवाल में थे, तो जैसे मेरे फादर के पास एक फ़ोन था, जैसे वो ख़राब हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने वो फिर कह लो उसको मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए दे दिया किसी के पास। तो उनको बदले में नया और कोई फ़ोन मिल गया। तो थोड़े दिन में ना, जैसे हमारे पड़ोस में एक रहते थे, अंकल रहते थे, तो उनके बेटे के साथ ही उन्होंने, चलो उन्होंने ही गाइडेंस दी थी उस टाइम पे, ये भी देखो मतलब ये भी एक भगवान की कृपा कहेंगे, उन्होंने बोला भी मेरे लड़के ने भी डिप्लोमा करना है, आप भी इनको डिप्लोमा करवा दो। हमें अच्छा। नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है टेंथ के बाद।
1: अच्छा,
2: कोई
1: अच्छा।
2: वही ना भी हमें पता ही नहीं होता हमारे में विशेषताएँ क्या, पर ये पता था भी मेरे को ये क्वालिटीज पता थी भी शुरू से भी, मैं ऑनेस्ट हूँ और मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है, या सच्चाई सफाई वाली, वो मेरे को पता था, मेरे में ये और नहीं कुछ पता था भी और क्या। तो वही अंकल ने फिर अपने लड़के को भी डिप्लोमा करवाया, तो उसके साथ चलो पिताजी ने मेरे को भी साथ में डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन दिलवा दी। तो उन्हीं दिनों में क्या हुआ भी, मैं जैसे ना वो फ़ोन की बात आई, तो फ़ोन थोड़े दिन बाद वो अंकल बोले भी ये जो फ़ोन है ना वो आईजी पता होगा ना आपको, जो पुलिस में पोस्ट होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो चंडीगढ़ के कहते आईजी है, ये उनका फ़ोन है। कहते ये फ़ोन में मतलब आपको कैसे मिला ये फ़ोन, ये कहते ये तो फ़ोन चोरी का है। तो बड़ी घर में वो, फिर हमारे तो सारी फैमिली वैसे ही वो ऑनेस्ट, या फिर कह लो भी गवर्नमेंट जॉब, या फिर वही लेना और वही कमाना और वही खाना। तो पिताजी को टेंशन हो गई उस टाइम पे, उन्होंने तीनों भाइयों से पूछा भी आपने कहीं से ये कोई फ़ोन तो नहीं उठाया, सॉरी ये नहीं पता था भी ये फ़ोन है, वो कहते कोई फ़ोन चोरी हुआ है। तो बाद में मेरे को एकदम से टच हुआ भी आपने वो व्यक्ति से फ़ोन लिया है जिससे आप, जिसको आपने फ़ोन ठीक करना दिया, एकदम से जैसे टच हुई वो बात भी, आपने आप ही फोन लेके आए थे और आप हमको कह रहे हो भी फोन तो नहीं उठाया, उन्होंने मतलब शक नहीं किया, पूछा हमसे। तो मेरे को फिर वो आया भी दिमाग में, आप तो फोन लेके आए हो, क्या पता वो ही फोन हो। वो कहते आईजी का रीडर है, तो वो फिर कहते बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, तो वो तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट तो पूछती नहीं ना, वो तो फिर थोड़ा सा अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से करते हैं। तो वो मतलब भगवान की उस टाइम पे मदद मिली भी, वो टच हुआ, वो फिर पता किया, वो कहते ये किसी ने फोन बेचा था उस व्यक्ति को, तो उस तरह से वो फोन चलो उनको वापस कर दिया हमने। तो मतलब भगवान की मदद समय समय पर मिलती रही,
1: उससे
2: टचिंग मिलती रही, कह लो भी ये हमारी बुद्धि नहीं इतनी होती है, वो भगवान ही हमें टच करता है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, ईश्वर की मदद कैसे मिलती है हमको ये आपने बताया। तो मैं चाहूँगा कि जैसे पढ़ाई करते थे तो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, या फिर कह लो कि कोई लीडर्स की कहानी सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये लीडर्स के बारे में और जानने की आपकी कोशिश रहती है। तो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स है, बहुत सारे लीडर्स हुए हैं, तो उनमें से कौन अच्छा लगता था और क्यों अच्छा लगता था?
2: उसमें ये अभी जैसे जैसे मैं मच्योर होता गया ना, तो मेरे को ये पता चला भी सिस्टम में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं।
1: बिल्कुल,
2: मतलब मैं तो चलो चल रहा हूँ भी, ऑनेस्टी के रास्ते पे। पर वो कहते हैं जो आजकल के टाइम में ऑनेस्ट व्यक्ति होता है तो वो क्या है भी एक जैसे एक मशीन चल रही है तो उसमें एक स्क्रू की तरह होता है, अगर वो अपने रास्ते पे चल रहा है तो उसको निकाल देंगे, उस स्क्रू को निकाल देंगे, उससे मशीनरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे करते करते क्या हुआ भी मेरे में थोड़े से वो क्रांतिकारी वाले विचार आने शुरू हो गए भी ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये गड़बड़ी क्यों हो रही है, लोग ट्रैफिक लाइट को क्रॉस क्यों कर रहे हैं, या फिर ये रिश्वत क्यों चल रही है, ये सारा कुछ मतलब जो सच्चाई होनी चाहिए थी वो गुण थे पहले से ही। मतलब कभी अब मेरे को जैसे सॉरी थोड़ा सा बीच में ये बताता हूँ
1: जी,
2: अब मेरे को 9 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में और मैंने आज तक कोई पैसा ना ही लिया, और हमारे में लेते भी और देते भी हैं, अपने डिपार्टमेंट वालों से भी पैसे लेते भी, आपने ये काम करवाना तो पैसे, तो पर मैंने आज तक दिया नहीं। तो जो हमारे डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर भी है, मेरा उनसे शुरू में कॉन्टैक्ट हो गया था, वो आज भी कॉन्टैक्ट में है, तो वो मेरे को कहते रहते थे भी एक बार दोगे तो बार बार देना पड़ेगा, और एक बार लोगे तो वो लेना पड़ेगा, और एक रुपये का भी चोर होता है और लाख रुपये का भी चोर। वो तो चलो उन्होंने मोटिवेट किया पर मैंने तो लेने नहीं थे ना कभी।
1: बिल्कुल,
2: तो इसी तरह से मेरे को भगत सिंह बहुत पसंद था।
1: बहुत
2: तो जैसे ही फिर उसकी जैसे 23 मार्च को होता है ना भी उनको फांसी पर लटकाया गया, तो उस दिन मैं उनके गांव भी कई बार जाता था।
1: अच्छा।
2: तो उस टाइम पे मेरे को आता था भी लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, इनको फॉलो क्यों नहीं करते हैं, तो फिर मैं बीच बीच में जाता था। उनकी एक बहुत बड़ी मैंने फोटो निकाली, फ्रेम करा के अपने घर में भी रखी हुई थी, तो मैं उनको फॉलो करता था एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने मतलब सच्चाई के रास्ते पर चले, उन्होंने बेसिकली देश के लिए काम किया ना, तो देश से प्यार भी शुरू से ही था भी हमारा देश, हमें उससे गद्दारी नहीं करनी चाहिए या फिर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश को नुकसान पहुंचे।
1: बिल्कुल,
2: तो पॉलिटिक्स में तो मेरा कभी रुझान हुआ ही नहीं, तो मैंने आज तक न्यूज़पेपर भी बहुत कम पढ़ी है, टीवी में भी कभी ना ही मेरा इंटरेस्ट है, आज तक मैंने कभी वोटिंग भी नहीं की इसी वजह से। आज मेरी 38 साल एज हो गई है तो मैंने कभी आज तक वोट अपनी डाली नहीं है। तो ये मेरा मतलब क्रांतिकारी स्वभाव था, वो चलो भगवान के रास्ते पे चलने से थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ गया तो ब्रह्मा कुमारी से, उसके बाद मेरा धीरे धीरे वो स्वभाव थोड़ा सा नरम होता गया।
1: बिल्कुल,
2: मतलब सच्चाई वैसे के वैसे रही और क्रांतिकारी से जैसे कह लो भी मतलब सहनशीलता का गुण वो धीरे धीरे अपने में लाता गया। मैं
1: गगन दीप सिंह जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हमारे जीवन में कई बार हम लोग ऐसे ना किसी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी को सुनते हैं तो हमें एकदम से ऐसा एक आइडिया क्लिक होता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, तो क्या ऐसे बचपन में या कॉलेज में जब पढ़ते वक्त ऐसा कुछ हुआ था?
2: हाँ, इसमें मेरा साइंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा मेरा संबंध है।
1: हाँ,
2: मेरे को लगता भी मेरा शायद पिछले जन्म का भी इनसे कोई कनेक्शन है।
1: हाँ,
2: तो मतलब मेरा जो ब्रेन है एक मेरे को लगता भी जैसे एक किसी साइंटिस्ट का ब्रेन है इस टाइम पे मेरे को लगता है, जैसे मैं इस ईश्वरीय मार्ग पे आता गया तो वो और ज़्यादा इसमें कह लो भी डेवलप होना शुरू हो गया कह लो।
1: बिल्कुल,
2: जैसे
1: बिल्कुल।
2: मैं न्यूटन को बहुत फॉलो करता था, आइंस्टाइन को बहुत फॉलो करता था, निकोला टेस्ला जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वो उसने टेस्ला कॉइल बनाई थी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, वो तो चलो कुछ वजह से वो डेवलप नहीं कर पाया उस सिस्टम को, नहीं तो आज इलेक्ट्रिसिटी कहते पूरे वर्ल्ड में फ्री होती। तो होता है ना कुछ रीजन से उसको दबा दिया जाता है या कुछ होता है अच्छी चीज को, जो फ्री वाली चीज है उसमें देश को कोई फायदा नहीं होता ना,
1: नहीं देश वाले भी इंटरेस्ट नहीं लेते।
2: हाँ, इंटरेस्ट भी नहीं लेते, फिर वो एक मोनोपोली होती है ना भी, पैसा कैसे कमाया जाएगा।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो फिर मैं
1: वही मैंने भी जैसे कि आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी का मैंने बचपन में सुना था कि भाई स्पेस में जाने के लिए सिर्फ 100 रुपये खर्चा आएगा।
2: हाँ जी,
1: तो मैं वो तब से सुनते आ रहा था कि भाई इसको अभी तक डेवलप क्यों नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें जैसे कि
2: मतलब जैसे इसमें मेरा ये अनुभव है अभी जैसे पेन ड्राइव उस टाइम पे आई नहीं थी, मतलब कुछ ऐसी इन्वेंशन है वो मेरे को पहले लगता था ये होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: जैसे फोन में गाने बजते हैं, अभी फोन में ऐसी कोई चीज लगनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा डाटा हो, तो वो बाद में पेन ड्राइव डेवलप होगी या इन्वेंट होगी।
1: सही बात,
2: जैसे वो ही बोल रहा हूँ भी अब जैसे ना आकाश से मेरा बहुत ज्यादा संबंध है, स्पेस से मेरा बहुत ज्यादा संबंध है, जैसे मैं उस चीज की ओर देखता हूँ आकाश की ओर, तो हमारा जैसे घर गांव में है, गांव भी नहीं कह सकते है, लुधियाना में मतलब 5-6 किलोमीटर दूर है, पर वो बहुत ही पीसफुल एरिया है।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो जैसे मैं रात को या फिर किसी भी टाइम पे आकाश की ओर देखता हूँ तो मेरे को जैसे एक सिग्नल मिलता है।
1: अच्छा।
2: या फिर मेरे को पीस भी मिलती है और मेरे को लगता है कुछ मेरे को ऐसी टचिंग होती है जिससे मतलब कुछ भी मैंने करना तो वो मैटर सॉल्व हो जाता है या मेरे को इंडिकेशन मिल जाती है ऐसे।
1: सही बात है, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। और हम जब विद्यार्थी रहते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ हमें क्लिक होते हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए, बाद में क्या होता है कि समय के साथ साथ वो चीज़ें जो हैं अगर आप उन आइडियाज़ को लिख के नहीं रखते, पकड़ के नहीं रखते हैं, तो फिर आप जब डिग्री लेके बाहर आते हो तो फिर आपके जीवन में कुछ प्रैक्टिकल लाइफ को देखकर जो है चीज़ें अलग हो जाती हैं और हम उनसे दूर हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें जो है उन चीज़ों पर थोड़ा सा पकड़ के रखने के लिए, अपने आइडियाज़ को कैच करके रखने के लिए हमें जो है हमेशा उनको लिख के रखना चाहिए। इसलिए एक अगर हम लोग छोटा सा हैबिट बना के रख ले कि हमें जो चीज़ें पसंद आ रही हैं, हमें जो चीज़ें करने के लिए मन हमारा, बुद्धि हमारा आकर्षित हो रहा है, उन सभी को अगर आप लिख के रखते हो तो आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी बुद्धि कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं और उनमें कॉमन क्या है, और उस कॉमन चीज़ को अगर आप पकड़ के अपने करियर को फ्रेम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप उन चीज़ों को करेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक सुकून मिलता है क्योंकि आपको अपने पसंदीदा काम करते हैं और फिर उसमें आवर्स ज़्यादा कम होने से भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एन्जॉय कर रहे हो तो आपकी थकान नहीं होती है और आप जो है उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एंटरटेनमेंट की तरह करते हैं तो आप उसमें एक्सेल कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करियर इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बारे में अब हम गगन दीप सिंह से सुनेंगे कि कैसे उन्होंने अपना करियर को फ्रेम आउट किया और कैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में उनका जो सर्विस है वो जुड़ गया। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
3: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा आपको ये गीत सुनकर मोटिवेशन तो मिलता ही है, संगीत के साथ जब हम जुड़ते हैं तो एक ट्रैंक्विलाइजर मन को मिलता है और मन जो है रिफ्रेश होकर फिर से कुछ नई बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो आइए फिर से मैं गगनदीप सिंह जी से आपको जोड़ना चाहूँगा और करियर इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की बात हम लोग करें। तो आपने इसको कैसे किया, जैसे ही आप डिप्लोमा शुरू किया उसके बाद डायरेक्टली नौकरी पे लगे या और कुछ आपने किया या फिर कैसे हुआ, थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, जैसे मैंने फिर 10th में पास आउट हो गया तो उसके बाद फिर
0: डिप्लोमा,
1: हाँ जी डिप्लोमा की ऑप्शंस शायद हम पहले बात कर चुके हैं अभी
0: जी,
1: भी वो अंकल ने थोड़ा सा पापा को बताया भी चलो, तो फिर फिरोजपुर में फिर वही होम टाउन में वहाँ पर एडमिशन मिल गई गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में। तो उसमें भी उससे पहले की थोड़ी सी जर्नी, अभी तो पहले 10th में एडमिशन एकदम से नहीं मिल गई,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जैसे JET का जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं वो पहले देना पड़ता था उस टाइम पे,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उसके बाद अभी वो टेस्ट नहीं है, अभी सीधा काउंसलिंग होता है,
0: बिल्कुल।
1: तो उस टाइम पे फिर टेस्ट दिया तो वो कहते भी उन्होंने फिर एक चक्कर डाल दिया, जैसे मेरी 5th में एडमिशन हुई थी वो कहते थे आपका स्कूल एफिलेटेड नहीं है, तो उसी तरह से उन्होंने भी डाल दिया, वो कहते भी आपका भी ये पंजाब बोर्ड ये एफिलेटेड नहीं है। तो चलो मैंने मतलब मेरी लाइफ में ऐसे कुछ कह लो भी आए हैं स्टेप कह लो या फिर स्पैन आया भी उस टाइम पे मेरे को, मैंने छोड़ दिया भी, मैंने ये नहीं, कई लोगों ने केस भी किया, उन्होंने केस किया था उस टाइम पे, जैसे जॉब में भी आया से 3-4 बार हुआ।
0: अच्छा।
1: कि वही ना भी शांति का एक तरीके से वो अंदर शांति थी भी नहीं कुछ नहीं करना, मिल जाएगा अपने आप ही। तो फिर मैंने +2 में नॉन मेडिकल में एडमिशन ले ली, तो फिर मैं जाने लग पड़ा वहाँ पे। तो बाद में थोड़े 2 महीने बाद ही पता चला, 2-3 महीने बाद भी उन्होंने कुछ केस किया था तो वो केस जीत गए, अभी आपको एडमिशन मिल सकती है।
0: अच्छा।
1: फिर वो डिप्लोमा में वो लिखा हुआ था ना, फिर वो कहते भी डेस्टिनी में जो लिखा होता वो तो खुद चल के आ जाता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि वो भगवान ने दिलवाना था, वो सेवा करवानी थी तो वो अपनी सेवा भी करवाता ना इस तरीके से। तो फिर चलो एडमिशन मिल गई, तो फिर मैं उस टाइम पे मेरे को याद है जब हम बस में जा रहे थे मैं अपने फादर के साथ, तो पूरा जाते वक्त और पूरा आते वक्त लगभग 2 घंटे का रास्ता है, चंडीगढ़ में काउंसलिंग होती थी, तो मैं पूरा भगवान को याद करता रहा, जो भी अपने सिख धर्म के अनुसार मतलब एक एक सेकंड का भी जिसको कहते हैं ना निरंतर या निरंतर, तो मैं करता रहा भी मेरे को एडमिशन मिल जाए अब, क्योंकि अब मेरी भी इच्छा थी ना। अच्छा, हम चाहते थे भी पिताजी चाहते थे सिविल इंजीनियर में मिल जाए, उस टाइम पे बहुत ट्रेंड था उसका। तो चलो मिला नहीं, वो कहते भी अभी इलेक्ट्रिकल में ही है। तो फिर मेरे को चलो ये भी एक दिमाग में आया भी चलो सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, पिताजी भी हैं और जो मेरे ताया जी वो रेलवे का AC डिपार्टमेंट है वो देखते थे, और जो मेरे ग्रैंडफादर थे तो वो यूनियन के जो एक तरीके से वो हेड थे, तो वो सारा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिपार्टमेंट है रेलवे डिपार्टमेंट भी, तो मेरे को लगा चलो यही कर लेते हैं। तो फिर उससे जर्नी स्टार्ट हो गई एक तरीके से डिप्लोमा में। तो उसमें भी भगवान की इतनी मदद मिली भी, उस टाइम पे पहले 2 सेमेस्टर होते थे, मल्टीपल चॉइस होते थे ABCD, उसमें से एक टिक करना होता था। तो वो चलो मैं अक्टूबर में एडमिशन हुई, दिसंबर में एग्जाम थे, और डिप्लोमा कॉलेज में गवर्नमेंट जो होते हैं तो उसमें एक प्रोविजन होती है भी अगर आप 1st 2nd पे आओगे तो आपको 6,000 रुपया माफ हो जाएगा, और अगर आप 3rd 4th पे आओगे तो आपको शायद 3,000 माफ हो जाएगा, ऐसा कुछ था। मतलब उस टाइम पे जब मेरी एडमिशन हुई तो मेरा सारा डिप्लोमा लगभग 25,000 में कंप्लीट हो गया।
0: अच्छा।
1: तो मेरे को काफ़ी कंसेशन मिल गया फी में, और उसके जो 2003 बैच वाले थे तो उनको कह लो भी उनके बार से फीस बढ़ गई, उनकी अच्छा, सीधी 14,000 होगी, 14,000 एक बार और 13,000 एक बार, और मेरी थी टोटल फीस 9,000 साल की। मतलब
0: अच्छा।
1: भगवान ने स्टेप बाय स्टेप बहुत मदद की है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मैं कह लो भी लेट जाने के बावजूद भी मैं 3rd आ गया फिर पहले सेमेस्टर में।
0: अच्छा।
1: दूसरे सेमेस्टर में फिर 3rd आ गया, उसके बाद एक बार फिर गेम्स में पार्टिसिपेट किया, मतलब करते कराते मेरा लगभग आधी फीस रह गई।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जो कि लगभग मेरे को कह लो भी 30-35,000 देना पड़ता, वो मैंने 20,000-21,000 शायद इतना पे किया डिप्लोमा में। तो चलो उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, तो चलो फिर उसके बाद थोड़ी सी तलाश शुरू होगी भी नौकरी करें, क्योंकि उस टाइम पे इतना फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी।
0: जी जी।
1: तो सोचा तो यही था भी डिप्लोमा करेंगे 15-20,000 की जॉब मिल जाएगी। पर वो होता ना जब हम फील्ड में उतरते हैं तब पता चलता भी कंपटीशन क्या है और धक्के खाना क्या होता है। तो मैंने बहुत जॉब की कह लो भी सर्च की।
0: अच्छा, अच्छा।
1: मेरे को नहीं मिली जॉब, फिर मैंने रिलायंस पंप पे 3 दिन काम किया, वहां पे तेल डाला 3 दिन।
0: अच्छा अच्छा।
1: जो गाड़ियां आती थी उसमें पेट्रोल तो उसके बाद फिर चलो वो भगवान रास्ता दिखाता जाता है ना, तो फिर पता चला भी एक जगह पे इलेक्ट्रिकल के पैनल बनते हैं। तो वो चलो मैंने 2-3 दिन देख पिताजी साथ में गए, उन्होंने सिखा दिया, और जैसे मार्केट के पैनल होते हैं वैसी सफाई हमारे हाथ में आ गई, वो भी मैंने उस पर थोड़ा सा जॉब किया वहाँ पे। पर फिर मेरे को लगा भी मेरा पढ़ने का मन है, पर पैसे उस टाइम पे इतने नहीं थे। फिर हमने सानेवाल में क्या किया, वो पिताजी ने वो मकान बेच दिया और छोटे भाई को भी स्टडी करवा दी और हमारे को भी करवा दी।
2: अरे
1: तो फिर हमने एडमिशन ले ली और उसमें भी एक चमत्कार ही हुआ भी, वो कॉलेज नया खुला था सिटी में जहाँ पे मैंने पढ़ाया। तो उस टाइम पे वैसे तो फीस कह लो पहले साल उन्होंने कम रखी थी, 1,00,000 थी शायद, अगली बार उन्होंने 1,20,000 रख दी। तो फिर मेरा एक फ्रेंड था वो कहता आप उससे मिलो, टीचर से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलो। और फिर मैंने 10,000 और मेरी कम हो गई।
2: अच्छा अच्छा,
1: 1,10,000 रह गई टोटल। मैंने फिर लिखवा भी लिया कॉलेज से भी, ये ना हो ना भी कल को ये मुकर जाए हमारे पे तो भारी पड़ जाएगा। तो 1,10,000 में मेरा डिप्लोमा फिर हो गया। तो उससे अगले साल फिर जैसे डिप्लोमा में हुआ था 9,000 से फीस 23,000 होगी, और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने सीधी फीस 1,10,000 से बढ़ा के 2,50,000 कर दी।
2: ओके,
1: तो उसमें भी चलो अच्छे करते कराते फिर, मतलब उसमें मेरे एक और अनुभव रहा भी, सबकॉन्शियस माइंड सभी ने पढ़ा होगा।
2: बिल्कुल,
1: मेरा एक किसी वजह से पेपर एक रह गया, उसमें मेरी रीपियर आ गई। तो मैंने सोचा भी अगर मेरे 38 मार्क्स आ जाएंगे तो मेरी 75% बन जाएगी, तो उतने ही मार्क्स आए। फिर उसके बाद मेरे ना जैसे ये वो हमने बात की आकाश तत्व या फिर
2: जी,
1: ब्रेन
2: जी।
1: में कुछ ऐसी टचिंग आनी शुरू हो गई भी, जो मैं नंबर सोचता था
2: या
1: तो कहीं वो बोल रहा हो, जैसे मैं अभी 65 बोलूंगा, मैंने न्यूज सुनी उसमें आ जाएगा 65, ऐसे वो सारे मतलब कलेक्टिव कह लो भी माइंड में आनी शुरू हो गई ऐसी टचिंग। तो उसके बाद फिर चलो मैंने डिप्लोमा किया, फिर डिग्री कर ली, बीटेक भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर मेरे वहाँ पे मेरे को चंडीगढ़ के पास है वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे को टीचिंग की जॉब मिल गई।
2: अच्छा, कितना समय तक किया टीचिंग का आपने?
1: मैंने 3 महीने वहाँ पे किया और उसके बाद जो हमारे जैसे मैंने बात की थी भी, वो मेरे कह लो भी बोल रहे थे ना, आपने पूछा था भी कौन आपके एक तरीके से आइडल है,
2: आइडल है।
1: तो जो हमारे डिपार्टमेंट है वो मोहाली वाले जो सर है
2: जी,
1: तो उन्होंने बोला भी यहाँ पे एक पोस्ट है डिप्लोमा में खाली हुई है तो आप यहाँ पे आ जाओ। तो उन्होंने बोला था भी आप सैलरी वगैरह अच्छी मांग लेना, ये देंगे आपको भी। तो फिर उन्होंने 3 महीने मैंने वहाँ पे की और उसके बाद 5 साल मैंने उसी कॉलेज में की जहाँ से मैंने स्टडी की थी, बीटेक की थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे चलो भगवान ने फिर यहाँ पे जॉब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में।
2: अभी कहाँ पर हैं आप?
1: अभी मैं PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2: वहाँ पर।
1: हाँ जी
2: जी,
0: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया अपनी यात्रा सुनाने के लिए। और अभी आप वर्तमान में जो है गवर्नमेंट जॉब ही है?
1: हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब
0: जी जी। तो इसमें क्या वर्क रहता है आपका?
1: हाँ जी, अभी यहाँ पे जो मेरी पोस्ट है ना वो है जूनियर इंजीनियर है। तो इसका भी मेरा एक अनुभव है, जैसे इसमें भी जैसे हमने एग्जाम दिया तो मेरे लगभग मेरे ख्याल से 55 मार्क्स आए थे, तो कट ऑफ थी 56 point something थी। तो उस टाइम पे वो रह गया चलो, फिर छोड़ दिया, टीचिंग तो कर ही रहे थे। तो उसमें फिर एक दिन ऐसे हुआ भी, मैंने वैसे ही उनकी वेबसाइट देखी तो उन्होंने भी लड़कों ने केस कर दिया भी, उसमें ना कुछ 3-4 क्वेश्चन गलत थे।
0: अच्छा,
1: और वो
0: अच्छा।
1: कहते हैं जो क्वेश्चन गलत होते हैं चाहे आप कोई भी एग्जाम होगा तो उसके आपको वो ग्रेस मार्क्स उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी तरफ से एरर होता है। तो चलो मैंने देखा भी इसमें मेरा नाम है, मेरे को फिर एकदम से अचंबा सा हुआ। तो मैंने कहा मेरे नाम को और भी कोई हो सकता है? उसके बाद पिताजी का नाम देखा, मैंने कहा वो भी सेम हो सकता है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखी, फिर मेरे को कंफर्म
2: हो गया कि आपका ही है।
1: हाँ जी, तो ये भी मैंने मतलब अगर मैंने चीज देखी अभी लाइफ में, अगर आप शांति से रहते हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है और अगर आप वो उपद्रव कर लो या फिर आप कह लो जैसे होते ना भी इकट्ठे होके हमने ये हमें ये चाहिए हमारी मांगे पूरी करो, तो उसमें कई बार आपको नुकसान ही हो जाता है।
0: जी, जी,
1: शांति
0: जी।
1: में रहने से तो आपको सब कुछ मिल जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ जी,
0: गगनदीप सिंह जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, बहुत ही अच्छा शेयरिंग आपने किया और इलेक्ट्रिक का इंजीनियरिंग की जो यात्रा है आपने अपना शेयर किया। आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो पर, और उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का जो एक जर्नी है वो आपने सुना। और आप भी अपने करियर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह के पड़ाव जो है आते रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्शियस जो है, जैसे अभी गगनजीत सिंह जी शेयर कर रहे थे, अपने कॉन्शियस को थोड़ा पकड़ के रखिए और जो चीज़ें आप अच्छी तरह से करना चाहते हैं उसके लिए आप जो है तैयार भी रहें। और जब आप तैयार हो जाते हैं तो आपको सारी फैमिली जो है सपोर्ट करती है, लोग भी सपोर्ट करते हैं, और ऐसा भी होता है कि कुछ ईश्वर के चमत्कार भी आपके बीच में आ जाते हैं, जैसे गगनजीत सिंह के साथ हुआ। तो ये चमत्कार भी आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि आपकी पूरी मनोस्थिति जो है उस खुला आकाश की तरह है और आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने आप को समर्पित रूप से उन चीज़ों को करते हैं। आप डेडिकेटेड है अपने जॉब के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने कार्य के लिए। ईमानदारी से कोई भी चीज़ आप करते हैं और शांति से करते हैं तो आपको सारी कायनात जो है हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आशा करूंगा आज के इस जर्नी को सुनकर गगनदीप जी की आपको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिला होगा। तो ज़रूर, और कहीं भी आपको लग रहा है कि अपने करियर बनाने में आपको कोई मुश्किल आ रही है या किसी बात को आप नहीं समझ पा रहे, तो 9414151415 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और हमारे लाइव प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसमें भी आप इस बात को जो है ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर अभी आपका कॉल नहीं लग रहा है किसी कारण से या बात नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है मंडे टू फ्राइडे सवेरे 8 से 10 के बीच में या 4 से 5 के बीच में भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं अपने करियर के बारे में, तो हमें अच्छा लगेगा और आपको हेल्प करने से हमें बेहद खुशी होगी। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप बहुत अच्छा अपना करियर करें, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर से एक बार गगनदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अपनी यात्रा सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको।
1: थैंक यू
0: जी। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लेता।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। प्रिय श्रोताओं, रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है, संस्कार परिवर्तन। श्रोताओं, संस्कार व्यक्ति के जीवन की नींव होते हैं। परिवार, समाज और शिक्षा से मिले संस्कार ही हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों को आकार देते हैं। इन्हीं संस्कारों से हम सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, करुणा और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को सीखते हैं। कहा जाता है कि अच्छे संस्कार व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन समय के साथ समाज बदलता है और इसी बदलाव के साथ संस्कारों में भी परिवर्तन आता है। आज का युग विज्ञान, तकनीक और सोशल मीडिया का युग है। वैश्वीकरण ने हमें नई सोच और नई दिशा दी है, नई संस्कृतियों से जोड़ा है। संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है और तेज जीवन शैली ने हमारे सोचने के ढंग को भी बदल दिया है। श्रोताओं, संस्कार परिवर्तन के कई सकारात्मक पहलू भी हैं। आज की पीढ़ी अधिक जागरूक है, तर्कशील है, अंधविश्वास से बाहर निकल रही है। समानता, महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्र विचारों को बढ़ावा मिल रहा है। यह समाज के लिए एक शुभ संकेत है। परंतु दूसरी ओर कुछ चिंताजनक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। पारिवारिक मूल्यों में कमी, धैर्य और अनुशासन का अभाव तथा बढ़ता हुआ स्वार्थ हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रहा है। आधुनिकता की दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम संस्कारों में ऐसा परिवर्तन करें जो हमें आगे बढ़ाए, ना कि हमें हमारी पहचान से दूर करे। आधुनिक सोच और पारंपरिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना ही समय की मांग है। परिवार और शिक्षा का दायित्व है कि वे बच्चों में नैतिक और मानवीय संस्कारों को जीवित रखें। श्रोताओं, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि संस्कार परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन मूल्यहीन परिवर्तन नहीं। जब आधुनिकता संस्कारों के साथ कदम मिलाकर चलेगी, तभी एक सशक्त, संवेदनशील और सभ्य समाज का निर्माण होगा। इस संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए। आप सुन रहे थे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां
3: बांटें। अजी, सुनते हो?
4: हाँ, सुनी तो रहा हूँ।
3: क्या सुन रहे हो?
4: रेडियो पुनेरी आवाज।
3: ओ, रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
2: थैंक यू सो मच।
1: बीइंग डिवाइन में आप बता रही थी अबाउट संस्कार्स, तो इतने सारे संस्कार हैं, कोई स्थूल है कोई सूक्ष्म है, आप बात कर रहे थे, तो मैं कल सोच रहा था कि कितने हैं टाइप ऑफ संस्कार्स हैं, मतलब
2: स्थूल संस्कार और सूक्ष्म संस्कार हम किसको कहेंगे। स्थूल मतलब फिजिकल, सूक्ष्म मतलब सटल। स्थूल संस्कार मतलब जो बाहर दिखते हैं, जो बाहर दिखते हैं, ये ऐसे काम करते हैं, ये ऐसे खाते हैं, ये खाते हैं, ये सब संस्कार बाहर दिखते हैं तो स्थूल संस्कार। सूक्ष्म संस्कार सटल, जो दिखते नहीं है। इट्स अबाउट यहाँ क्या चल रहा है रिकॉर्डिंग, इट्स अबाउट द पर्सनालिटी वी आर, इट्स अबाउट आर एटीट्यूड इन एवरी सीन, सूक्ष्म संस्कार। लेकिन जैसे हमने पिछली बार देखा कि ब्रॉडली फाइव टाइप्स ऑफ संस्कार, राइट, पास्ट लाइफ संस्कार, फैमिली के संस्कार, फैमिली से मिले संस्कार, वातावरण से बने संस्कार, एंड वेरी पावरफुल इच्छा शक्ति, विल पावर से मिले संस्कार। लेकिन ये जो चार सेट ऑफ संस्कार हैं, ये सारे अक्वायर्ड हैं, सारे अक्वायर्ड हैं। इनमें कुछ संस्कार बहुत ब्यूटीफुल हैं, कुछ संस्कार उतने कंफर्टेबल नहीं है।
1: लेकिन जब से मैंने ये होमवर्क शुरू किया कि भाई इसके संस्कार ही ऐसे, कोई बात नहीं एक्सेप्ट करो इसके संस्कार ही, तो मुझे ना सिर्फ संस्कारों का मीनिंग नॉट द गुड वंस पे ही जा रहा है। चलो इसके संस्कार ही ऐसे, इसने बोल दिया तो छोड़ दो। तो मैं जब से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि क्या संस्कार सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिव ही हैं।
2: वो तो इसलिए क्योंकि हमारा अटेंशन लोगों के नेगेटिव संस्कारों पे जाता है। जो लोगों के अच्छे संस्कार होते हैं वो हमें यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी सपोज आप आराम से बैठे हुए हैं तो आई एम फाइन, तो आई एम नॉट इवन गोइंग टू नोटिस, आई एम नॉट इवन गोइंग टू ऑब्जर्व कि ये बहुत अच्छे से बैठने का संस्कार है। आई डोंट क्रिएट अ थॉट, क्योंकि यहाँ कुछ हुआ नहीं तो कोई थॉट क्रिएट नहीं की। लेकिन अभी सपोज आप थोड़ा सा गलत तरह से बैठे, जो मेरी डेफिनेशन से गलत है, तो आपको वैसा बैठते हुए देख यहाँ कुछ चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों बैठे, रोज बताओ तो भी ऐसा बैठे, मतलब इतना भी नहीं आता, ऐसे बैठना चाहिए। दिस इज माई एक एक थॉट जो चलने शुरू होगी। जब सही बैठे थे यहाँ कोई थॉट नहीं चली, लेकिन जब सही नहीं बैठे थे तो यहाँ बहुत सारी थॉट्स चलने लगी। ये जो बहुत सारी थॉट्स थी ये मुझे अनकंफर्टेबल बनाने लगी, क्योंकि दे आर नॉट गुड क्वालिटी थॉट्स। अब जैसे ही मुझे वो अनकंफर्टेबल बनाने लगी तो मैंने ये थॉट क्रिएट की, चलो छोड़ो ना उनके संस्कार है, तो मुझे ज्यादा रजिस्टर कौन से संस्कार हो रहे हैं जो अनकंफर्टेबल है, क्योंकि जो कंफर्टेबल है वो तो ऑब्जर्वेशन में ही नहीं आते, कभी कभी आते भी हैं सारा दिन।
1: संतों के पास जाते, कोई अच्छा गुरु होता है, बहुत ही एकदम डिवाइन पर्सन होता है, तो लगता है कितने अच्छे संस्कार है।
2: सारा दिन में भी आपको बहुत अच्छे संस्कार दिखेंगे, आपको कोई दिखेगा जो बहुत हार्डवर्किंग है, आपको कोई दिखेगा बहुत सिंसियर है,
1: स्टाफ में होता है,
2: आपको अपने स्टाफ में दिखेगा कोई बहुत केयरिंग है, औरों से डिफरेंट है, कोई दिखेगा जिसके अंदर बहुत बिलोंगिंगनेस है अपने काम के लिए, यू नो, बिना बताए भी वो काम कर देगा, वो काम को अपना समझ के करेगा, ये भी एक संस्कार है, सबके अंदर नहीं होता। कोई बहुत ऑनेस्ट है, कोई बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करता है, किसी के अंदर बहुत ह्यूमिलिटी है, कोई बहुत पंक्चुअल है, बहुत सारे संस्कार हैं।
1: सही बात है। मेरे पास एक ड्राइवर था जिसके लिए एक कॉन्फिडेंस था, 4 बजे सुबह आना है, 3:30 बजे की आ जाना, 4 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होती थी, इतना मुझे फेथ था।
2: लेकिन जो अच्छे संस्कार होते हैं लोगों के अंदर, उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ये तो है ही ना, वी डोंट इवन थिंक एंड टॉक अबाउट इट मच। लेकिन जो अनकंफर्टेबल संस्कार जो हमें अनकंफर्टेबल करते हैं वो हमारे यहाँ रजिस्टर होते हैं क्योंकि चोट लगती है। इट्स अ सिंपल थिंग, अगर हम इस गार्डन से वॉक कर रहे हैं तो अगर हम आराम से क्रॉस कर गए तो हम ये नहीं कहेंगे ये पत्थर बहुत अच्छे से पड़ा था, ये रोड बहुत अच्छे से बनी थी, नहीं, हम बस नॉर्मल प्यार से वॉक करेंगे सेइंग इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
1: खड्डा हो या कांटा चुभ जाए,
2: हाँ दिस मतलब कहीं चोट लगे तब रजिस्टर होगा कि ये रोड ऐसी क्यों थी, इट्स फाइन। लेकिन अगर हम ये भी एक संस्कार बना लें कि लोगों के अंदर जो ब्यूटीफुल संस्कार है उसकी तरफ अटेंशन देना शुरू करें, इसका बेनिफिट हमें मिलेगा क्योंकि जहां हम देखेंगे, जहां अटेंशन जाएगी एनर्जी वहां फ्लो होगी। हमें सिखाते हैं कि जिसका आप जो संस्कार देखोगे वो आपका हिस्सा बन जाएगा।
1: बाप रे,
2: क्यों ऐसा? मैं आपके अंदर जिस चीज को देखूंगी वो यहां सोचने लगूंगी, यहां सोचने लगूंगी तो वो संस्कार अब यहां नहीं मेरे चित्त का हिस्सा बन गया। सपोज मैं कह रही हूं ये ऐसे क्यों बैठे, ऐसे क्यों बैठे, ऐसे क्यों बैठे, नाउ इट्स नो मोर अबाउट यू सिटिंग, इट्स अबाउट व्हाट आई एम थिंकिंग। तो मैंने वो कमजोरी को क्या कर लिया, अपने चित्त पर बिठा लिया।
1: ये इतनी सुंदर लाइन आपने बोली, इट्स नो मोर अबाउट योर डूइंग और सिटिंग और
2: व्हाटएवर,
1: इट इज दैट कंटीन्यूअस वे ऑफ माय थिंकिंग। उसने तो एक ही बार कर दिया।
2: हाँ, वो भी बात है, उसने हाँ, तो एक ही बार कर दिया।
1: yes. कुछ भी खाने की टेबल पे उसने yes. मतलब झूठा yes. हाथ डाल दिया खाने में, लेकिन
2: ये तो फिर भी मोटे मोटे स्थूल
1: संस्कार, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ
2: yeah.
1: तो उसके बाद कितना मैं सोच सोच के,
2: तो वो अब आपका संस्कार नहीं रहा ना, वो मेरे चित्त का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग हो गई, बिकॉज वट एवर वी थिंक वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब हम जितना हमारे अंदर संस्कार होगा दूसरों की कमजोरियां देखने का, तो मैं आत्मा कमजोर होने का चांसेस बढ़ जाएगा क्योंकि मैं यहाँ कमजोरी ही रजिस्टर करते जा रहे हूँ।
1: एक किताब में लिखा था सिस्टर मेरे स्कूल में कि गुरु ने अपने शिष्य को बोला ऐसे टीच करने के लिए कि तू इस कोठरी में, छोटा सा दरवाजा होता ना मेडिटेशन का पुराने जमाने का, उसको जो केव जैसा, वहां बैठ जा और तू सबसे जो तुझे पसंद है ना उसकी चिंतन कर। तो बोलता मुझे मेरी भैंस बहुत अच्छी लगती है। बोले ठीक है सर, भैंस को याद करता रहा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन के मेडिटेशन के बाद अब गुरु ने बोला अच्छा अभी आ जा बाहर। तो बोला गुरुजी बाहर कैसे हो, मेरे सींग इतने बड़े
2: सी,
1: तो मेरे इतने बड़े बड़े सींग है, और मैं हंसता था, बोले ये कोई कहानी है।
2: उसका भाव, जिसका चिंतन करोगे वैसे बनते जाओगे।
1: तो देखिए इन स्टोरीज में भी कितना दम है,
2: स्टोरीज में बहुत मीनिंग है, अगर हम उस मीनिंग को ले लें स्टोरी से और फिर उसको जीवन में लेकर आए। भैंस को याद करते करते भैंस ही कॉन्शियसनेस में आ गई है, तो इसका मतलब अगर हम औरों की कमजोरियों को याद करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो वो कमजोरियां हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएंगी।
1: बट दिस इज वेरी फ्राइटनिंग,
2: दिस इज अ फैक्ट, नो इट्स एनर्जी, वी कैन सी इट, कि जो देखा उसको यहाँ रखा, उसका चिंतन किया, तो वो यहाँ की रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गया।
1: बट फ्राइटनिंग इसलिए कि मेरा तो फिर गोल गया।
2: गोल क्यों गया?
1: मेरा गोल जो है कि मेरा प्योर सोल वापस प्योरिटी में आने का और सोल कॉन्शियसनेस में आने का, वो तो ये सब चिंतन
2: तो
1: करूंगा,
2: बहुत इजी हो गया। अब क्या करना है, यहाँ की प्योरिटी को बढ़ाना है, तो मतलब यहाँ क्या रखना चाहिए हमें?
1: ये सब नहीं रखना
2: चाहिए। पर रखना क्या चाहिए?
1: The qualities of the soul.
2: Qualities of me, but qualities of other people also.
1: Okay.
2: कमजोरियों को देखेंगे तो वो चित्त का हिस्सा बन जाएंगे, विशेषताओं को देखेंगे तो वो चित्त का हिस्सा बन जाएंगे। कितना इजी है, आज हम इसको होमवर्क कर सकते हैं। जो मिले, जो याद आए, उसकी पहले एक विशेषता देखनी है। इवन अगर हम सेम विशेषता रोज देख रहे हैं, doesn't matter. Doesn't matter. एक विशेषता हर एक के अंदर रोज देखनी है, क्योंकि विशेषता को देखा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग किस चीज की हो गई, विशेषता की थॉट की रिकॉर्डिंग हो गई। सामने वाले को एनर्जी कौन सी गई, प्योर एनर्जी गई, क्योंकि हमने उसकी विशेषता देखी। सामने वाले की विशेषता भी क्या हो गई, बढ़ गई, इतना सिंपल है, खुद की प्योरिटी को भी बढ़ाना औरों की प्योरिटी को भी बढ़ाना।
1: अभी आपसे सुनते सुनते मैं सोच रहा था कि एक इंसान के बारे में उसकी विशेषता देखूं, तो मुझे ढूंढनी पड़ रही है कौन सी है। अगर उसको ऑपोजिट आप बोलते मैं 10 गिना देता।
2: क्यों? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आपके पास कॉन्शियस लेयर पे उसकी कमजोरियां क्यों रिकॉर्डेड है, क्योंकि हमने कई बार उनकी कमजोरियां ही देखी है। कोई बात नहीं,
1: वो तो रेडी है मेरे पास।
2: वो रेडी क्यों है? क्योंकि वो बहुत बार देखी है तो वो यहाँ रेडी है। अब दिस इज अ प्रूफ कि वो आपके चित का हिस्सा है, वो कमजोरियां, ये प्रूफ है।
1: नहीं बाबा, मुझे वैसा बनना नहीं है।
2: वैसा बनना नहीं
1: है, बन जाऊंगा अगर तो
2: आपके चित का हिस्सा है वो कमजोरी, इसीलिए तो एक क्षण में याद आ गई। याद इमिजिएटली यहाँ क्या दिखेगा, जो पड़ा हुआ है।
1: हाँ।
2: विशेषता क्यों नहीं दिख रही अभी? पड़ी नहीं हुई,
1: पड़ी
2: हुई नहीं है ना इधर। इमिजिएटली क्या दिखता है? कबर्ड खोलो, इमिजिएटली क्या दिखेगा? जो आगे आगे रखा हुआ है, जो रखा ही नहीं है या बहुत पीछे है, वो इमिजिएटली खोलते ही दिखेगा नहीं। यहाँ इमिजिएटली क्या दिखा? अब अगर आप आज विशेष अभ्यास करें, उनकी विशेषता देखनी है, फिर कमजोरी आएगी ध्यान में, उनकी विशेषता देखनी है, ये उनकी विशेषता, ये उनकी विशेषता, ये थोड़े दिन के बाद कबर्ड में आगे क्या आ जाएगा? उनकी विशेषताएं आ जाएंगी। ऐसी तो कोई आत्मा नहीं है ना जिसके अंदर विशेषताएं नहीं है। सिर्फ कमजोरी ने हमें डिस्टर्ब किया तो हमने कमजोरी रिकॉर्ड कर ली। दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन कि हमारा ध्यान जिन बातों पर जाएगा वो बातें हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएंगी। औरों के अंदर हम क्या देखते हैं, औरों से हम कैसे बात करते हैं, सुनते क्या है हम औरों से, ये सब कुछ हमारे चित्त का हिस्सा बन जाता है। सो वी शुड टेक केयर। अगर मैं आत्मा अपनी प्योरिटी को बढ़ाना चाहती हूँ तो यहाँ पर मुझे सिर्फ प्योर चीजें रखनी है, सिर्फ प्योर चीजें रखनी है। और अगर अभी थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही है उनकी विशेषताएं देखने में, तो ये लाइन तो याद रखनी है ना कि वो आत्मा कैसी है,
1: ओरिजिनल क्या है,
2: प्योर आत्मा है। जब भी उसका नाम लें, उस व्यक्ति का, आप कहें प्योर आत्मा सो एंड सो, वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर आत्मा सो एंड सो, ताकि धीरे धीरे आप उसके नाम के साथ प्योरिटी के वर्ड को कनेक्ट कर दें, पीसफुल आत्मा सो एंड सो।
1: मैं ये छोटे छोटे जो बच्चे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन उनको बोलता हूँ, माय हैप्पी सोल, माय प्योर सोल, बड़े हंसते हैं, उनको बोल सकता हूँ, बड़ों को नहीं बोलता हूँ।
2: तो उनको बोलते हैं ना,
1: उनको तो बोलता हूँ रोज।
2: ऐसे अब उनको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान है कि ये हैप्पी सोल है, नहीं तो हैप्पी सोल वर्ड कहाँ से आएगा, प्योर सोल वर्ड कहाँ से आएगा, ज्ञान है। लेकिन उनके साथ उनकी एनर्जी हमें अच्छी लग रही है तो उनको हम वो वर्ड बोल पा रहे हैं, हैप्पी सोल, प्योर सोल। लेकिन जहाँ हमें जिसके साथ थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, वहां हम क्यों नहीं बोल रहे?
1: पेनफुल सोल,
2: पेनफुल सोल नहीं बोल रहे। अब आज चेंज करें उसको, प्योर सोल, प्योर सोल, नाम ही प्योर सोल रख दो। ये ग्रूव चेंज हो रहा है, ये लगता है कि ये ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, बोलने से भी हो जाएगा, क्योंकि बोलने से हमने बार बार बार बार उसको कौन सी एनर्जी दी और अपने यहाँ कौन सी एनर्जी रिकॉर्ड की। संस्कार परिवर्तन हमारे जीवन का लक्ष्य है अब, दैट इज आवर गोल, दैट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। तो हमें एक एक संस्कार को सूक्ष्म, जितना सेल्फ क्रिटिसिज्म का आपका संस्कार बना हुआ है, उस वजह से औरों को क्रिटिसाइज करते हैं।
1: सेल्फ क्रिटिसिज्म से आप इम्प्रूव नहीं करते क्या?
2: क्रिटिसिज्म का संस्कार बन गया ना, रिकॉर्डिंग किस चीज की हो गई? क्रिटिसिज्म की।
1: इम्प्रूवमेंट की नहीं है बट क्रिटिसिज्म की है।
2: तो क्रिटिसिज्म की रिकॉर्डिंग हो गई तो फिर हर आत्मा के प्रति वही रिकॉर्डिंग चलने लगेगी। क्योंकि अपने अंदर भी विशेषताएं नहीं देखते हैं, कमजोरियां देखते हैं।
1: आई एम अ प्योर सोल एंड आई लव माई सेल्फ पहले आना चाहिए।
2: दैट जब अपने साथ कोई चीज की जाएगी, वो वाला रिकॉर्डिंग हो जाएगा, तो औरों के साथ करना इजी हो जाएगा। जब अपने आप के अंदर कमजोरी देखेंगे, औरों के अंदर कमजोरी दिखेगी। अपने को क्रिटिसाइज करेंगे, औरों को भी क्रिटिसाइज करेंगे। जब अपने आप को किसी गलती के लिए कोसेंगे, औरों को भी कोसेंगे। और अगर अपने आप को क्षमा करेंगे, औरों को भी क्षमा करेंगे। अपनी विशेषता देखेंगे तो औरों की भी विशेषता देखेंगे। संस्कार है ना, संस्कार चेंज नहीं होता इसके लिए ये इसके लिए, वो संस्कार है, हमारे लेंस का कलर है। वो लेंस के थ्रू हम अपने को भी देखेंगे, वो लेंस के थ्रू हम दूसरों को भी देखेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हमें कोई कमजोरियां दिख भी रही हैं, व्हाई डू वी ऑलवेज से एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। क्या मीनिंग है एक्सेप्टेंस का? क्योंकि कई बार कुछ भाई बहने कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती है उसके अंदर, उसको भी एक्सेप्ट, काम नहीं कर रहा उसको भी एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस मीन्स क्या? वो चीज सामने दिख रही है, ये ऐसा है, ये दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है उसको अपने चित पर नहीं रखा। लेट्स सी हाउ टू डू।
1: तुमने ये बुरा किया नहीं बोला, लेकिन इसको ऐसे कर दो,
2: दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी। फर्स्ट स्टेज एक्सेप्टेंस मीन्स सामने जो दिख रहा है वो सामने ही रहे, मेरे चित का हिस्सा नहीं बने। यू सी हाउ टू डू दैट। जो दिख रहा है वो सामने रहे, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, मेरे चित का हिस्सा नहीं बने। विच मीन्स मेरा उस बारे में चिंतन नहीं चले, वो चीज वहीं रहे, यहां का हिस्सा नहीं बन जाए। दैट मीन्स उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया।
1: एग्जाम्पल देंगे?
2: एग्जाम्पल, ये फ्लावर्स है
1: जी,
2: ये घास है, कांटे भी हैं, ठीक है, कुछ झाड़ियां भी हैं, ये है, ये है, अभी ये यही है सिर्फ, ये यहां है। लेकिन अगर मैंने इसका चिंतन करना शुरू कर दिया, इतने कांटे हैं, चुप गया तो ध्यान भी नहीं रखते हैं, अभी ये यहां थे, चिंतन करने से ये यहां का हिस्सा बन गए। लेकिन अगर वो सिर्फ वहां रहे और मैं उसके बारे में चिंतन नहीं करूं, वो यहां का हिस्सा नहीं बनेगा। डोंट मेक इट अ पार्ट ऑफ आर पर्सनैलिटी। तो कांटे हैं, है।
1: तो इसी तरह से किसी के संस्कारों को भी
2: अपने चित का हिस्सा नहीं बनाना है। सपोज आपके पास कोई स्टाफ है, लेट आता है, लेट आता है, मालूम है जी, मालूम है, रोज आता है, मालूम है, मालूम है, उसके साथ कैसे चलना है वो भी देख लेंगे। लेकिन अगर रोज उसके वो संस्कार का चिंतन किया, इवन अगर 5 थॉट्स रोज क्रिएट कर दिए, ओनली 5, एंड 5 थॉट्स इज नथिंग। हमें लगता है 5 थॉट्स तो हम ऐसे ही क्रिएट कर देते हैं। रोज लेट आता है, कल भी बोला था, कहीं जाना हो तो इस पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, इसको कितना भी समझाओ, सैलरी मांगने तो फटाफट आ जाता है, टाइम पे बोलो तो ये आता नहीं है। 5 थॉट्स, वो लेट आता है, वो संस्कार वहां है, उसके साथ कैसे चलना है वो भी देखना है। चिंतन कर लिया, मेरे चित का हिस्सा बन गया। चिंतन, औरों के संस्कारों का चिंतन आत्मा की पावर को डिप्लीट करता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये सारा दिन कर रहे हैं। एंड एक्सेप्टेंस मीन्स वो संस्कार है, मुझे उसके साथ कैसे चलना है, दैट ऑल्सो आई टेक केयर, लेकिन वो संस्कार मेरे चित पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा, दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस डजंट मीन ठीक है आप रोज लेट आओ।
1: एक्सेप्टेंस को कई बार मैं सप्रेशन में समझता था।
2: एक्सेप्टेंस मीन्स उसका चिंतन नहीं करते हैं। अगर चिंतन किया, चिंतन किया तो वो सप्रेशन है।
1: चिंतन सप्रेशन कैसे होगा?
2: आपने चिंतन करके फिर दबा दिया, बोला नहीं, चिंतन तो किया ना,
1: बोल के भी तो चिंतन करते हैं कई बार।
2: हाँ, बोल दिया तो वो कर्म में ही आ गया, एक्शन में आ गया। लेकिन चिंतन किया और अंदर तक रख लिया तो सप्रेशन।
1: बोल बोल बोल के थक जाते हैं, फिर चिंतन भी करते, सुनता ही नहीं है,
2: तो वो तो फिर रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गया ना। ये इसको आज एक लाइन लेते हैं, पकड़ते हैं और इसको आज प्रैक्टिस करते हैं। पहले फिजिकल चीजों के साथ करते हैं, फिर लोगों के संस्कारों के साथ करते हैं। क्योंकि आज हमें ये करने की इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है कि हम आसपास के लोगों के संस्कारों का चिंतन कर रहे हैं, जो लोग हम सिर्फ मीडिया में देख रहे हैं जिसके बारे में, उसका भी चिंतन कर रहे हैं। हमें लगता है नॉर्मल है ना उनके बारे में सोचना, वो वहां है, इस समय मेरे लिए वो व्यक्ति टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन उसका चिंतन करके मैंने उसको यहाँ का हिस्सा बना दिया।
1: कई लड़कियां जो सिर्फ एक को नहीं, जो मिले उसको, मेरी सास ऐसी, मेरे ससुर ऐसी, मेरे साथ एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, फ्रेंड है उसको भी बोल दिया, अपनी मदर को भी बोल दिया
2: तो वो ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो गया।
1: नहीं, मतलब चिंतन करते जाना, यही बात
2: चिंतन
1: बोलते जाना।
2: तो सारा दिन चल रहा ना, इसीलिए तो वो बोल में बहुत बार आ रहा है। जो हम ज्यादा सोचते हैं उसको फिर हम बोल देते हैं। सपोज अब फिर से देखते हैं, ये फूल और कांटे हैं, ये उधर हैं। पहले मैंने उसको अपने चित्त पर रखा, चिंतन किया, फिर मैंने आपको सुनाया। अब जैसे ही मैंने आपको सुनाया, और अगर आपने यहां रख लिया, एक है कोई बात को सुनना, जिसके लिए कहते हैं सुनी अनसुनी कर दो। सुनी अनसुनी कर दो मतलब सुन तो रहे हैं कानों से, चित्त पर नहीं रखो। लेकिन अगर मैंने आपको सुनाया और आपने भी यहां रख लिया, तो मैंने क्या किया, अपने चित्त से कचरा उठाया और दूसरे के भी चित्त पर रख दिया।
1: अब ये पेरेंट्स का क्या यहाँ पर रोल है कि जब वो बच्चे आके आपको सुनाते हैं?
2: अगर मैं आपको आके सुनाऊं कितने कांटे हैं इधर, चुभ ही जाएगा, ये कोई जगह है काम करने की? कांटे कांटे, सफाई भी नहीं किया है, साफ तो रखना चाहिए। आई एम गोइंग ऑन स्पीकिंग ना,
1: तो मैं आपसे ये बोलूंगा भाई जो नहीं है बाकी चीजों पे ध्यान दो, वो अपने आप
2: बोलूंगी। लेकिन कांटे हैं,
1: वो हैं, उनको रहने दो, उस तरफ आप मत जाओ।
2: क्या देखूं फिर मैं, क्या देखने?
1: आप उसके आसपास कितनी सुंदरता है वो देखो ना।
2: बस यही करना है पेरेंट्स को, वो पेरेंट्स को भी यही करना है, क्योंकि बेटी घर आके कांटे सुना रही है, लेकिन कोई आत्मा तो ऐसी नहीं है जिसके अंदर सिर्फ कांटे हैं।
1: मगर ऐसे सब करने लग जाए तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी।
2: तो लाइफ ही तो अच्छी बनानी है, ऐसा
1: पेरेंट्स भी जो उसको एंडोर्स करते, अच्छा उसने ऐसा बोला,
2: तो वो क्या होता है, उसके कांटों को फिर और पक्का। अभी मैं ऑलरेडी फील कर रही हूँ यहाँ इतने कांटे हैं, आई एम नॉट फीलिंग नाइस। कांटे हैं। अगर आपको मैंने सुनाया देखो ना कितने कांटे हैं, और आपने ऊपर से कहा बेकार जगह है, कितने कांटे हैं, यू सी मेरी फीलिंग कितनी इंडोर्स हो जाएगी उसके बाद।
1: नहीं, बट इस पे मेरा एक और संस्कार है, देखो फालतू बातें मेरे साथ नहीं करना, आई गेट इरिटेटेड, छोड़ दो।
2: लेकिन तो आपने क्या किया, आपने कहा मत सुनाओ, तो आपने अपने चित्त पर नहीं लिया, लेकिन आपने मेरे चित्त से साफ करने की कोशिश नहीं की। अगर आप मेरे को एक मिनट देखे, सिर्फ मेरा अटेंशन कांटों से फूलों की तरफ ले जाएंगे, ये आपकी मेरे ऊपर दुआ होगी, क्योंकि यू विल बी रिलीजिंग मी ऑफ अ लॉट ऑफ पेन। मैं कांटा कांटा कांटा ही दिख रहा हूं। क्या होता है, जैसे आपने कहा ना, किसी एक को याद किया, उसकी कमजोरी दिख गई, सिर्फ विशेषता दिखी नहीं, लेकिन ऐसे ही जो आपको आके सुना रहा है उसको सिर्फ कमजोरी दिख रही है, तो हमारा रोल है ना उसको भी विशेषता दिखा देना, फिर वो फिर कमजोरी सुनाएंगे, हम फिर विशेषता दिखाएंगे, वो फिर सुनाएंगे, हम फिर दिखाएंगे, दिखाते दिखाते उनको भी कभी कभी धीरे धीरे विशेषता दिखनी शुरू हो जाएगी। इट विल हैपन। कमजोरी कोई सुना रहा है उसको इंडोर्स नहीं करना, इवन चुपचाप नहीं सुनना। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैंने ऊपर से कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुन लिया तो इंडोर्स कर दिया। हाँ। जैसे गॉसिप करते हैं, गॉसिप कर रहे, बैठे किसी के भी बारे में, इधर उधर इंडोर्स कर दिया। ये बहुत डीप कर्मा है कि किसी एक आत्मा को लिया, उसकी कमजोरियां या उसके बारे में जो हम सोचते हैं वो डिस्कस किया, उसको अपने चित्त पर रखा, फिर वो औरों के चित्त पर रखा, फिर उन सब ने वो नेगेटिव वाइब्रेशन उस आत्मा को भेजी, उस आत्मा की वो नेगेटिविटी बढ़ी। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी?
1: उस आत्मा की नेगेटिविटी कैसे बढ़ती है?
2: जैसे आपने कहा किसी घर में बेटी आई, उसने घर आकर चार लोगों को अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ बातें नेगेटिव सुना दी, ठीक है, वो ऐसे हैं, व्हाटएवर। जैसे ही चार लोगों को सुनाई, चार लोगों के चित्त पर बैठी, तो चार लोगों ने भी वैसी वाली थॉट क्रिएट की। तो ये पांच लोग जो चिंतन करेंगे, तो पांच लोगों की नेगेटिव एनर्जी जाएगी उस आत्मा की तरफ। कैन यू इमेजिन 5 पीपल सेंडिंग यू नेगेटिव थॉट्स, व्हाट विल हैपन?
1: चार तीर आ गए मेरे पास।
2: चार नहीं आते ना, चार आत्माओं से अनेक नेगेटिव तीर आते हैं, कोई एक थॉट थोड़ी क्रिएट करता है। कोई एक थोड़ी क्रिएट करता है, कोई सिर्फ उस टाइम थोड़ी क्रिएट करता है, क्योंकि अब हमने वो कचरा तो उनके चित्त पर रख ही दिया, अब वो तो कितनी बार सोचेंगे उस बारे में। कैसे ये कॉन्शियसनेस बनती है इतनी नेगेटिव?
1: हम क्यों नहीं सीखे जब हमारी मदर से, जब उन्होंने वो दंदा दा पिसिया बच सकता है, लेकिन थॉट्स का पिसिया कभी नहीं बचता।
2: दांत से पीसा बच सकता है, थॉट से पीसा नहीं बच सकता। मीनिंग क्या? दांत से किसी को काटेंगे तो यही चोट लगेगी, सिर्फ ठीक हो जाएगी चार दिन के अंदर, लेकिन थॉट से किसी को काटा तो वो थॉट्स मेरे चित पर पहुंची, इधर की रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गए।
1: आज समझ में आया तो टू लेट।
2: नो, कैंसर, रॉन्ग लाइन, इट्स टू लेट। नो, नॉट एट ऑल। जिस क्षण शुरू किया इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू बर्थ, इट्स एन अवेकनिंग। कभी टू लेट नहीं, ये भी रॉन्ग लाइन रिकॉर्ड हो जाएगी, टू लेट नहीं। वी शुड से थैंक यू टू हिम कि हमें वो ये ज्ञान देता है जिससे हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। आज एक होमवर्क पक्का करते हैं, किसी को भी देखते हुए उस आत्मा की विशेषता को देखेंगे। किसी की कमजोरी दिख रही है, दिख गई है, उसके साथ कैसे चलना है वो देख लेंगे, कमजोरी को चित पर नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर मैंने कमजोरी चित पर रखी तो वो मेरे चित का हिस्सा बन जाएगी। कमजोरी दूसरों को जाकर नहीं सुनाएंगे, इज वेरी रिस्की। क्योंकि अगर कमजोरी दूसरों को जाकर सुनाई तो हमने दूसरों के भी चित पर रख दी। हम जिम्मेवार बने हैं नेगेटिविटी फैलाने के, डीप कर्मा, डीप कर्मा। तो दूसरों के चित पर नहीं रखना है। दूसरे आकर अगर हमें किसी की कमजोरी सुना रहे हैं तो उसको अपने चित पर ग्रहण नहीं करना है। धीरे से उनको, उनके चित को भी कहां लेकर जाना है, उनकी विशेषताओं की तरफ लेकर जाना है। एक दूसरों को दुआएं भेजनी है। हर एक के कचरा कचरा कचरा यहाँ रखते रखते हमारा मन ही फिर उदास और परेशान होने लग गया है, क्योंकि वहां कोई अच्छी चीज ही नहीं बची हुई। अभी सबकी कमजोरी कमजोरी कमजोरी रखते रखते हम कमजोर हो चुके हैं। तो कितना अटेंशन रखने की जरूरत है,
1: बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।
2: ओम शांति।
1: थैंक यू।
3: ग्रॉस संस्कार्स आर फिजिकल हैबिट्स एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, sleeping, talking, walking, etc. Subtle sanskars are emotional and ways of thinking and feeling like habit of caring, sharing, humility, complaining, criticizing, anger, etc. Our attention is normally focused more on those sanskars of others which we feel are not right. We create irritation, anger, jealousy, hurt or hatred when we have to face their sanskars, and so negative sanskars in others are noticed more than their good sanskars. When we notice others' weaknesses and start thinking about it, it is no more only their sanskar. It has now become a part of our thought process. We need to always remember, as we think, so we become, and consciously focus our attention to the beautiful qualities in people around us. Accepting others' sanskars means being aware that the soul has a particular sanskar, preparing ourselves to live and work with them, but not keep thinking or talking about their sanskar.
2: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। आज हम लेकर आए हैं एक खास आध्यात्मिक सफर, अंतरिक्ष दिव्यता का आह्वान। दिव्या जैसे दुर्गा और लक्ष्मी केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि हमारे भीतर की दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। तो आइए इस शो में हम जानें कि कैसे ये प्रतीक हमें जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। इसी के साथ सुनते हैं देवी की।

नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। जब हम कहते हैं कि देवी ने राक्षसों का वध किया तो उसका अर्थ है कि हमें अपने भीतर के राक्षसी क्रोध, लोभ, अहंकार और आसक्ति पर विजय पानी है। देवी के आठ हाथों में आठ दिव्य शक्तियों का याद दिलाते हैं। सहनशीलता, चुनौती का सामना, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति। तो सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा नवरात्र गीत।

तो दोस्तों, इस आध्यात्मिक सफर में रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता जी। दोस्तों, इस आध्यात्मिक सफर में सफर करना है तो उसका आध्यात्मिक कथा जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। तो सुनते हैं नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री देवी की आध्यात्मिक कथा। दोस्तों, माँ दुर्गा का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री कहलाता है। शैल का अर्थ है पर्वत, इसलिए उन्हें पर्वत राज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में वे राजा दक्ष की पुत्री सती थी और भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव जी का अपमान करते हुए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। जब सती वहां पहुंची, तो उन्होंने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया। अपने स्वाभिमान और पति के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। अगले जन्म में वे हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्मी और शैल पुत्री कहलाई। उन्होंने पुनः कठोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैल पुत्री का वाहन वृषभ है और उनके हाथ में त्रिशूल तथा कमल शोभायमान है। वे हमें दृढ़ विश्वास, आत्मसम्मान और अटूट भक्ति का संदेश देती है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक आध्यात्मिक गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। दोस्तों अब बात करते हैं अनुष्ठानों की। जागरण का मतलब है अज्ञान और नकारात्मक प्रवृत्तियों की नींद से जागना। व्रत का अर्थ है केवल भोजन से परहेज नहीं बल्कि नकारात्मक सोच, गुस्सा और चुगली को रोकना। सात्विक आहार हमें शांति और ईश्वर स्मरण की ओर ले जाता है। दीपक जलाना हमें याद दिलाता है कि शरीर मिट्टी के दीपक जैसा है और आत्मा उसकी ज्योति है। और जब हम रास और गरबा जैसे नृत्य देखते हैं तो वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में दूसरों के साथ सहनशीलता और सहयोग से सामंजस्य बनना ही असली नृत्य है। तो दोस्तों सुनते हैं नवरात्रि का एक सुंदर गीत।

तो दोस्तों, आज का हमारा सफर यही समाप्त होता है। आप सुन रहे थे अंतरिक्ष दिव्यता का आह्वान, केवल रेडियो पुनेरी आवाज FM पर। मैं हूँ RJ संजय, आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब के लिए मुस्कुराइए, दिव्यता जगाइए और जुड़े रहिए रेडियो पुनेरी आवाज से। जय माता जी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: उपवास। लेखिका सुधापुरी। पात्र परिचय: दृष्टि, आकाश, वेदांत, पंकज, यश, सैंडी, विनोद, उन्नति।
2: देखो देखो, मेरी मम्मी ने सावन के उपवास रखे हैं। मेरे तो मजे ही आ गए।
3: तुम्हारे मजे कैसे आ गए?
4: अरे भाई, उनके लिए बर्फी आएगी तो मैं भी तो खाऊंगा।
5: तुम्हें तो उपवास में भी खाना सूझ रहा है।
6: उपवास का मतलब ही होता है कि अपने शरीर की पाचन मशीनरी को थोड़ा रेस्ट देना।
3: रेस्ट देना या फिर किसी और तरह के काम को देकर शायद चुस्त बनना।
5: अरे, ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है।
3: हाँ, जैसे अनाज आदि को पचाने के काम से छुट्टी देकर केवल तरल पदार्थ या फल ही पचाना।
1: या फिर पाचन मशीनरी के कार्य का समय बदल कर भी तो उसे चुस्त बनाया जा सकता है।
2: कहीं तुम्हारा इशारा रोजों पर तो नहीं?
3: हाँ, वो भी और कई तरह के जैन व्रत भी। तो
4: मेरी माँ तो कई प्रकार के अनुव्रत रखती है।
5: वे क्या होते हैं?
6: अनु मतलब छोटे छोटे, जैसे कई बार कई दिनों तक सिर्फ गेहूं से बनी चीजें छोड़ देती हैं और सब सेम रहता है उनका।
5: हाँ, तो इससे तो कितना कुछ छूट जाएगा रोज खाने से।
1: कैसे?
3: ओहो, ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई। चलो ध्यान देते हैं कि हम रोज सिर्फ गेहूं से बना क्या क्या खाते हैं।
2: ये तो गेम बन गई।
3: पहले मैं बताता हूँ, रोटी।
4: ये तो सबसे आसान था।
5: ब्रेड
6: दूसरा आसान।
5: कभी कभी माँ आटे का हलवा बनाती है।
3: कई तरह के केक, गेहूं के आटे से बनी पूड़ियाँ, कचौरियाँ,
1: कई तरह के बिस्किट्स, दलिया, सूजी, यहाँ तक मैदा भी।
2: ओ, फिर तो और भी तो कई तरह की चीजें हो गई, जैसे इन चीजों से बनी चीजें भी, जैसे बर्गर, पिज्जा, केक, पेस्ट्री और ना जाने कितने ही फूड आइटम्स।
3: तो अधिकतर तो फल, सब्जियाँ और दूध से बनी चीजें भी तो रह गई। इसका मतलब अनुव्रत भी काफी शक्तिशाली हो गए कई चीजें छुड़वाने में।
2: अनुपम की तरह।
3: पर इससे एक बात तो तय है कि और कुछ हो ना हो, हम अपने भोजन को और ध्यान से खा सकते हैं। मतलब हमारा फोकस बढ़ता है।
4: मतलब ध्यान लगाने की क्षमता।
3: हाँ हाँ, ये कोई कम फायदा तो नहीं। ये ध्यान लगाने की बढ़ी हुई क्षमता जीवन के और पहलुओं में भी काम आती है।
5: वो कैसे?
3: देखो ना, ध्यान हर चीज में चाहिए। पढ़ाई लिखाई में तो है ही, किसी भी कला को सीखने में, किसी भी हुनर को अपनाने में।
6: और दीदी, किसी से बात करने समय उसकी बात अधिक से अधिक समझने में। इससे तो याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी।
3: वो तो है ही, बल्कि इच्छा शक्ति, निष्ठा, उद्देश्य तक पहुंचने का पक्का इरादा और फिर जब व्रत सफल हो तो संयम में रहने का आत्मविश्वास।
5: अरे वाह, क्या बात है। आत्मविश्वास बढ़ जाए तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है।
1: ये तो ऐसी चाबी है, इसे हर क्षेत्र के ताले खुल सकते हैं।
3: और सबसे बड़ी बात है, हम में बढ़ता है सब्र, यानी कि पेशेंस।
2: इतना कुछ सिर्फ व्रत रखने से?
3: हाँ, तभी तो बापू कितने उपवास रखा करते थे। कहते हैं एक बार जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए केवल दिन में एक बार खाएंगे और वह भी केवल 5 खजूर।
2: ओ, सिर्फ 5?
3: हाँ, और उनके मित्र ने उन्हें कोई 7 खजूर दे दिए। सोचा बापू ध्यान नहीं देंगे और वे उन्हें कुछ ज्यादा ही खिला पाएंगे।
2: फिर
3: बापू ने खजूर देखा और कहा, मैंने 5 खजूर कहे थे, तुमने मुझे 7 दे दिए।
7: फिर
3: उनके मित्र ने प्यार से कहा, अब 5 और 7 में ज्यादा फर्क कहाँ है। ऐसा 1-2 दिन हुआ, बापू हर रोज 2 खजूर बाहर निकाल देते।
5: हाँ हाँ, उनका मित्र उनसे प्रेम करता था।
3: हाँ, जब बापू के टोकने पर भी उन्होंने खजूर कम लाने शुरू नहीं किए तो जानते हो बापू ने क्या किया?
5: क्या क्या?
3: उनमें से दो खजूर तो पहले ही निकाल दिए और एक दिन केवल 3 ही खजूर खाए और कहने लगे अपने मित्र से, जब 5 और 7 खजूर में कोई अंतर नहीं तो 5 और 3 में भी नहीं होगा।
7: ओ वाह!
3: हाँ हाँ, उनके मित्र ने फिर उनसे बहुत क्षमा मांगी और बापू के कहने के अनुसार ही चलने लगे।
2: बापू ने तो कई बार ब्रिटिश सरकार को भी अपने उपवास द्वारा घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कितने लाभ हैं उपवास के।
8: क्या सभी धर्मों के लोग उपवास रखते हैं?
3: सभी धर्मों में उपवास की आवश्यकता बताई गई है।
4: हाँ दीदी, इसलिए शायद हर व्यक्ति अपने धर्म परंपरा के अनुसार उपवास या व्रत करता ही है।
3: ठीक कह रहे हो, पर असल में व्रत उपवास का संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिकरण से है।
4: इससे हमारा शरीर स्वस्थ भी तो रहता है।
5: क्या पता इसके महत्व को समझते हुए सभी धर्मों ने इसे धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ दिया है, ताकि लोग उपवास के अनुशासन में बंधे रहें।
6: लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व के कारण भी उपवास यानी पेट को खाली रखना अच्छा है।
3: वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सभी सप्ताह में एक उपवास जरूर रखना चाहिए।
5: कई बीमारियों से भी तो इससे छुटकारा मिलता है।
3: हालांकि हर बीमारी का इलाज उपवास नहीं है, लेकिन यह कई समस्याओं में कारगर रहता है।
5: इसका मतलब दीदी, उपवास के तो अनगिनत फायदे हैं।
3: कहते हैं उपवास जितना लंबा होगा शरीर की ऊर्जा उतनी ही अधिक बढ़ती है।
1: वाह, क्या बात है।
3: कहते हैं उपवास आपके आत्मविश्वास को इतना बढ़ा सकता है कि आप अपने शरीर, जीवन और भूख पर अधिक नियंत्रण हासिल कर सकें। हमारा शरीर तो स्वनियंत्रित है।
7: मतलब कैसे?
3: मतलब ये खुद को ठीक करने वाली प्रजाति का हिस्सा है। देखते नहीं, कहीं चोट लगे तो कैसे पहले खून बहता है, फिर जम के पपड़ी सी बन जाती है ताकि जल्दी से आराम मिले।
1: हाँ ये तो है।
3: उपवास के जरिए हमारा शरीर अपने मेटाबॉलिज्म को सामान्य स्तर पर ले आता है
2: और फिर इससे शरीर स्वस्थ रहता है।
8: निराहार रहने से?
3: उससे या एक समय भोजन लेने से या फिर
4: केवल फलाहार रहने से?
3: असल में इससे पाच तंत्र को आराम ही मिलता है।
6: और जब मेहनत जरूरी है तो आराम भी तो उतना ही जरूरी है ना?
3: यही नहीं, इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी, अरुचि, सिर दर्द, बुखार आदि रोगों से भी आराम मिलता है।
7: वाह, कितना अच्छा है।
8: आध्यात्मिक शक्ति भी तो बढ़ती है।
4: मतलब?
8: मतलब जैसे ज्ञान, विचार, पवित्रता,
5: बुद्धि का विकास भी तो होता है। इसी कारण तो उपवास, व्रत आदि को सभी धर्मों की पूजा पद्धति में शामिल किया गया है।
6: यानी से यस टू उपवास एंड नो बर्फी।
2: यस टू बर्फी भी, पर कभी कभी।

0: अंदर भी आया, छन छन करके आई चिड़िया।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही।
4: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यान पिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियां बांटो। आज का दिन बेहद खास है, बेहद पावन है, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है 9 दिनों का महापर्व, शक्ति भक्ति और उल्लास का पर्व नवरात्रि। जी हाँ, आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज के दिन हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री की आराधना करेंगे। माँ शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री, इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। ये वृषभ पर सवार है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, हम नवरात्रि को सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार के रूप में ही नहीं, बल्कि स्वयं में उन दिव्य गुणों को जागृत करने के रूप में भी देख सकते हैं जो इन देवियों में है। हर देवी एक खास शक्ति का प्रतीक है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। माँ शैलपुत्री का पहला गुण है पवित्रता। शैल यानी पत्थर, जो शुद्ध और अटूट होता है। इसी तरह हमें भी अपने मन को हर तरह की नकारात्मकता से पवित्र और शुद्ध बनाना है। दूसरा गुण है अटूटता और स्थिरता। जिस तरह एक पर्वत हर मौसम में अड़िग खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी अपने विचारों और संकल्पों में स्थिर रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होना। यही शैलपुत्री की शक्ति है। और तीसरा गुण है निडरता। देवी शैलपुत्री हमें भय पर विजय प्राप्त करना सिखाती है। जब हमारे भीतर सच्चाई और पवित्रता की शक्ति होती है, तो हम निडरता से जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आइए आज हम माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि हमें ये तीनों गुण प्रदान करें। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत होता है। इनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और शक्ति आती है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। अब बात करते हैं पूजा की एक और महत्वपूर्ण विधि की, नैवेद्य। नैवेद्य यानी देवी को भोग लगाना। ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। जब हम कोई वस्तु ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो वो प्रसाद बन जाती है और उसमें दैवीय शक्ति का संचार होता है। नवरात्रि के हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूप को विशेष नैवेद्य अर्पित किया जाता है, जिसका अपना एक खास महत्व होता है। आज नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुद्ध घी का भोग लगाने से व्यक्ति को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। गाय का घी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है और ये हमारी सभी व्याधियों को दूर करके शरीर को निरोगी बनाता है। तो इस विशेष नैवेद्य को अर्पित करके हम माँ से अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये एक साधना है जो हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत पूरे मन और श्रद्धा के साथ करें। तो श्रोताओ, अपने दिन की शुरुआत माँ के आशीर्वाद से करें। प्रार्थना करें कि माँ शैलपुत्री हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। कल हम नवरात्रि के दूसरे दिन तप और संयम की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी और उनकी महिमा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय माता दी।

0: नवरात्र म्हणलं की भक्तीचा रंग, उत्सवाच्या संग आणि गरबाच्या तालावर थिरकणारे पाय. नऊ दिवस नऊ रंग आणि जल्लोष मात्र एकदम हटके स्टाईल मध्ये. अरे वा मंडळी, आता हा टेका तुम्हालाही गरब्याच्या मैदानात घेऊन जायची इच्छा करत आहे ना? पण थांबा, अजून धमाल बाकी आहे. कारण गरब्याचा रंग चढला की मन म्हणतं तर चला मंडळी, ताल धरूयात, फेर धरूयात आणि नवरात्राचा आनंद द्विगुणित करूयात. आई जगदंबेच्या आशीर्वादाने तुमचं आयुष्य सुख समृद्धी आणि आनंदाने भरून जावो. तुम्हा सर्वांना नवरात्री आणि दसऱ्याच्या पुणेरी आवाज 160.8 परिवाराकडून हार्दिक मनपूर्वक शुभेच्छा. आता वेळ झाली आहे गरब्याच्या धमाकेदार ठेक्याची, तर रेडिओचा आवाज चढवा आणि मनसोक्त नाचा आणि बोला जय माता दी.
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडिओ पुणेरी आवाज.
1: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो खुशियां बांटो.
3: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आप सभी का स्वागत करती हूँ. आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे. तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है कैसे पहचाने कि हमारे में ईर्ष्या है. अक्सर हम देखते हैं कि लोगों में ईर्ष्या की भावना होती है, पर वो उस चीज को बता नहीं सकते क्योंकि ये बताने की बात नहीं होती है. लेकिन खुद को खुद से बदलना बहुत जरूरी है, तो इसकी पहचान हमें बहुत ही समझदारी से करनी है. तो आइए आज हम इसी पे चर्चा करते हैं, ईर्ष्या से अपनी पहचान करना. कैसे पहचाने कि हमारे में ईर्ष्या है. किसी की, हाँ किसी की सफलता का ज्यादा सुख देखकर क्या भाव जागता है मन में. किसी को अच्छा साथी प्राप्त होता है या किसी को कोई पुरस्कार या अच्छा वाहन मिलता है तो क्या भाव जागता है मन में. आपके किसी परिचित का मकान आपके मकान से बड़ा और सुंदर बन जाए तो क्या भाव जागता है मन में, कैसा भाव होता है. आपके किसी परिचित के आपसे ज्यादा मित्र, सहयोगी, फॉलोअर, शिष्य

उनकी जो भी कार्य क्षमता है उसको छीन लेता है। इससे आप अपने दिल में सांप लौटना, जो कहते हैं सांप का लौटता हुआ महसूस करते हैं, अपने को नीचा महसूस करते हैं। इसी कुभाव को ईर्ष्या अथवा जलन कहा जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ईर्ष्या का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जिंदगी में, और इसमें एक धर्मराज शब्द जो आता है, ये शब्द का असर क्या होता है? ईर्ष्या क्या धर्मराज की सजा है? हाँ, इसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि तेल के कड़ाहों में जलाया जाता है, ऐसा धर्मराज की सजाओं भी वर्णन है। तेल के कड़ाहे में खोलने से तो कष्ट कुछ ही क्षण का होता है और फिर आत्मा शरीर छोड़ देती है, परंतु ईर्ष्या की अग्नि में जो जलती है वो आत्मा तो फिर भी सालों साल या जीवन भर भी और अगले जन्मांतर सुलगती रहती है। अतः ईर्ष्या एक प्रताड़ना है, यह धर्मराज की सजा, यह सजा जो है माया देती है। हाँ, माया हमें देती रहती है, यही है धर्मराज की सजा। और अज्ञानता के कारण आत्मा इस सजा को भुगतती रहती है। क्या आपके दिल में सदा शांति है? क्या आप रोना बंद कर देते हैं या ये बंद हो गया है? क्या आपके दिल में सदा स्वयं के लिए और सभी के लिए प्रेम है? क्या आपके दिल में सदा आनंद है? क्या आप सदा सत्य चित आनंद स्वरूप की अनुभूति करते रहते हो? क्या आप कर्मणा और वाचा क्रोध से मुक्त हो? यदि उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं है तो आप यह मान लो कि आप धर्मराज की सजाओं से गुजर रहे। तो दोस्तों, आपने देखा धर्मराज की सजा कैसी होती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है कैसे पहचाने ईर्ष्या है हमारे मन में, ईर्ष्या से पहचान। तो हम देखते हैं कि अपने को अगर हम आत्मिक स्थिति में रख कर देखें, क्या आत्मा सांप की योनि में जी रही है? हाँ, जो आत्मा ईर्ष्या के भाव से ग्रस्त है वह सर्प योनि से गुजर रही होती है, वह अंदर ही अंदर जल रही होती है। दूसरों को वो देखती है, उसको दूसरा व्यक्ति सुहाता नहीं है, जैसे सांप को अपने आसपास कोई नहीं सुहाता है। वह उसे डसने काटने को उतावला रहता है। ऐसे ही ईर्ष्या से ग्रस्त आत्मा दूसरे की कदम कदम पर बुराई महसूस करती रहेगी, दूसरे की बुराई करती रहेगी, जहर उगलती रहेगी। ईर्ष्या से आखिर कैसे मुक्त हुआ जाए, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। कि कहा जाता है कि ईर्ष्या से हमें मुक्त होना है, तो इसमें हम सुनते हैं कि दे दान्तु छूटे ग्रहण। परमात्मा कहते हैं कि हे आत्मा, आप एक श्रेष्ठ और महान आत्मा हो, आप बार बार यह संकल्प करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। ऐसा करने के दौरान आपके दिल में या दिल से जो आवाजें आए, जैसे कि तुम महान नहीं हो, हाँ तुम महान नहीं हो सकते, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, तुम तो अहंकारी हो, तुम्हारे मन में काम विकार है, तुम्हारे में बहुत इच्छाएं हैं, क्रोधी हो तुम, लोभ करते हो तुम, टेंशन में रहते हो तुम, परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चल पाते हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारी धारणाएं कमजोर है, तुम रोगी हो, ऐसे में हताशा हो तुम्हारे मन में, क्या उमंग नहीं है आदि आदि। ऐसा कहते हैं तुम्हारे में उमंग नहीं है, ये सब सच सच मुझे बता दो, आप मुक्त हो जाओगे। परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा हमें कहते हैं कि आप ये सब जितनी भी इस तरह की बातें हैं वो हमें सौंप दो, वो हमें बता दो, तो आप हल्के हो जाएंगे, आप उस चीज से मुक्त हो जाएंगे। तो देखा आपने, परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, आखिर हम क्या देते हैं उन्हें? हमें सिर्फ अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी हमारे मन में जितनी भी ईर्ष्या की भावनाएं रहती है किसी के प्रति, या अपने आप से घृणा, इस तरह की भी भावनाएं अगर आती है, तो हमें उसे किसे देना है? परमात्मा को देना। परमात्मा को देने के बाद हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और उस चीज़ से हम बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं ज्योत्सना आपसे फिर से आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है ईर्ष्या से खुद की पहचान। जब तक हम देखते हैं कि जब तक आत्मा अपने मन में, हाँ अपनी बुद्धि, अपने संस्कारों और अपने रोल से संतुष्ट नहीं है, तब तक आत्मा अपने से प्यार नहीं कर सकती। आत्मा को जब तक स्वयं के रोल से प्यार नहीं, तो अपना रिगार्ड भी नहीं रख सकती, फिर दूसरे भी रिगार्ड नहीं देंगे, फिर आनंद में नहीं रहेंगे, फिर जिनको प्राप्तियां हो रही है उनको देख ईर्ष्या में जलने लगेंगे। जब तक आत्मा परमात्मा को सच नहीं बताती, जब तक वो सच नहीं बताती है, सच्चे दिल पर साहेब राजी का वरदान नहीं लेती है, तब तक ईर्ष्या की अग्नि में जलने के लिए मजबूर होती है और तब तक उसकी उन्नति भी जलती रहती है। अपने दिल का हाल व ईर्ष्या की भावना को परमात्मा को बताना होता है कि किसको देखकर इच्छा नहीं हमारे अंदर कुछ भी ऐसी भावनाएं आती है कि उसे हम देख रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं होती कि हम उससे बातें करें, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ये सारी बातें हमें किसे बताना है? परमात्मा को। किसकी सफलता से हमें चिढ़ है, उसकी क्या बात पूरी लगती है, उसका कौन सा गुण मुझ में भी आ जाए तब सुकून आएगा, उसका क्या क्या बुरा हो जाए तब दिल में सुकून आएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न मन में आते हैं। तो आप अपने आप को पहचानो कि आपकी भावनाएं क्या कह रही है, आपके मन में क्या बातें चल रही है। इसे कहते हैं ईर्ष्या। इस प्रकार के सभी प्रश्नों के दिल में के जो भी उत्तर हैं, वो शिव बाबा, हाँ परमात्मा को लिखित रूप में देते हैं। तो फिर शिव बाबा जो हैं, परमात्मा ईर्ष्या से हमें मुक्त होने में मदद करते हैं। अपनी भावनाओं को शब्द देंगे, हाँ उसे हम शब्द देने में हाँ सफल होंगे, अन्यथा मन मन भावे मूड हिलावे की श्रेणी में आ जाएंगे। जितना जितना सच्चाई से बताएंगे, उतना उतना स्वमान में स्थित होते जाएंगे और ईर्ष्या से मुक्त होते जाएंगे। इसे ही कहते हैं अच्छा शिक्षक वह नहीं है जो अच्छा पढ़ाना जानता है, बल्कि वो है जो अपने छात्र को पढ़ना और उसकी अवस्था क्षमता और आवश्यकता को पहचानना या उसे जानता है। इसे कहते हैं एक अच्छा शिक्षक। तो उसी तरह परमात्मा हमारे एक अच्छे शिक्षक भी हैं। तो अगर हम अपनी हर बुराइयों को, जो भी हमारे मन में बुराइयां हैं, उसे अगर हम परमात्मा को सौंप दें, तो हम बिल्कुल इस चीज से मुक्त हो जाते हैं। तो देखा आपने, परमात्मा को अपनी हर बातों को बताना हमें अति आवश्यक है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।
1: प्रेम की गंगा, करुणा की देवी, वात्सल्य की प्रतिमा वो परम सेवी। प्रेम की गंगा, करुणा की देवी, वात्सल्य की प्रतिमा वो परम सेवी। शक्ति की दानी, सच्चाई का दर्पण, शुभ भावना की धारा, संपूर्ण शिव समर्पण, संपूर्ण शिव समर्पण। खिले हुए फूलों की जो महकती कयारी है, खिले हुए फूलों की जो महकती कयारी है, शिव सी जो सुंदर है, ऐसी दादी हमारी है, ऐसी दादी हमारी है।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
1: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, खुश रहो खुशियां बांटो। आज का दिन बेहद खास है, बेहद पावन है, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है 9 दिनों का महापर्व, शक्ति भक्ति और उल्लास का पर्व नवरात्रि। जी हाँ, आज है नवरात्रि का पहला दिन, और आज के दिन हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री की आराधना करेंगे। माँ शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री, इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। ये वृषभ पर सवार है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, हम नवरात्रि को सिर्फ एक धार्मिक त्योहार के रूप में ही नहीं, बल्कि स्वयं में उन दिव्य गुणों को जागृत करने के रूप में भी देख सकते हैं जो इन देवियों में है। हर देवी एक खास शक्ति का प्रतीक है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। माँ शैलपुत्री का पहला गुण है पवित्रता। शैल यानी पत्थर, जो शुद्ध और अटूट होता है, इसी तरह हमें भी अपने मन को हर तरह की नकारात्मकता से पवित्र और शुद्ध बनाना है। दूसरा गुण है अटूटता और स्थिरता। जिस तरह एक पर्वत हर मौसम में अड़िग खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी अपने विचारों और संकल्पों में स्थिर रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होना, यही शैलपुत्री की शक्ति है। और तीसरा गुण है निडरता। देवी शैलपुत्री हमें भय पर विजय प्राप्त करना सिखाती है। जब हमारे भीतर सच्चाई और पवित्रता की शक्ति होती है तो हम निडरता से जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आइए आज हम माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि हमें ये तीनों गुण प्रदान करें। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत होता है। इनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और शक्ति आती है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। अब बात करते हैं पूजा की एक और महत्वपूर्ण विधि की, नैवेद्य। नैवेद्य यानी देवी को भोग लगाना। ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। जब हम कोई वस्तु ईश्वर को अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद बन जाती है और उसमें दैवीय शक्ति का संचार होता है। नवरात्रि के हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूप को विशेष नैवेद्य अर्पित किया जाता है, जिसका अपना एक खास महत्व होता है। आज नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुद्ध घी का भोग लगाने से व्यक्ति को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। गाय का घी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है और ये हमारी सभी व्याधियों को दूर करके शरीर को निरोगी बनाता है। तो इस विशेष नैवेद्य को अर्पित करके हम माँ से अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक साधना है जो हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत पूरे मन और श्रद्धा के साथ करें। तो श्रोताओं, अपने दिन की शुरुआत माँ के आशीर्वाद से करें। प्रार्थना करें कि माँ शैलपुत्री हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। कल हम नवरात्रि के दूसरे दिन तप और संयम की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी और उनकी महिमा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय माता दी।

0: लड़ेगा।
1: देखो जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय देखो जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले।

0: रेडियो पुनेरी आवाज 107.9 एफएम पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आंतरिक दिव्यता का आह्वान, आंतरिक दिव्यता का आह्वान।
1: अगर इच्छाएं मुझे चला रही हैं, तो मैं उसकी दास हूं, और अगर मैं इच्छाओं को चला रही हूं, तो मैं मालिक हूं। क्योंकि सतयुग और कलयुग में फर्क ही यही है। इस समय हम हर चीज के दास हैं, और उस समय हम हर चीज के मालिक होते हैं। अभी अधीन हैं, फिर अधिकारी होते हैं। तो मैं हर चीज की मालिक बनूं, मैं अपनी इच्छाओं की मालिक बनूं, न कि इच्छाओं की दास।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: तेनालीरामा पात्र परिचय। राजा सैंडी, तेनालीरामा आकाश, सुखराम वेदांत, सेवक आदित्य, आम आदमी शशिकांत, नरेटर कृष्णा। एक गरीब आदमी था, नाम था सुखराम। उसके बारे में यह बात फैल गई कि सुबह सुबह जो व्यक्ति उसका मुंह देख ले, उसे पूरा दिन खाना नसीब नहीं होता।
2: सुखराम का मुंह क्या देख लिया, सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा।
1: बात फैलते फैलते राजा के कानों में पड़ी।
3: भला ऐसा भी हो सकता है?
1: राजा ने रात में सुखराम को राजमहल में बुलाया, उसे भोजन करवाया और अपने सोने के कमरे में ही एक बिस्तर पर उसे सुलाया। प्रातःकाल उठते ही राजा ने सुखराम का मुंह देखा। सुखराम ने भी राजा को नमस्कार किया। तभी गुप्तचरों ने आकर खबर दी।
2: महाराज महाराज, पड़ोसी राजा विजयनगर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है।
1: राजा जल्दी जल्दी नित्य कर्म से निपटे और नाश्ता किए बिना ही दरबार में पहुंचे। लंबे समय तक विचार विमर्श होता रहा। भोजन का समय हो गया।
4: महाराज, भोजन का समय हो गया।
1: लेकिन राजा एक के बाद दूसरे काम में मग्न रहे। सेवक फिर आया। उसने डरते डरते पूछा,
4: महाराज आपका भोजन?
5: ठीक है, मेरा भोजन यहीं ले आओ।
1: सेवक भोजन की थाली लेकर आया। तभी रानीवास से समाचार आया,
4: महाराज महारानी की तबीयत ठीक नहीं है।
1: महाराज तुरंत रानीवास में पहुंचे। वहां राजवैद्य महारानी का उपचार कर रहे थे। महारानी का बुखार उतरा तब दोपहर डलने लगी थी। राजा बहुत विहल हो गए थे।
5: आज सुबह मैंने सुखराम का मुंह देख लिया, इसलिए मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। ऐसे अभागों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए।
1: व्याकुल महाराज ने आदेश दिया,
5: सुखराम को जेल में डाल दो और सूर्यास्त से पहले उसे फांसी पर लटका दो।
1: तेनालीरामा को इस बात का पता चला।
6: निर्दोष मनुष्य को फांसी लगे, ये गलत है।
1: तेनालीरामा जेल पहुंचे, सुखराम के कान में कुछ कहा और जेल से लौट गए। सूर्यास्त का समय हुआ। फांसी का तख्ता तैयार हो चुका था। फांसी पर जाने से पहले जिम्मेदार अधिकारी ने सुखराम से पूछा,
4: मरने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?
7: मेरी अंतिम इच्छा है कि पूरे नगर में सभी को बता दिया जाए।
4: क्या बता दिया जाए?
7: सुखराम अभागा है, सुबह सुबह जो उसका मुंह देख ले उसे पूरे दिन खाना नहीं मिलता। लेकिन महाराज तो सुखराम से भी अभागे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो उनका मुंह देख ले उसे शाम को फांसी पर लटका दिया जाता है।
1: अधिकारी को बहुत गुस्सा आया। अधिकारी ने दौड़ते हुए जाकर महाराज को सुखराम की अंतिम इच्छा बताई।
4: महाराज आप हुक्म करें तो उसकी यह अंतिम इच्छा पूर्ण किए बिना ही इसी समय उसे फांसी पर लटका दूं।
1: महाराज सोच में पड़ गए।
5: मैंने जरूर जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लिया है।
1: उन्होंने सुखराम की फांसी की सजा माफ कर दी और सुखराम को बुलाकर पूछा,
7: आज्ञा महाराज।
5: ऐसी अंतिम इच्छा की बात तुम्हें कहाँ से सूझी?
7: महाराज मुझ मूर्ख को कहाँ से सूझता, ऐसा कहना तो मुझे तेनालीरामा ने सिखाया था।
1: महाराज को लगा कि तेनालीरामा ने उसे कोई पाप करते हुए रोक दिया। उन्होंने तेनालीरामा का आभार मानकर कहा,
5: वाह तेनालीरामा, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। आज हम लेकर आए हैं एक खास आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। दिव्या जैसे दुर्गा और लक्ष्मी केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि हमारे भीतर की दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। तो आइए इस शो में हम जानें कि कैसे ये प्रतीक हमें जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। इसी के साथ सुनते हैं देवी क्या।

नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। जब हम कहते हैं कि देवी ने राक्षसों का वध किया तो उसका अर्थ है कि हमें अपने भीतर के राक्षसी क्रोध, लोभ, अहंकार और आसक्ति पर विजय पानी है। देवी के आठ हाथों में आठ दिव्य शक्तियों का याद दिलाते हैं। सहनशीलता, चुनौती का सामना, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति। तो सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा नवरात्र गीत।

तो दोस्तों, इस आध्यात्मिक सफर में रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता जी। दोस्तों, इस आध्यात्मिक सफर में सफर करना है तो उसका आध्यात्मिक कथा जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। तो सुनते हैं नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री देवी की आध्यात्मिक कथा। दोस्तों, माँ दुर्गा का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री कहलाता है। शैल का अर्थ है पर्वत, इसलिए उन्हें पर्वत राज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में वे राजा दक्ष की पुत्री सती थी और भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव जी का अपमान करते हुए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। जब सती वहां पहुंची, तो उन्होंने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया। अपने स्वाभिमान और पति के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। अगले जन्म में वे हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्मी और शैल पुत्री कहलाई। उन्होंने पुनः कठोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैल पुत्री का वाहन वृषभ है और उनके हाथ में त्रिशूल तथा कमल शोभायमान है। वे हमें दृढ़ विश्वास, आत्मसम्मान और अटूट भक्ति का संदेश देती है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक आध्यात्मिक गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुष्ठानों की। जागरण का मतलब है अज्ञान और नकारात्मक प्रवृत्तियों की नींद से जागना। व्रत का अर्थ है केवल भोजन से परहेज नहीं, बल्कि नकारात्मक सोच, गुस्सा और चुगली को रोकना। सात्विक आहार हमें शांति और ईश्वर स्मरण की ओर ले जाता है। दीपक जलाना हमें याद दिलाता है कि शरीर मिट्टी के दीपक जैसा है और आत्मा उसकी ज्योति है। और जब हम रास और गरबा जैसे नृत्य देखते हैं, तो वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में दूसरों के साथ सहनशीलता और सहयोग से सामंजस्य बनना ही असली नृत्य है। तो दोस्तों, सुनते हैं नवरात्रि का एक सुंदर गीत।

तो दोस्तों, आज का हमारा सफर यही समाप्त होता है। आप सुन रहे थे अंतरिक्ष दिव्यता का आह्वान, केवल रेडियो पुनेरी आवाज FM पर। मैं हूँ RJ संजय, आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब के लिए मुस्कुराइए, दिव्यता जगाइए और जुड़े रहिए रेडियो पुनेरी आवाज से। जय माता जी।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों आओ हम बीहड़ और कठिन सुदूर यात्रा पर चलें। आओ क्योंकि छिछला निरुद्देश्य और लक्ष्यहीन जीवन हमें स्वीकार नहीं। हम ऊंघते कलम घिसते हुए उत्पीड़न और लाचारी में नहीं जिएंगे। हम आकांक्षा आक्रोश आवेग और अभियान से जिएंगे। हम असली इंसान की तरह जिएंगे। असली इंसान की तरह जीने की ये चेतना सब में नहीं होती है, लेकिन जिन बिरले लोगों में ये होती है उनके जीवन का मूल मंत्र होता है कि जो भी करो उसे अपनी पूरी शक्ति से करो। और ऐसा ही जीवन अनमोल रत्न होता है, किसी देश का गौरव होता है। हमारे देश ने भी ऐसे गिनती के कुछ लोगों को भारत रत्न कहा। देश की चेतना में किसी सितारे की तरह चमकने वाला एक ऐसा ही महान व्यक्तित्व था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का, जिनका जन्म 1 जुलाई सन 1882 को पटना के बांकीपुर में हुआ था। आज भी उनके जन्म दिवस को हम मानवता के उत्सव के रूप में मनाते हैं, चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। वो एक चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी थे। विधान चंद्र रॉय के पिता प्रकाश चंद्र रॉय आबकारी इंस्पेक्टर थे। पिता की दानशीलता और धार्मिक वृत्ति के कारण इनका बचपन अभावों में बीता। विधान चंद्र रॉय बचपन में एक साधारण छात्र थे, लेकिन पढ़ाई में नियमित जरूर थे। आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। 1901 में पटना के बांकीपुर कॉलेज से गणित में बीए ऑनर्स की परीक्षा पास कर उन्होंने कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। डॉक्टर रॉय के जीवन पर जिन हस्तियों ने गहरा प्रभाव डाला उनमें थे महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास और उनके शिक्षक प्रधानाचार्य कर्नल ल्यूकस। ल्यूकस अंग्रेज थे, लेकिन युवक विधान चंद्र में उनकी विशेष रुचि थी। उनकी पारखी आंखों ने विधान चंद्र का चमकदार भविष्य देख लिया था। एक बार उन्होंने कहा, देखो विधान, मैं तुम्हें एक शिक्षा देता हूं, तुम किसी भी अंग्रेज के सामने चौथाई इंच भी मत झुकना, नहीं तो वो तुम्हें दोहरा झुका देगा। और ये सीख विधान चंद्र रॉय के साथ आजीवन रही। 1904 में बंग भंग के कारण विरोध का स्वर गूंज रहा था। एक दिन विधान चंद्र रॉय अपने एक साथी के साथ कलकत्ता से वर्धमान जा रहे थे। दोनों रेल के इंटर क्लास में थे। सामने वाली सीट पर एक एंग्लो इंडियन जोड़ा पूरी सीट को घेरे हुए बैठा था। उन्होंने बैठने के लिए जगह मांगी। इस पर भारतीयों को हेय कहकर वो अनाप शनाप बोलने लगा। फिर तो बात बढ़ गई। कर्नल ल्यूकस की चौथाई इंच भी न झुकने की शिक्षा उन्हें याद आ गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। तब उस एंग्लो इंडियन को होश आया। इस घटना को याद करते हुए डॉक्टर रॉय कहते थे कि उस समय ऐसा लगा था कि जैसे संपूर्ण अंग्रेज जाति से ही हम जीत गए हों। इस तरह उनके मन में अंग्रेजी सत्ता के प्रति विरोध का ये स्वर आगे और भी मुखर होता चला गया।

मेडिकल कॉलेज में दाखिले के दूसरे ही वर्ष उनके पिता नौकरी से रिटायर हो गए और पढ़ाई का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन इसी बीच कर्नल ल्यूकस ने उन्हें मेल नर्स का काम दे दिया, जिससे 8 रुपए मासिक मिलने लगे और उधर छात्रवृत्ति भी शुरू हो गई। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर सन 1908 में वो उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड चले गए। विद्रोही बंगाल का निवासी होने के कारण उन्हें वहां बहुत कठिनाई से प्रवेश मिला। मात्र 2 वर्ष में ही उन्होंने MRCP और FRCS परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली। सन 1911 में इंग्लैंड से लौटकर डॉक्टर रॉय ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और फिर कैम्बल मेडिकल स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। इस बीच दोस्तों से पैसे उधार लेकर मामूली स्तर पर उन्होंने डॉक्टरी भी शुरू की। प्रैक्टिस करते हुए जनता की दुर्दशा, गरीबी और अभाव देखकर उनका हृदय भीतर तक हिल गया और उनकी मदद करना ही उनके जीवन का लक्ष्य हो गया। सन 1926 में महिलाओं और बच्चों के लिए चितरंजन सेवा सदन खोला गया, जिसमें डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का बहुत योगदान रहा। सन 1922 से 1929 तक संपादक और बोर्ड के सदस्य के रूप में वे कलकत्ता मेडिकल जर्नल के लिए काम करते रहे। सन 1929 में वे अखिल भारतीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। डॉक्टर रॉय सन 1943 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रथम अशासकीय अध्यक्ष बने। इस तरह स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में उनका योगदान बहुमूल्य रहा। उन्होंने सन 1923 में बंगाल की काउंसिल की सदस्यता के लिए अपने मित्र सर आशुतोष मुखर्जी के अनुरोध पर सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के विरोध में चुनाव लड़ा और स्वराज्य पार्टी की सहायता से उन्हें पराजित किया। यहीं से उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। वो देशबंधु चितरंजन दास के प्रमुख सहायक बने और बहुत कम समय में ही उनका बंगाल की राजनीति में प्रमुख स्थान बन गया। गांधी जी से डॉक्टर रॉय की भेंट जून सन 1925 में हुई थी और उनकी ये मित्रता 23 वर्षों तक चली। चितरंजन दास के देहांत के बाद डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ही स्वराज्य पार्टी के अधिकृत वक्ता माने जाने लगे थे। खड़गपुर की रेलवे हड़ताल के समय सन 1927 में काउंसिल में काम रोको प्रस्ताव लाने का दायित्व डॉक्टर रॉय ने ही अपने हाथों में लिया था और उसके अगले ही वर्ष सन 1928 में पुलिस के बजट पर सबसे अधिक उग्र डॉक्टर साहब ही हुए थे, क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस ने कलकत्ता में अत्यंत क्रूरता का प्रदर्शन किया था। सन 1931 में कानून भंग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा।

विश्व के चिकित्सकों में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का प्रमुख स्थान था। प्रारंभ में पंडित मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के चिकित्सक के रूप में उन्हें अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त हुई। वो रोगी का चेहरा देखकर ही रोग का निदान बता देते और व्यवहार ऐसा कि तन के साथ रोगी के मन का उपचार भी स्वतः ही हो जाता। गांधी जी जब पूना के आगा खां महल में कैद थे, उन दिनों उन्होंने 21 दिन का अनशन आरंभ किया। उपवास का 13वां दिन था। गांधी जी की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। गांधी जी ने डॉक्टर रॉय से वादा लिया था कि आप ग्लूकोज नहीं देंगे, न मुंह से और न ही इंजेक्शन से। सरकारी डॉक्टर जनरल कैंडी इंजेक्शन से ग्लूकोज पहुंचाना चाहते थे। डॉक्टर रॉय के लिए ये बहुत कठिन समय था। उन्हें अपना वादा भी निभाना था और गांधी जी को बचाना भी था। डॉक्टर कैंडी को रोककर वो स्वयं गांधी जी के पास गए और गांधी जी से आग्रह किया कि केवल 4 औंस मीठा नींबू का रस ले लें, क्योंकि नींबू साइट्रेट समूह का पेय है। इससे अनशन पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और पेट में शक्ति भी आ जाएगी। इस तरह एक मध्यम मार्ग उन्होंने निकाला और गांधी जी मान गए। बंगाल के अकाल के समय भी उन्होंने जनता की जिस तरह से सेवा की वो अविस्मरणीय है। उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया। वे निष्काम कर्मयोगी थे। उन्होंने राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बहुमुखी सेवाएं दी। उनकी इन सेवाओं को देखकर सन 1944 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। सन 1948 में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल की बागडोर संभाली तो लगातार 14 वर्ष तक इस पद पर बने रहे। सन 1961 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से विभूषित किया गया। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के निर्माता माने जाते हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद वे रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा किया करते थे। उनके निवास स्थान पर रोजाना सुबह रोगियों की भीड़ लगी रहती थी और उनके व्यस्त जीवन में रोगियों की सेवा के लिए समय हमेशा होता था। वो अक्सर कहते, मैं उसी दिन रुकूंगा जब मृत्यु मेरे द्वार पर आएगी। और नियति ने उनके थमने का दिन उनके जन्म दिवस को ही चुना, 1 जुलाई सन 1962। जब लोग उनके जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एक अंतिम गहरी सांस ली और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। इस तरह दूसरों के जीवन को प्रकाश से भरने वाला वो सितारा दूर अनंत की गहराई में हमेशा के लिए लीन हो गया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने, इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर. खुश रहो, खुशियां बांटो. आज का दिन बेहद खास है, बेहद पावन है, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है 9 दिनों का महापर्व, शक्ति, भक्ति और उल्लास का पर्व, नवरात्रि. जी हाँ, आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज के दिन हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री की आराधना करेंगे. माँ शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री. इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है. ये वृषभ पर सवार है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है. दोस्तों, हम नवरात्रि को सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार के रूप में ही नहीं, बल्कि स्वयं में उन दिव्य गुणों को जागृत करने के रूप में भी देख सकते हैं जो इन देवियों में है. हर देवी एक खास शक्ति का प्रतीक है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं. माँ शैलपुत्री का पहला गुण है पवित्रता. शैल यानी पत्थर, जो शुद्ध और अटूट होता है. इसी तरह हमें भी अपने मन को हर तरह की नकारात्मकता से पवित्र और शुद्ध बनाना है. दूसरा गुण है अटूटता और स्थिरता. जिस तरह एक पर्वत हर मौसम में अड़िग खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी अपने विचारों और संकल्पों में स्थिर रहना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में विचलित न होना, यही शैलपुत्री की शक्ति है. और तीसरा गुण है निडरता. देवी शैलपुत्री हमें भय पर विजय प्राप्त करना सिखाती है. जब हमारे भीतर सच्चाई और पवित्रता की शक्ति होती है, तो हम निडरता से जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं. तो आइए आज हम माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि हमें ये तीनों गुण प्रदान करें. ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत होता है. इनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और शक्ति आती है. तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें. अब बात करते हैं पूजा की एक और महत्वपूर्ण विधि की, नैवेद्य. नैवेद्य यानी देवी को भोग लगाना. ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है. जब हम कोई वस्तु ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो वो प्रसाद बन जाती है और उसमें दैवीय शक्ति का संचार होता है. नवरात्रि के हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूप को विशेष नैवेद्य अर्पित किया जाता है, जिसका अपना एक खास महत्व होता है. आज नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि शुद्ध घी का भोग लगाने से व्यक्ति को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है. गाय का घी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है और ये हमारी सभी व्याधियों को दूर करके शरीर को निरोगी बनाता है. तो इस विशेष नैवेद्य को अर्पित करके हम माँ से अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं. नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये एक साधना है जो हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है. तो आइए इस यात्रा की शुरुआत पूरे मन और श्रद्धा के साथ करें. तो श्रोताओ, अपने दिन की शुरुआत माँ के आशीर्वाद से करें. प्रार्थना करें कि माँ शैलपुत्री हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए. कल हम नवरात्रि के दूसरे दिन तप और संयम की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी और उनकी महिमा के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ. रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय माता दी।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज हम स्वामी विवेकानंद के तेजस्वी विचारों की चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत थे जिनके रोम का हर कण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। राष्ट्र के दीनहीन लोगों की सेवा को विवेकानंद ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। उन्होंने युवाओं के हृदय को जितना झंकृत किया, उतना शायद किसी और ने किया हो। विवेकानंद जी ने करोड़ों देशवासियों को समृद्ध करना ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाया था। उन्होंने 4 जुलाई सन 1902 को देह का त्याग कर दिया। वे भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रही है। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद को केवल 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी भाई बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ, परम और पवित्र है। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, बड़भूंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इसी प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही केवल आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्यों के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। श्रोतो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजी शिवप्रिया। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुति हो, स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल वचन प्रसिद्ध हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। वे कहते थे, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, करना ये है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर। कोई एक विचार ले और इसे ही अपने जिंदगी का एकमात्र विचार बना ले। इसी विचार के बारे में सोचे, सपना देखे और इसी विचार पर जिए। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। यही समाज की रीत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हर जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, साधारण मनुष्य अपने विचार का 90% विचार व्यर्थ विचार करता है, इसीलिए वो निरंतर भूले करता है। एक प्रशिक्षित मन कभी कोई भूल नहीं करता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर आप अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को शूरवीर मानता हूँ जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय ही सबसे कठिन विजय होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है, उसकी मांगे जो जो पूरी कर की जाती है त्यों त्यों और गर्जना करता रहता है। वे कहते थे, ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। वे कहते हैं, आज वही कल है जिस कल की चिंता तुमने कल की थी। वे कहते हैं, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, मगर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। वे कहते थे, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता, जीवन के हर कदम हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। वे कहते हैं, प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वो जो प्रेम करता है वही जीता है, वो जो स्वार्थी है वह मर रहा है। इसीलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, संभव की भी सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाए। वे कहते हैं, भय और अधूरी इच्छा ही समस्त दुखों का मूल है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। वे कहते हैं, विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता, वो भयभीत होते हैं और यही असफलता का कारण है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुति हो, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। वे कहते हैं, जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे। हजारों असहाय नर नारी हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहे और हम मठ में रहे, ये असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। वे कहते हैं, किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भयता ही है जो क्षण मर परम आनंद लाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो अग्नि हमें गर्मी देती है वो हमें नष्ट भी कर सकती है, ये अग्नि का दोष नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हार के डर से कोशिश छोड़ देने से अच्छा है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। वे कहते हैं, धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। ये शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ये देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीज़ें अभी भी भारत में विद्यमान है। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है उसके बल पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है, महान है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा तब ये संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। वे कहते हैं, मनुष्य अपने अंदर से जितना करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा वो संसार को भी उसी तरह पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सकें। वे कहते हैं, जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: सेवा, लेखिका सुधापुरी, पात्र परिचय यश, सैंडी, पंकज, वेदांत, दृष्टि, आकाश, आदित्य, उन्नति।
2: आई स्पाइस, मैंने देख लिया है तुम सब पकड़े गए हो, बाहर आ जाओ।
3: ये वो तो देख लिया, उसने देख लिया,
4: भागो भागो भागो।
2: जी नहीं, ये चीटिंग है, मैंने पहले ही आई स्पाइस बोल दिया था।
5: जी नहीं, धप्पा लगने पर फिर से डैंड देना पड़ता है।
2: मैं तो नहीं देती, जो करना है कर लो। जब मैंने देख लिया था सबको, तो फिर किस बात की डैंड दूँ?
6: अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं डैंड दे देता हूँ।
3: अरे आज हम सब पूरे नहीं है ना?
6: हाँ वो देखो, वो आ रहे हैं उधर से, लेट लतीफ साहब।
3: कहाँ गए थे?
7: वो कुछ नहीं, मैं बस यूं ही।
8: मैं बताऊं?
7: कोई जरूरत नहीं है, चुप।
8: बताता हूँ बच्चों, ये साहब आज लड़कियों की तरह अपनी माँ का घर के काम में हाथ बटा रहे थे, मैंने खुद देखा है, जनाब बर्तन धो रहे थे।
7: वो मैं आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे थे और
8: बिल्कुल मुंडू लग रहे थे जनाब।
2: तो क्या घर में हाथ बटाना सिर्फ लड़कियों का काम है?
5: बिल्कुल नहीं, सबको मदद करनी चाहिए, लड़का हो या लड़की।
9: वाह क्या बात है, कितने सयाने हो सब। जब श्रवण कुमार की कहानी पढ़ते हो तो आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और दिल करता है कि उसके जैसे ही माता पिता की सेवा करे, और जब मौका मिलता है तो।
8: पर दीदी ये घर के काम करना कोई माँ की सेवा थोड़े ही है।
7: तो और क्या है, क्या तुम श्रवण कुमार की तरह माता पिता को वहीं में बैठा कर तीर्थ पे ले जाओगे?
8: नहीं वैसे नहीं, इसकी जरूरत भी तो नहीं है आजकल।
9: मैं भी वही कह रही हूँ, ये सब पौराणिक कहानियाँ आप लोगों के लिए केवल सांकेतिक हैं। इनका अर्थ समझकर इन्हें आज के संदर्भ में लेना चाहिए।
8: पर हम ऐसा ही तो सोचते हैं अपने माता पिता के लिए।
7: मतलब?
8: उनकी और सब इच्छाएं तो पूरी करने की कोशिश करेंगे ही।
9: वाह क्या बात है, बड़ी बड़ी बातें बनाने में तो होशियार हो सब।
3: वो कैसे?
9: इच्छाएं पूरी करोगे, पहले शुरुआत तो करो।
6: वो कैसे दीदी, कोई साफ साफ कह दे तो अच्छा रहता है।
9: तुम्हें नहीं लगता कभी तुम्हारी माँ का भी दिल करता होगा कि कोई उसे बैठकर भोजन परोसे या प्यार से उसका हालचाल पूछे और मदद करने के लिए पूछे, या तुम्हारे पिताजी जब थके हुए आए तो उनका बेटा या बेटी उन्हें बिना मांगे ही पानी का गिलास दे?
2: ये तो है,
5: क्यों नहीं, जरूर जाएंगे।
6: पर दीदी कभी मैं पूछूं तो भी मम्मी कहती है तुम रहने दो और काम बिगाड़ोगे,
3: या कहेंगी रहने दो काम बढ़ाओगे, या हाथ जला लोगे, या चोट लग जाएगी।
9: चलो एक काम करते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी माँ की किस किस तरह से मदद कर सकते हैं।
10: आपका मतलब है सेवा?
9: हाँ यह भी एक प्रकार की सेवा ही होगी।
7: खाने के बाद अपने बर्तन उठाकर सीक में रखना।
8: बस मैं तो साफ भी कर सकता हूँ।
2: मैं भी।
9: अच्छा अच्छा आगे भी तो बोलो, अब सबको लग रहा है मैं भी कर सकता हूँ।
3: अपने जूते सही जगह पर रखकर,
10: अपना बस्ता सही जगह पर रखकर,
7: कमरा छोड़ते समय सब लाइट पंखे बंद करके,
8: कभी नल बेकार में खुला ना छोड़कर,
2: शावर की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाकर, इससे पानी की बचत होगी।
5: पर इससे माँ की सेवा कैसे हुई?
6: माँ की नहीं तो भारत माता की तो है।
3: भारत माता की ही क्यों, पूरी धरती माता की।
5: हाँ ये तो है, याद है वो एआर रहमान का गीत, माँ तुझे सलाम।
11: अरे वो किसे याद नहीं रहेगा।
10: हम उसे भारत माँ के सम्मान में गाते हैं, अगर पूरी पृथ्वी को ध्यान में रख के गाएं तो सोचो सोचो।
7: अरे हाँ उसका मतलब तो और भी विशाल हो जाएगा।
8: हाँ जब कहते हैं ना, यहाँ वहाँ सारा जग देख लिया है, तो मतलब यहाँ वहाँ सारा ब्रह्मांड देख लिया है, इसका मतलब हो जाएगा और हमारी पृथ्वी जैसा कोई नहीं मायने निकलेगा।
2: वाह क्या कल्पना की है।
9: बातें तो बड़ी गहरी कर रहे हो, टॉपिक से हटो नहीं, काम बताओ, काम जो तुम आराम से कर सकते हो जिससे माँ की या पिताजी की घर पर सेवा हो।
5: माँ की सेवा, माँ की सेवा, पापा की सेवा। हाँ, अपनी चीजों का ध्यान रखकर, किताबें, पेंसिल, पेन सही स्थान पर रखकर, ताकि वे घूमे ना।
9: बिल्कुल ठीक, घूमना है क्या, किसी भी चीज का अपने स्थान पर ना होना, और क्या।
6: अपना स्कूल का काम पूरा रखकर, ताकि किसी टीचर को कोई शिकायत ना हो और मम्मी या पापा तक हमारी तारीफें ही पहुँचे।
3: अभी क्या, तुम्हारी शरारतों की शिकायतें पहुँचती है।
6: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस काम बता रहा हूँ।
10: घर में साफ सफाई रख कर, जैसे फल के छिलके इधर उधर ना फेंक कर, और
7: हाँ हाँ ठीक है, टॉफी के रेफर इधर उधर ना फेंक कर।
2: मैं तो डस्टिंग भी कर सकती हूँ।
3: मैं भी।
9: अरे फिर शुरू हो गए बकरी की तरह मैं करने।
2: अपना खाना पूरा खाकर वेस्ट ना करके।
5: मैं बाहर से धुले कपड़े उठाकर ला सकता हूँ उनके सूख जाने के बाद।
6: मैं तो कई छोटे छोटे कपड़े तह भी लगा सकता हूँ, बस मम्मी की साड़ी नहीं, उसे लपेटते लपेटते तो मैं गिर ही जाऊँ।
9: जरा सोचो, तुम्हारी मम्मी जब बाहर से कपड़े उठाने जाए तो क्या देखें कि किसी ने उन्हें उठाकर तह भी लगा दिया है। सोचो कैसा लगेगा उन्हें।
3: मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी।
10: मेरी भी,
7: मेरी भी,
8: मेरी भी।
9: फिर
2: दीदी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कितने ही तरीके हैं जिनसे हम अपनी मम्मी की मदद कर सकते हैं।
5: हम जितना अपना काम खुद करेंगे उतनी ही उनकी मदद होगी।
9: सिर्फ अपना काम ही नहीं, अपना खत्म करने के बाद घर के उन सदस्यों का भी जो या तो बहुत छोटे हैं या तो बहुत बड़े और दूसरों की मदद पर आश्रित हैं।
6: जैसे मेरा छोटा भाई, मैं उसे खाना खिला सकता हूँ, पढ़ाई में मदद कर सकता हूँ।
3: पर वो तो अभी बहुत छोटा है।
6: मेरा मतलब है जब वो स्कूल में आ जाए।
7: और मेरे दादा दादी, उनकी टांगे दबा सकता हूँ, उन्हें कभी चप्पल या चश्मा नहीं मिल रहा हूँ तो ढूंढ के दे सकता हूँ।
2: तो दीदी क्या सेवा यही कुछ है, ये तो बहुत सरल है।
9: सेवा के बहुत रूप हैं, शब्द बड़ा है पर यह सरल तरीकों से भी हो सकता है किसी से। जैसे कोई उदास बैठा हो तो प्यार से बोलकर उसका दिल बहला देना भी एक सेवा है।
5: ऐसे तो किसी का उत्साह बढ़ाना भी सेवा है।
9: हाँ, जिस किसी काम से किसी की मदद हो जाए या भला हो वही सेवा है।
6: कई लोगों को मैंने देखा है कि गर्मियों में जब बाहर निकलते हैं तो अपने साथ ठंडी पानी की बोतलें रख लेते हैं और रिक्शे वालों को या और सड़क पर काम करने वालों लोगों को देते हैं।
3: दीदी उस दिन मम्मी अखबार में से पढ़कर बता रहे थे कि कुछ लोगों ने ये भी सेवा शुरू कर दी है कि अगर किसी के घर में जैसे किसी की शादी के दौरान खाना बच गया हो तो वे उसे वहाँ से लाकर गरीब लोगों तक पहुँचा देते हैं।
7: हाँ, और कुछ संस्थाएं होटलों से बचा हुआ अच्छा खाना लेकर गरीबों में बांटते, वो भी ठीक है।
9: और क्या, होटलों में तो कितना ही खाना बच जाता होगा, पर ये सब तो बड़ी संस्थाओं के काम है। बात उसकी करो जो तुम अपने हाथों से कर सकते हो।
2: दीदी हम अपने घर के आसपास के पशु पक्षियों का भी तो ध्यान रख सकते हैं।
9: हाँ, अपने घर की छत पर बाजरे के दाने और पानी का तसला रख सकते हैं, या पास की गौशाला में आटा या जो भी उन्हें चाहिए दे सकते हैं। कुछ लोग तो सड़क के कुत्तों को भी पालतू बना लेते हैं और वे फिर उनके घरों की रखवाली भी करते हैं।
6: मेरी दादी कहती है सेवा से
11: मेवा मिलता है।

0: फैलाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद घ्या।
2: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंद वाटा।
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
4: थैंक यू सो मच।
3: इतना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है बीइंग डिवाइन, क्योंकि रियल लाइफ में है ना, कि प्रैक्टिकल लाइफ में कि कैसे इसके ये संस्कार हैं, उसको मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ या एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या इसको सोल में सचमुच देख रहा हूँ, या अपने आप को सोल देख रहा हूँ कि नहीं।
4: सोल देखना डजंट मीन ये आत्मा है, दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट सोल कॉन्शियसनेस। वो तो मैं ये भी कर सकती हूँ, ये आत्मा है, ये गलत काम ये वाला करती है, ये बहुत गुस्से वाली है, ये ऐसे करती है, दैट इज नॉट सोल कॉन्शियसनेस। ये दुखी आत्मा है, दैट इज नॉट सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस ये नहीं है कि सिर्फ ये याद रहे कि ये आत्मा है। सोल कॉन्शियसनेस मतलब ईगो नहीं, सोल कॉन्शियसनेस मतलब अक्वायर्ड संस्कार नहीं। तो सोल कॉन्शियस
3: अक्वायर्ड संस्कार नहीं मतलब मुझ में नहीं है, दूसरे में नहीं देखना है।
4: मुझ में नहीं तो फिर दूसरे में नहीं दिखेगा।
3: सोल कॉन्शियसनेस मतलब मैं दूसरे में सोल वाली प्योरिटी, ओरिजिनल क्वालिटीज ही देखूं।
4: yes.
3: और जो उसने एक्वायर किया है दोज विल कम एंड गो, वो तो ठीक है, उनको हटाओ।
4: अक्वायर्ड तो ईगो के साथ हुई है ना,
3: आपकी भी हुई, मेरी भी हुई।
4: हाँ,
3: दोनों की,
4: हम सबकी है, अक्वायर्ड है, सबके पास अक्वायर्ड संस्कार है, लेकिन हर एक आत्मा ओरिजिनली ब्यूटिफुल है। सोल कॉन्शियसनेस मतलब आई द बींग थ्रू द ओरिजिनल संस्कार see only the originality of the other being, at that time I am soul conscious. मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, लेकिन ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, that is not soul conscious.
3: लेकिन आपने एक लाइन कही थी कि पहले मैं अपने आप को soul देखूं और soul समझूं और soul जानूं।
4: ये सब कुछ जो हम अभी तक discuss कर रहे थे, this is all a part of shifting to that soul consciousness. जैसे हमने पिछली बार देखा, कमजोरी नहीं देखी, विशेषता देखी, विशेषता देखी तो ओरिजिनलिटी दिखी, दिस इज सोल कॉन्शियसनेस। कहा ये आत्मा है और फिर कमजोरी देखी, दिस इज ईगो, क्योंकि हम ईगो के थ्रू देख रहे हैं, अक्वायर्ड संस्कार के फिल्टर के थ्रू अक्वायर्ड ही दिखेगा, ओरिजिनल संस्कार के फिल्टर के थ्रू ओरिजिनल ही दिखेगा। जैसे संत महात्माओं के पास जाते हैं, हम अनुभव करते हैं, हम दादियों के पास जाते हैं, वो सोल कॉन्शियस स्थिति में है, उनको सामने वाले के अंदर क्या दिखता है, उनको नहीं सामने वाला दिखता कि ये आत्मा कितनी मैली है, उनको ये दिखता है कितने ब्यूटीफुल बीइंग है। तो जो उस कॉन्शियसनेस में उसको वो ही दिखेगा, और जो अहंकार के कॉन्शियसनेस में उसको वो ही दिखेगा। तो हमें दूसरे को क्या देखना है उसकी मेहनत नहीं करनी है, हमें अपने प्योरिटी को क्या करते जाना है, बढ़ाना है, लेकिन दूसरे की कमजोरी को न देखना ये अपनी प्योरिटी को बढ़ाने का तरीका है।
3: ओके, और देखने से अपनी प्योरिटी मैली होती है,
4: क्योंकि हम इम्प्योरिटी दूसरे की अपने चित्त पर रख लेते हैं ना, तो दाग अपने ही बहुत सारे हैं। पहले जो सोचो, मेरी ड्रेस पे पहले अपने ही कितने दाग है, इतने दाग है, मैंने इतने जन्मों के कैरी किए हैं, फिर मैंने आपके भी दाग उठा के यहाँ रख लिए, इनके अंदर ये है, इनके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये, सो मेरी क्या हालत हो जाएगी फिर? Then I will become a sum total of everybody's weaknesses that I see. और यही अगर मैंने ऑपोजिट किया,
3: I love that line. Then I will become a sum total of everybody's weaknesses.
4: I will, ना?
3: How sad.
4: Yeah, but now the opposite is also true. कि मुझ आत्मा पर इतने सारे दाग हैं, लेकिन मैंने इसकी भी विशेषता देखी, इसकी भी विशेषता देखी, इसकी भी देखी, इसकी भी देखी, तो विशेषताएं चित्त पर रखते गए तो दाग अपने आप साफ होने लगेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ इट। ये प्रैक्टिस को हमें करते रहना, ये रोज का होमवर्क है। ये रोज की प्रैक्टिस है और उसको एक स्टेप और ऊपर लेकर जाएं, हर आत्मा को उसकी ओरिजिनलिटी में रोज देखें और एक थॉट उसके लिए क्रिएट करें। दिख नहीं रही लेकिन फिर भी थॉट क्रिएट करना है। थॉट क्रिएट करने से वो एनर्जी उन तक जाती है, वो एनर्जी उन तक जाने से उनकी वो प्योरिटी इमर्ज होती है। कैसे, जब हम ऐसी प्योर आत्माओं के सामने जाते हैं तो हमें भी अच्छा फील होता है क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हमारी प्योरिटी को इमर्ज करती है। तो जब हम किसी के लिए ये थॉट क्रिएट करेंगे कि कितनी प्योर आत्मा है, हमारी वाइब्रेशन उनके अंदर वो प्योरिटी को इमर्ज करेगी, तो आंट वी गोइंग टू बी एबल टू हेल्प एवरीबडी, अपने भी दाग साफ करने के लिए कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस कितनी अच्छी हो जाएगी।
3: सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल चीजों में बहुत, जैसे अगर मैं बीमार हूं या मुझे यहाँ फोड़ा है, दवाई है, ये करने में मुझे दिखता भी है, होता भी है। ये दिखने में इतना समय लगा, कितने साल लग गए कि ये एक मेरे अंदर ये वाली का संस्कार भी है, सटल चीजें ये हैं, उनको भी साफ करना होता है। ये बस बीमारी है, उसको बीमारी नहीं समझा ना।
4: जैसे करने लग गए साफ बहुत जल्दी होगा, ये चोटें ठीक होने में फिर भी ज्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी ठीक हो सकती है
3: क्योंकि आपके ओरिजिनल आप वैसे हैं।
4: आपने उस दिन क्या शेयर किया था कि कोई आपके घर वो मशीन लेकर आया,
3: हाँ।
4: आपने कहा एक मिनट रुकिए, सी सारा खेल एक एक मिनट का था सिर्फ, तो आपने कहा एक मिनट रुकिए, एंड आपने परमात्मा से कनेक्ट कर बहुत ब्यूटीफुल थॉट क्रिएट की। उसने कहा आपकी एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, मशीन दिखा रही है। फिर आपने कहा अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट के अंदर एक इम्प्योर थॉट क्रिएट की, वो मशीन ने दिखा दिया। चोट इतनी जल्दी नहीं ठीक हो सकते कभी,
3: तो फास्टेस्ट है ना थॉट,
4: इट्स द अदर वे राउंड। आपने कहा ये जल्दी दिखता है, जल्दी ठीक होता है, एक्चुअली तो ये दिखता है और ये ठीक होता है। सिर्फ क्या था, हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं था क्योंकि हम चल रहे थे, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे थे। अब जैसे ही देखा, दिखा, चेक किया, चेंज किया, रिजल्ट मिला, फिर दिखा, चेक किया, चेंज किया, रिजल्ट मिला। यहाँ रिजल्ट जल्दी मिलेगा, हमारे पास इतनी पावर है कि एक सेकंड में किसी की कमजोरी देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी पावर है कि लेस देन अ सेकंड में शिफ्ट करके उसकी विशेषता देख सकते हैं। पावर है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। हमारे पास इतनी पावर है कि किसी की बात को पकड़ के चोट लंबी खींच सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी पावर है कि लेस देन अ सेकंड में हम कह सकते हैं पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप, फिनिश करो ना, चोट हील हो जाएगी। हमारे पास इतनी पावर है। तो आत्मा की शक्ति इन सारी शक्तियों से कितनी ऊपर है।
3: आपकी एक एक एपिसोड में से मैंने किसी को लाइन बोली थी, एक लेडी को, हमारे घर में जो सत्संग होता है उसमें, तो उसने आके बोला मुझे कि आपकी एक लाइन से मेरी लाइफ बदल गई। मैंने बोला क्या, तो बोला वो दीदी ने बोला था, कौन सी लाइन, तो बोली कि वेन एवर यू मीट अ पर्सन, जब भी आप जिस किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि पहली बार मिल रही।
4: राइट, अब इस लाइन को भी लेते हैं। हमने अपने चित्त पर बहुत सारी चीजें पकड़ के रखी हुई हैं, राइट? पिछली बार आपसे मिली, कुछ अनुभव हुआ, चित्त पर पकड़ा, फिर नेक्स्ट टाइम मिली, फिर कुछ अनुभव हुआ, चित्त पर पकड़ा। अगर तो ये अनुभव ब्यूटीफुल है तो अच्छी बात है, रिकॉर्ड करते जाओ। लेकिन अगर कभी कोई अनुभव प्लेजेंट नहीं रहा और चित्त पर पकड़ा, तो नेक्स्ट टाइम जब हम उस

0: पास्ट बिकम्स द प्रेजेंट एंड देन इट बिकम्स द फ्यूचर, अगर हम वो ही दही से सैंपल ले लेके फिर रोज दही जमा रहे हैं। यही तो यहां होने वाला है। पिछली बार जो हुआ उस रिकॉर्डिंग को यहां रखा, उसके थ्रू अगली बार इंटरैक्ट किया, अगली बार का अनुभव सिमिलर हो जाएगा, फिर उसके बाद अगली बार, फिर अगली बार, हर रोज खट्टी दही। अब एवरी टाइम यू मीट अ पर्सन, मीट एज इफ यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसको कैसे करना है? ऑब्वियसली आई एम नॉट मीटिंग यू टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, आई नो यू फॉर सो मेनी इयर्स, सो व्हाट इज द मीनिंग कि आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम? चित पर से उस बात को साफ करके आना है, उस पुरानी रिकॉर्डिंग के थ्रू फिर से उस व्यक्ति से नहीं मिलना है, क्योंकि रिश्ता और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब एक लाइन भी, शी इज राइट दैट सिस्टर, एक लाइन भी जीवन को बदल सकती है, क्योंकि कोई एक रिश्ता जिसमें हम गांठे बनाते जा रहे थे, इस बार हमने कहा पिछली बार की गांठ लेकर इस बार नहीं मिलना, इस बार स्मूथ हो गई एनर्जी, पिछला सारा कट हो गया, इजी है।
1: हाँ, she found it easy.
0: No, it is very easy. चित पर पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं रखनी ना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगली बार उस आत्मा से मिले, उस आत्मा से मिलने से पहले, दिस इज एन एक्सरसाइज दैट वी कैन ऑल डू। अगर हमारा किसी के साथ कुछ उलझा हुआ है, सुबह उठकर उस आत्मा को अपने सामने लेकर आए, इमर्ज करें ऐसा, ठीक है? आत्मा को देखें, शरीर रिश्ते नहीं, आत्मा को देखें। यहां मैं आत्मा, यहां ये आत्मा, पहले तो वो थॉट, फिर से ये आत्मा है, प्योर आत्मा है। अब उस आत्मा को एक मैसेज दे, पिछली बार जो आपके और मेरे बीच हुआ इट्स ओवर, इट वॉज अ पास्ट, इट्स फिनिश्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उस आत्मा को दे, बोलना नहीं है, सिर्फ एक थॉट से उस आत्मा को सामने लेकर आए, उस थॉट से उसको ये थॉट भेजे, पिछली बार जो आपके और मेरे बीच हुआ, इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड, टुडे व्हेन वी मीट इट विल बी अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
1: बट दैट इज आई वांट टू, कई बार ऐसा मन करता है कि इससे तो कभी बात ही नहीं करें, इसको तो मिले और वापस उसको दिखाएं कि आई एम स्टिल हर्ट। वो एक लाइन है ना, लोग बोलते आई हैव फॉरगिवन दैट पर्सन लेकिन आई हैव नॉट फॉरगॉटन इट।
0: अगर हम इस बार उनसे मिले और हम उनको दिखाएं कि आई एम हर्ट, नुकसान किसका हो रहा है?
1: नहीं, उनको याद दिलाएं कि तुमने जो पिछली बार किया था गलत किया था। फिर मन ऐसा भी करता है कि आई विल नॉट अलाउ यू टू डू इट एवरी टाइम, वो तो मेरी शराफत थी, मैं चुप था।
0: उन्होंने
1: क्या,
0: तो हर्ट,
1: क्या, क्या मन बोलते,
0: उन्होंने तो हर्ट किया ही नहीं था ना,
1: उन्होंने
0: वैसा व्यवहार क्रिएट किया,
1: मतलब जो भी किया,
0: एक्स वाई जेड नहीं, शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने वैसा व्यवहार क्रिएट किया था।
1: हाँ, तो व्यवहार किया,
0: हर्ट किसने क्रिएट किया?
1: हर्ट तो कोई भी हो जाएगा,
0: हर्ट
1: इस तरह आपके घर में आके कोई कुछ हंगामा करे,
0: दिस ऑल्सो प्रोग्रामिंग वी कैन डू। आत्मा के साथ मेडिटेशन में प्रोग्रामिंग करना ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। पिछली बार ये भी मैसेज देते हैं, चलिए पिछली बार आपने ऐसा व्यवहार क्रिएट किया, मैं हर्ट हुआ, इस बार पहली बात तो वी शुड नॉट थिंक कि इस बार फिर ऐसा कुछ होने वाला है, बट स्टिल इफ यू फील कि कोई ऐसा संस्कार है जो रिपीट हो रहा है उनका, इस बार आपके उस संस्कार के सामने मैं आत्मा स्टेबल रहूंगी, ये प्रोग्रामिंग करके जाइए मिलने के लिए। हम क्या प्रोग्रामिंग करके जाते हैं?
1: इस बार मैं नहीं चुप रहूंगा।
0: सी,
1: मैंने सोचा वो ही बोलने वाले हैं कि इस बार आप बोलेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा,
0: इस बार आपके संस्कार के सामने मैं आत्मा बिल्कुल स्टेबल रहूंगी।
1: मतलब इसका मतलब भी, इस बार मैं आपके संस्कार के सामने झुकूंगा नहीं।
0: यस, मैं प्रभावित नहीं हो जाऊंगा,
1: झुकूंगा नहीं, मतलब
0: आई विल नॉट गेट ओवर पावर्ड। यस,
1: मैं अपने आप में रहूंगा, आई विल बी माई सेल्फ,
0: दिस इज प्रोग्राम।
1: मतलब वो उसका जवाब देना झुकने के बराबर हो गया ना, बात करते करते कितने अच्छी,
0: हारने के बराबर हो गया ना।
1: देखो थॉट कैसे,
0: कोई हमारे ऊपर ओवर पावर हो गया ना, उन्होंने कुछ कहा हम डिस्टर्ब हो गए तो ओवर पावर हो गया ना, उन्होंने कहा और हम स्टेबल रहे।
1: दे हैव द पावर टू डिस्टर्ब मी,
0: they actually don't have the power, I lose my power, nobody has the power to disturb me।

0: आई हैव लेस पावर, इट्स माय वीकनेस टू
1: बी यहाँ बैठकर, आप यहाँ बैठकर कुछ भी बोल सकते हैं मुझे, बोलते जाइए, शोर मताते जाइए, डांटते जाइए, अब्यूज करिए, बोलते जाइए, योर पावर इज स्टिल देयर, स्टिल देयर, योर पावर डजंट कम हियर, आपकी पावर वहां है, वहां, आई हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस, सो यू डोंट हैव द पावर टू डिस्टर्ब मी, यू हैव द पावर टू शाउट एंड से व्हाट यू वांट, आपकी उतनी, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, सामने वाले के पास कितनी पावर है, मेरे पास कितनी पावर है, सामने वाले के पास पावर है कि वो गलत बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, वो सब उनके पास पावर है
0: और उनकी चॉइस भी है.
1: हाँ, वो दे आर चूजिंग दैट, वो उनकी पावर है. लेकिन यहाँ मैं आत्मा अगर अपनी सीट पर बैठी हूं कि मैं प्योर आत्मा हूं, ये आत्मा अपने अक्वायर्ड संस्कार से अभी चल रही है, मैं क्या होता है, डिस्टर्ब कब हो जाऊंगी, इसने मुझे ऐसा कहा, मैं ऐसा कहा, शिफ्ट, मैं अपनी सीट से गिर गई. ये मॉर्निंग में मेडिटेशन में करना है रोज, और स्पेशली उन आत्माओं को सामने लेकर आना जिनके साथ कोई उलझन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो सामने लेकर आए उनको, फिर वो थॉट क्रिएट करें, वो भेजे एनर्जी. आज व्हेन वी से लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, लोग कहते हैं पास्ट को याद नहीं करेंगे तो लर्न कैसे करेंगे, तो पास्ट को तो याद करना चाहिए ना. लर्न क्या करना है पास्ट से, आपने कल मुझे जोर से डांटा, मैं उदास हो गई, ये पास्ट है, ठीक है, ये पास्ट है. अब हम पास्ट को कैसे याद करते हैं, उन्होंने मुझे उस दिन ऐसा कहा, फिर ऐसा कहा, फिर ऐसा कहा, ऐसे कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था. कुछ लोग डायरी लिखते हैं रात को, वो भी ये लिख देते हैं, आज ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मुझे ये कहा, ये सब लिखने से क्या होगा, वही ग्रूव और पक्का हो जाएगा. पहले जब वो हुआ तब रिकॉर्डिंग हुई, फिर रात को लिखा तब रिकॉर्डिंग हुई, किसी और को सुनाया तब रिकॉर्डिंग, यू नो हाउ द ग्रूव बिकम्स स्ट्रॉन्गर.
0: फेसबुक और ट्विटर पे भी यही लिखते हैं लोग.
1: दिस इज हाउ रिकॉर्डिंग्स बिकम स्ट्रॉन्गर हियर. ये ग्रूव क्यों स्ट्रॉन्ग होता जाता है, चेंज. उन्होंने उस दिन मुझे डांटा, मैं उदास हो गई. लर्निंग फ्रॉम द पास्ट क्या है, कि अगर मुझे कोई डांटे, मेरे पास चॉइस है ना, कि मैं क्षमा करूं, स्टेबल रहूं, उस डांट के पीछे के भाव को समझूं, उससे अपने आप को कुछ करेक्ट करना है तो करूं, और कुछ भी नहीं करना तो जस्ट स्टेबल रहूं और वहां अच्छी एनर्जी दूं. ये सब चॉइसेस मेरे पास है. दिस इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट. अब मैं डायरी अगर रात को लिखूं तो उसमें मैं क्या लिखूं, आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं उदास हो गई. ये मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर नहीं है. मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर थी पावर, स्टेबिलिटी, पीस. अब मैं आत्मा इस स्थिति में रहूंगी क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूं. अब देखो जैसे ये लिखने की वोकैबुलरी चेंज होती गई, हमारा चिंतन बदल गया. चिंतन बदल गया ना, इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम वो कितने बुरे हैं एंड शिफ्टेड टू मैं कितनी पावरफुल हूं. इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम उनको कैसे बात करनी चाहिए थी, शिफ्टेड टू मुझे कैसे रहना है. इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम कंट्रोलिंग देम टू टेकिंग चार्ज ऑफ माई सेल्फ. शिफ्ट शिफ्ट हो गया. अब डायरी लिखें तो भी ऐसे लिखें, किसी से बात करें तो भी ऐसे बात करें कि कल ना मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसे हो गई थी, मुझे ऐसा होना चाहिए, आई शुड बी लाइक दिस, नेक्स्ट टाइम आई विल बी लाइक दिस. फोकस ऑन वेयर देर इज कंट्रोल, वाई टॉक अबाउट वेयर देर इज नो कंट्रोल. अब ये लग रहा छोटी बात है, डायरी लिखना छोटी बात, किसी से शेयर करना छोटी बात, ये एक एक बात सीडी की रिकॉर्डिंग को चेंज कर रहे हैं, ग्रूव को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाकर एक डिफरेंट गाना बना रही है. अब जब ये रिकॉर्डिंग हो गई, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक आपसे मिली या किसी और से मिली, किसी और ने फिर जोर से डांट दिया, डोंट यू थिंक चांसेस ऑफ ए न्यू सॉन्ग प्लेइंग आर वेरी हाई.
0: ये डांट पे बात याद आती है, फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर्स बहुत बिजी हुआ करते, मतलब पूरा काम उनके सर पे टाइम पे कोई नहीं आया, खाना नहीं आया, आर्टिस्ट नहीं आया, सारा कुछ उन पे। तो मैंने किसी एक प्रोडक्शन मैनेजर को पता नहीं किसी बात पे डांट दिया था। तो उसको मैं फिर वही स्टूडियो में मिला महीने डेढ़ महीने बाद। मैंने बोला आप मुझसे नाराज हैं? तो बोला मेरे पास टाइम ही नहीं है सर।
1: ये हमें लाइन अपने आप के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्या हमारे पास टाइम है सारा दिन ऐसी चीजें सोचने का? सारा दिन तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है।
0: हाँ।
1: हम इतने बिजी हैं। क्यों बिजी हैं? क्योंकि हम इतना ज्यादा सोच रहे हैं ये सब।
0: उसके पास नाराज होने के लिए टाइम नहीं, हमारे पास वेस्ट थॉट्स के लिए कितना टाइम है?
1: कितना टाइम है वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स। अगर हम किसी दिन चेक करें ना, ऑलमोस्ट हमारी फैक्ट्री के अंदर मेजोरिटी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, इट्स गोइंग अंडर वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट। इट इज गोइंग अंडर दैट कैटेगरी। जस्ट बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है ऐसे ही।
0: क्या क्वालिटी होगी वहाँ?
1: तो उसी का रिजल्ट तो हमारी सेहत और रिश्तों पर आ रहा है। इट इज गेटिंग वेस्टेड। आज ये एक फाइनल करते हैं कि किसी भी आत्मा के साथ अगर कुछ हुआ है, छोटी बात या बड़ी बात, छोटा आर्ग्यूमेंट या बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, या सामने वाले ने कुछ हमें ऐसा कहा है या किया है जो रिकॉर्ड हो चुका है, अब हमें जब उनसे नेक्स्ट फिर मिलना है, हमें उस हर्ट को रिजॉल्व करके और अपने आप को नेक्स्ट सिचुएशन के लिए पावरफुल बनाकर फिर मिलना है। दे मे नॉट हैव चेंज्ड, सिचुएशन मे नॉट हैव चेंज्ड, बट आई कैन गो चेंज्ड इनटू द सेम सिचुएशन टू मीट द सेम पर्सन अगेन। पॉसिबल?
0: नॉट नेसेसरी, बट
1: व्हाई नॉट?
0: व्हाई शुड आई गो एंड डू दिस?
1: Why should you go and do this?
0: हाँ, क्या जरूरत है? Supposing मैं,
1: suppose हम इस टेरेन पे आए चलने के लिए।
0: हाँ।
1: पिछली बार आए थे हम चप्पल पहनकर आ गए, तो ये कंफर्टेबल नहीं थी वॉक हमारे लिए। पैर भी दर्द हुआ, खरोच भी आई, चोट भी लगी। अब हमें फिर आना है उस वॉक पे। टेरेन नहीं बदलेगी, आसपास के ऑब्स्टिकल नहीं बदलेंगे, लेकिन इस बार हम चप्पल की जगह शूज पहनकर आ जाएंगे।
0: मैं टेरेन बदल दूंगा।
1: जो हमारे वो रिश्ते हैं जिनके साथ हमें ऑन एन एवरेज रेगुलरली इंटरेक्ट करना है, किसी के साथ रोज करना है, किसी के साथ उस रिश्ते के कारण वंस इन अ वाइल करना ही
0: है। आप उसकी गारंटी दे सकते हैं दोबारा वो नहीं करेंगे?
1: नहीं गारंटी दे सकते, लेकिन ये गारंटी ले सकते हैं कि दोबारा वो करेंगे तो हम नहीं हिलेंगे। ये गारंटी ले सकते
0: जाने देंगे। जब कांटे हम बार बार जाएंगे सुबह और हम नहीं रोएंगे।
1: कांटे हमारे रास्ते का हिस्सा है, देयर इज नो अदर वे। वो रिश्ता मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आई कैन,
0: रास्ते बहुत हैं।
1: रिश्ते से विड्रॉ नहीं कर सकते ना। अगर कोई आत्मा,
0: नॉट नेसेसरी टू हैव अ रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी। बाप बेटे साथ नहीं रहते तो भी दुनिया जीती है, जीते हैं लोग।
1: अच्छा, मतलब रिश्तों से दूर होते जाएंगे जो इम्पोर्टेंट।
0: इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द नेसेसिटी?
1: जितना अपने रिश्तों से दूर होते जाएंगे, आत्मा की पावर को घटाते जाएंगे।
0: क्यों?
1: आत्मा के पास पावर थी अडेप्ट होके, एडजस्ट होके पावरफुल होने की। हमने कहा नहीं, इनसे भी नहीं।
0: आत्मा के पास सिलेक्शन की भी है पावर।
1: कोई बहुत डिफिकल्ट जिसके साथ हमारे वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स मैच नहीं करते। लेट अस रिमेम्बर दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स मैच करना या सूक्ष्म संस्कारों के साथ एडजस्ट करना, दोनों बातों में बहुत फर्क है। सपोज मैं एक ऑफिस में ऐसी जगह पर काम कर रही हूं जहां करप्शन है, जहां करप्शन है, और मुझे अगर उनके साथ काम करना है तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आई शुड बी लाइक देम। तो उस जगह पर मेरे प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, देन आई चूज कि नहीं दूसरी जगह करना है। लेकिन सपोज मैं एक ऑफिस में काम कर रही हूं जिसके अंदर थोड़ा मैनिपुलेट करने का संस्कार है, जिसके अंदर उल्टा जवाब देने का संस्कार है, जिसके अंदर गुस्सा करने का, डांटने, इनके साथ हम एडजस्ट करके चल सकते हैं। कहां विड्रॉ करना है, कहां नहीं करना है। अगर विड्रॉ करने का संस्कार बनता गया, धीरे धीरे हमारी अडेप्टेबिलिटी कम होती जाएगी। आज अगर हम देखें और हम 50 साल पहले देखें, 50 साल पहले हम बहुत सारे लोग एक घर में इकट्ठे रहते थे। धीरे धीरे हमने कहा नहीं, हमारे से इतना एडजस्ट नहीं होता। फिर हम बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली की बजाय एक छोटी जॉइंट फैमिली में रहने लगे। फिर हमने कहा हमारे से इतना एडजस्ट नहीं होता। फिर हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। अब हम कहते हमारे से इतना एडजस्ट नहीं होता, हम सिंगल रहने लग गए, ये इससे क्या हुआ? मुझ आत्मा की शक्ति घटती गई. इफ यू डोंट यूज इट
0: यू लूज इट.
1: जैसे हम बच्चे देखते हैं कुछ समय के लिए दूर जाते हैं रहने के लिए, पहले वो 8-10 लोगों के साथ एक परिवार में रहते हैं, फिर वो कहीं दूर जाते हैं, अकेले रहते हैं वहां 1-2 साल अगर अकेले रह लेते हैं, वापस आके उनको इतने सारे लोगों के साथ रहना मुश्किल लगता है, उसके साथ भी एडजस्ट करना है. पहले उनके साथ रहते थे लेकिन 2 साल पढ़ने के लिए कहीं अकेले रह लिया, तो वो आत्मा का जो संस्कार था वो क्या हो गया?
0: अकेले रहने वाला.
1: अब अकेले रहने वाला जब संस्कार हो गया, ना अपने संस्कारों को एक्सप्रेस कर पाए तो ना अनुभव कर सकेंगे उसको, ना सोल पावर को बढ़ा सकेंगे. टुडे पीपल प्रिफर टू बी विद टेक्नोलॉजी रादर देन विद पीपल, है ना? मतलब फेसबुक पे स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं,
0: रिश्तेदारी में भी फेसबुक पे बात कर सकते हैं, फोन उठा के हैप्पी बर्थडे बोलना मुश्किल है.
1: सो इससे आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? घटती जाएगी. हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या था? आत्मा की शक्ति को बढ़ाना एंड सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना. अब अगर मैंने कहा मैं आपसे भी नहीं बात करती, इससे भी नहीं करती, इससे भी नहीं करती, इससे भी नहीं करती, किसी से नहीं करती, तो मैं अकेली बहुत खुश हूँ. मैं खुश नहीं हूँ. मैं ना अपने संस्कारों में कर्म में ला रही हूँ क्योंकि मैं किसी से भी नहीं बात कर रही. तो जब मेरे संस्कार कर्म में ही नहीं आएंगे, मुझे अपने संस्कार दिखेंगे कैसे, ट्रांसफॉर्म होंगे कैसे, सोल पावर बढ़ेगी कैसे? वी विल नॉट एक्सपीरियंस आर प्योरिटी अनलेस वी ब्रिंग इट इनटू एक्शन. शांति कैसे अनुभव होगी? शांति के कर्म करने से. अकेले रहे, कोई परिस्थिति नहीं आई, कोई रिश्ता ही नहीं आया सामने, एक्सप्रेस ही नहीं किया, एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? ये आत्माएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुश नहीं, लोनली और उदास हो जाती हैं. दोनों बातों में बहुत फर्क है. लोनली और उदास हो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो प्यार को, शांति को, खुशी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, रिश्ते नहीं है उनके पास. एक आत्मा को सामने एक आत्मा चाहिए अपनी क्वालिटी को कर्म में लाने के लिए. तो ये संस्कार हेल्दी नहीं है विड्रॉ विड्रॉ विड्रॉ करने का. Let's empower ourselves to be with all of them.
0: Thank you so much. Let's try to be with everybody.
1: Thank you so much.
0: And empower ourselves.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti. Thank you so much.
2: When we focus on original sanskars in others, we empower them to experience their own purity. This is a blessing for them. When we do this with everyone around us, the collective energy of our home and workplace becomes pure and powerful. Every time we meet someone, we should meet them with a clean mind. Any unpleasant experience of the past should be resolved and deleted internally, else that bitterness becomes the flavor of the next meeting. Past becomes a part of the present, and it might influence the future also. Learning from the past means reflecting on the way we reacted last time and preparing ourselves for a stable response next time. Remind ourselves, I am a powerful soul and no situation or person can disturb me. By reflecting in a positive manner, we are associating positive thoughts with the incident instead of the pain we created last time. The more we are selective about the people we want to be with, we reduce our power of adjustment and adaptability. Let us create a sanskar to adjust, not to withdraw. Let us withdraw only if we need to compromise on our principles, not because of difference in sanskars.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 5 5 9 6 6 0.

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपाली मोकाशे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप हर शनिवार को सुनते हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा अपना ज्ञान भी जो है बढ़ता है और साथ ही साथ हम अपने विद्यार्थी मित्रों को मोटिवेट करते हैं कि भाई वो अपने करियर को सुंदर बनाए, सुगम बनाए और अपने जीवन को सफल बनाए। तो इसीलिए हमारा विषय जो है अलग अलग रहता है और हर हफ्ते हम अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और बातचीत कराते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है कि आज हमारे साथ डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और आप बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और साथ ही साथ आप एक क्या कह सकते हैं, जीनियस आपका जो है मन है, दिमाग है, दिल है, क्योंकि आपने 218 के करीब किताबें लिखी हैं और ये लिखने का क्रम अभी भी जारी है आपका। इसके साथ में आप एक साइकेट्रिक है, मनोविशेषज्ञ है, मन के डॉक्टर है। तो निश्चित तौर पे मन हमारा जो है एक अदृश्य शक्ति है, लेकिन बिना मन के हम हो नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहले अगर करियर की बात करना चाहें तो हम अपने मन की कुछ चीज़ों को समझ लें। पूरा मन समझने से हम तो फिर पार हो जाएंगे, लेकिन मन का कुछ जो सिंपल टेक्निक है, समझ है, उसको अगर हम ठीक से समझ लें तो हमारी जो आज की समस्या, जो पेरेंटिंग की जो मुश्किलें आ रही हैं, जहाँ पर माँ बाप और बच्चों के बीच में जो दूरियाँ बन गई हैं, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज एक टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में एक बड़ी समस्या ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चे टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े, पढ़ाई में भी आगे बढ़े, और माता पिता भी चाहते हैं कि वो ऐसे ही करें। लेकिन जब देखते हैं कि पढ़ाई के दौरान हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं या पैदा होते ही मोबाइल दे देते, तो वो हम चाहते हैं कि वो बच्चे ना देखे बाद में, तो वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आता क्योंकि जो हम कर रहे हैं, हमें देखकर वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी के अधीन ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी ज़रूर सीखें। तो यहाँ एक बहुत बड़ी कसमकस चीज़ लगता है। तो आज हम लोग पेरेंटिंग इस विषय को लेकर बात करने वाले हैं। डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। आशा करूँगा हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम को, उन सभी को बड़ा अच्छा लगेगा और आपके द्वारा बताए गए बातों को वो बहुत ही अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी आपका।
1: नमस्कार दोस्तों, सबसे प्रथम तो रमेश भाई आपके मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत ही सुंदर विषय आपने चुना हुआ है पेरेंटिंग। इस विषय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर लोग नहीं देते हैं क्योंकि उनको इस विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो पेरेंटिंग यह सब्जेक्ट आखिर में है क्या? पेरेंटिंग यह सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो अदृश्य विषय है, दिखने वाला विषय नहीं है। और जो चीज़ें अदृश्य होती है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा हर एक फैमिली को लगता है कि जब भाई शादी हो गई है, बच्चे आ गए हैं, तो अपने आप वो बड़े हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मानस शास्त्र के विषय को अगर हमने गहराई से जाना तो पता चलता है पेरेंटिंग यह विषय अपने आप में बहुत विशाल और बहुत नाजुक विषय है। हमें समझना पड़ेगा नई पीढ़ी को, नए बच्चों को, जो एक अलग विलक्षण अलग प्रकार के विश्व में रह रहे हैं, उनके साथ में जो अब तक इंसानों के हाथ में नहीं थी वो चीज़ आ गई है, और वो है स्मार्टफोन। पेरेंटिंग इस विषय को हम थोड़ा अधिक विस्तार से जानेंगे और शुरू से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। आजकल बहुत बड़ी समस्या जो पालकों को है वो ये है कि बच्चों का मोबाइल एडिक्शन के कारण वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। मोबाइल एडिक्शन के कारण माइंड कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है। बच्चा परफॉर्मेंस स्कूल में जब भी करता है तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। उसके पीछे के कारण क्या है और इसको हमने कैसे हैंडल करना चाहिए? सबसे प्रथमतः ये जान लीजिए कि कुछ माता पिता बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चों को ये ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा चिल्लाते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, एक्शन ली और उसका मोबाइल उसके हाथ से छीन और उसका मोबाइल उसके हाथ से छीन लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा रोएगा, मारामारी कर सकता है, घर की चीज़ों को तोड़ सकता है। इन सब चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें, स्मूथली उसको कैसे हैंडल करना है, इसको इसकी चर्चा आज हम मुख्यत्व करने वाले हैं। पेरेंटिंग के अंदर एक विचित्र चीज़ आ जाती है कि जितने माता पिता होते हैं उनको लगता है कि उनका बचपन जो गुजरा वो बिना किसी टेक्नोलॉजी के गुजरा। इसके लिए नई पीढ़ी जो है उसके पास विचित्र चीज़ हाथ में आ गई है और गलत तरीके की चीज़ें हाथ में आ गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। 25-25 साल के पीढ़ियों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि आज के पेरेंट्स को तकलीफ है कि बच्चों के हाथ में स्मार्ट फोन आ गया। जो पेरेंट्स अभी अपने 30-35 या 40 साल की उम्र में हैं, वो याद करके देखें उनके बचपन में प्रॉब्लम क्या थी। उनके माता पिता टीवी के, मतलब बहुत सारे टीवी चैनल्स जो है उसको लेकर के परेशान थे और कहा करते थे कि ये टीवी ने बच्चों को बिगाड़ दिया। उनसे भी 25 साल पहले की हम बात करेंगे तो उस वक्त तो केवल दूरदर्शन था, फिर भी माता पिता को यह समस्या थी कि बच्चे हमारा ज़्यादा टीवी देखते हैं। उससे पहले 25 साल की बात करेंगे तो पता चलता है कि उस वक्त रेडियो था यानी ट्रांजिस्टर, और बच्चे बहुत ज़्यादा फिल्मी गीत सुनते हैं, ये तकलीफें थी। कुल मिलाकर के हर एक पीढ़ी को ऐसे लगता है कि आने वाले पीढ़ी को नया मिला हुआ तंत्र ये खराब वस्तु है और हमें जो अपने बचपन में दिया गया था दैट वाज द बेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। माता पिता को अब टेक्निकली शिक्षित होने की जरूरत है। सबसे प्रथमतः यह ध्यान में लीजिए, स्मार्टफोन बुरी चीज नहीं है, स्मार्टफोन फालतू नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का एक्सटेंडेड ऐसा हिस्सा है। दूसरी भाषा में कहे तो यह एक जिन्न है जो अलादीन के चिराग के अंदर से निकलता है, उस प्रकार से उसको आप जो भी आज्ञा दोगे, जो भी हुक्म देंगे तो उसका वो पालन करेगा। जिन्न प्रकट होके कहता है हुक्म मेरे आका। बच्चों को यह सिखाना जरूरी हो जाता है कि मोबाइल फोन को अपना फ्रेंड बना दीजिए, अपना टीचर, अपना मेंटोर बना दीजिए। उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है इसका प्रशिक्षण स्वयं माता पिता उनको देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया, अब होता क्या है, कई बार गलती कहाँ पे हो जाती है। माता पिता ही बच्चों को एडिक्टिव कैसे बना रहे हैं अनजाने में, उसका हम सबसे प्रथमतः विश्लेषण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा छोटा है, कितना 5-6 साल का, खाना नहीं ठीक ढंग से खा रहा है, तो माँ ये नहीं कहेगी कि उसकी रेसिपी खराब है, माँ ये नहीं कहेगी कि वो बेस्वाद का खाना उसने पकाया है, माँ ये कहेगी कि उसके हाथ में मोबाइल दे दो ना। जब बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया कि माँ फिर उसके मुंह में क्या क्या ठूस रही है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। माँ को तो बड़ा आनंद होता है कि देखो देखो मोबाइल चालू कर दिया और बच्चे ने पूरा खाना खा लिया। अब धीरे धीरे करते करते यह आदत बुरी आदत में परिवर्तित हो जाती है। कहीं पर अगर हम मेहमान बन के जाते हैं, पारिवारिक कुछ गैदरिंग वगैरह होंगे, तो हम बच्चों को लोगों के साथ में घुलने मिलने देने नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, उनको मोबाइल फोन दे देते हैं, बोलते तो बेटा कोने में बैठ ले और गेम खेल ले। क्यों? क्योंकि मुझको मेरी सहेली से बात करनी है, मुझको मेरे रिश्तेदार से बात करनी है, मुझको मेरे दोस्तों से बात करनी है और बच्चों को मैं अवॉइड करना चाहता हूं, तो बच्चों को मैंने ही आदत लगा दी कि जा तू अपने मोबाइल के साथ में खेल ले। अब ये मोबाइल फोन बड़ी अद्भुत चीज है। अब इसके अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति है और ये शक्ति है दृक् श्राव्य शक्ति, यानी कि उसके अंदर कुछ दिख रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, और वो भी कैसे, जब तक मैं चाहूं और जैसे मैं चाहूं, तो ये मेरा गुलाम हुआ। अब ये गुलामी की जो चीज है ये बच्चों को बेहद पसंद आती है। यार बोलते खाना खाने के लिए जाए तो मम्मी कंट्रोल कर रहे हैं, स्कूल में जाए तो टीचर्स कंट्रोल कर रहे हैं, घर में पिताजी आ जाते हैं तो वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी वस्तु है जिसको मैं स्वयं कंट्रोल कर सकता हूं, जिसके अंदर अलग अलग प्राणी, अलग अलग चित्र मुझको दिखाई देते हैं, जिनका स्वामी मैं हूं, और जिसके कारण बच्चों के अंदर अहंकार पनपता है और ये नौकर यानी कि उसका डिवाइस उसको बेहद पसंद आने लगता है। समस्या तब शुरू हो जाती है जब अतिरिक्त समय यानी जिसको हम कहते हैं एडिक्शन लगने के चांसेस जब तैयार हो जाते, तब तो सबसे प्रथम तो जानना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय एडिक्शन, यानी किसी चीज की हमें आदत लग जाती है, ऐसा क्यों?
0: जी डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारे जीवन में हम कभी कभी किसी चीज़ की आदतीय हो जाते हैं, और ये आदत क्यों लगती है, क्या कारण है और इससे छूटना क्या आसान है, इस विषय को आगे हम लोग सुनेंगे, डॉक्टर ईश्वरलाल जी विस्तार से बताएंगे हमें। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और बहुत ही अच्छा विषय जो है आज डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है पेरेंटिंग के बारे में। और ये टीचर्स, माता पिता और बच्चे, हम सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय हम सभी लोगों का, और ये ट्रायंगल मिस्ट्री को सॉल्व करेगा, सबको सुकून देने वाला है। तो बहुत ही अच्छा विषय है। और हमारे साथ आज एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी, जिनसे बातें हो रही है तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आइए, जैसे कि आदत की बात हो रही थी तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब यहाँ पर क्या होता है, किस तरह से ये आदत के अधीन क्यों हो जाते हैं? मतलब किसी भी चीज़ को हम, जैसे मोबाइल के हो या किसी को पीने का होता है, किसी को ड्रग्स का हो जाता है, तो ये एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है?
1: एडिक्शन यानी कि आदत लगना, ये इसके कारण होता है कि हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक स्त्रव होता है, हार्मोन होते हैं, वो बहने का या स्त्रवने का काम शुरू होता है। अब ये डोपामाइन करता क्या है? डोपामाइन जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर प्लेजर यानी कि आनंद की भावना, सुख की भावना को निर्माण करता है। यह डोपामाइन हमारे स्लीप को भी कंट्रोल करता है, नींद के विषय को कंट्रोल करता है। डोपामाइन हमें मन की शांति देता है और डोपामाइन हमें गुस्सा भी दिला देता है, यानी कि हाइपर एक्टिव भी हमें बना सकता है। डोपामाइन जैसे जैसे बहने लगता है वैसे वैसे हमें उस चीज़ के बारे में आकर्षण पैदा हो जाता है, और डोपामाइन के कारण उस चीज़ के हम धीरे धीरे गुलाम बनने लगते हैं। और यही एग्जैक्टली हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ में होता है कि पहले वो मेरा गुलाम था और करते करते करते मेरे डोपामाइन ने मुझको ऐसे संकेत देने का काम शुरू कर दिया कि मैं स्वयं इसका गुलाम कब बन गया मुझको ही मालूम नहीं। कई बार पेरेंट्स ने इसको देखा होगा कि बच्चे को मन चाहा उसका मोबाइल खेलने देते हैं, उसके बाद में वो शांत हो जाता है और सो जाता है। ये क्या होता है? ये इसी के कारण होता है क्योंकि मन को शांत करने वाले ऐसे कुछ तत्व बच्चे के ब्रेन में प्रवाहित होने लगते हैं। इसी के कारण आजकल हम देखते हैं केवल बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी जब तक उनको नींद नहीं आती है तब तक वो अपने मोबाइल को देखते रहेंगे, उसके अंदर सर्फिंग करते रहेंगे। डोपामाइन की समस्या ये है कि ये हमें पूरी दुनिया भुलाने का काम शुरू कर देता है। हमें मालूम होता है कि ये काम हमने नहीं करना चाहिए या दूसरा काम करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी जब हमें आदत लग गई तो हमने उसको बार बार छूना है, मोबाइल के स्क्रीन को बार बार देखना है, ये इसी के कारण होता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि एक केमिकल है जो डोपामिन नाम है और ये हमें सुकून देता है, आनंद देता है, और इसका जो है बढ़ना या फिर ये निकलना दिमाग से, है ना, कोई भी केमिकल है जो है वो दिमाग से निकलता है, ब्रेन से ही रिलीज़ होता है। तो निश्चित तौर पे हमारा ब्रेन तब रिलीज़ करता है जब हम किसी चीज़ से सुख पाते हैं। तो निश्चित तौर पे मोबाइल हमें जो है कुछ चीज़ें दिखाता है, कलर्स दिखाता है, कोई मल्टी स्क्रीन वाला चीज़ है, और हाथ में आते ही हमें खुशी होती है और हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है ये चीज़ को देखकर एक्टिवेट कर देता है डोपामिन को, और फिर हम इसके डोपामिन वहाँ हमें मन को सुख देता है और यहाँ हमारी शरीर जो है मोबाइल से सुख लेना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम इसके गुलाम होते, मालिक होते हुए भी। तो अब ये चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें, इसके आगे की फार्मूला क्या है कि हम, जैसे हमारे विद्यार्थी मित्र है जो पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ने का छोड़कर इसी मोबाइल में लगे तो उनकी तो पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर लाइफ ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा न हो कि वो कंट्रोल में आ जाए, उनका डोपामिन भी पढ़ाई में लगे और इन आदतों से भी छूटे, इसके लिए क्या फार्मूला है, क्या हो सकता है?
1: धन्यवाद रमेश भाई, थैंक यू। तो हम ये इसकी चर्चा कर रहे थे कि ये डोपामाइन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे या मोबाइल की आदत को कैसे छुड़वाया जाता है। तो सबसे प्रथमतः पेरेंट्स ने ये जानना है कि अचानक, मतलब जब आपका बच्चा मोबाइल के अंदर डूब गया है, अंदर वो खेल रहा है, तो उसको अचानक उसके हाथ से मत ले लीजिए। बच्चा पागल हो जाएगा, चिल्लाएगा और ओवर रिएक्ट करेगा, शायद किसी चीज़ को, किसी वस्तु को फेंक कर मारेगा। यह ठीक उसी प्रकार से होता है कि जैसे किसी शराबी को हम अचानक उसके अंदर से जागरूक करना चाहते हैं और वो अचानक से वायलेंट हो जाएगा। अब इस समस्या को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है, ये मन को शांत करने का डोपामाइन काम कैसे करता है। आपने कभी टीवी पर, सिनेमा में या किसी आश्रम में देखा होगा कि लोग ध्यान के लिए बैठते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में आपने देखा होगा सेंटर पे लोग आते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, एकाग्रता वहाँ पे कर रहे हैं। ये मन जब एकाग्र होता है तो ध्यान करने वाले लोगों का आप निरीक्षण कीजिए, कैसे है वो। वो अपने शरीर की कम से कम न्यूनतम वो मूवमेंट कर रहे हैं या बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, निश्चल हो गए हैं, जरा भी मूवमेंट नहीं है। दूसरा, उनके सांसों की गति को देख लीजिए, इनकी सांसों की गति जो है ये बहुत धीमी हो गई है, उनके खून की रफ्तार बहुत स्लो हो गई है, शांत हो गई है। अब मोबाइल खेलने वाले बच्चे का आप निरीक्षण कीजिए एज अ थर्ड पर्सन, क्या कर रहा है, उसके उंगलियों की या हाथों की उसकी हल्की सी मूवमेंट हो रही है। फिर क्या कर रहा है, दोनों आंखें जो वो गड़ाए हुए हैं ये स्क्रीन के ऊपर, उसकी सांसें धीमी चल रही है, उसकी खून की रफ्तार धीमी गति से चल रही है और संपूर्णतः वो कॉन्सेंट्रेट हो गया है, शून्य के जैसे एकाग्र हो गया है मोबाइल के विषय के अंदर। यानी अगर वो कोई गेम खेल रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, संपूर्ण एकाग्रता वहां पे गई है। अब इस एकाग्रता को हमने अचानक से भंग कर दिया तो एकाग्रता भंग होने के कारण गुस्सा आ जाता है। उसी प्रकार से गुस्सा कि अगर कोई व्यक्ति, पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग भी अगर है और ध्यान की शून्य की अवस्था में गए हैं, बैठे हैं शांतिपूर्वक, और किसी व्यक्ति ने आकर के उनको जगा दिया, अचानक नींद से जगा दिया, या दूसरा एग्जांपल मैं बता दूं, यही ठीक हमारा होता है रात को 1:30 बजे या 2 बजे के बाद में, जब हम स्वयं सो जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, तो हमारा निरीक्षण करें, मतलब थर्ड पर्सन का हम निरीक्षण कर सकते हैं, क्या स्थिति है उसका। शरीर संपूर्णतः फ्लैट है, उसके शरीर की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, उसकी सांसें जो है बहुत धीमी गति से चल रही है, उसका रक्त बहुत धीमी गति से चल रहा है, संपूर्णतः एकाग्र है, फोकस्ड है, शायद कोई सपना देख रहा है, शायद गहरी निद्रा में है। अब उसको अचानक रात को 2 बजे आप अचानक उसको जागृत कर देते हैं, उठ जाओ उठ जाओ, क्या रिएक्शन हो जाएगी उस व्यक्ति के। पहले 2 सेकंड उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, और बाद में आपने उसको नींद से जगा दिया इसी के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाएगा। तो ये गहरी निद्रा आखिर में क्या है, वहां पे भी वही होता है जो ध्यान की अवस्था में हो रहा है, शांति। जब हम ध्यान के लिए एक्चुअल बैठते हैं, जैसे लोग सेंटर्स में आकर के बैठते हैं ब्रह्मा कुमारीज के, तो ये हो जाता है मन की शांति, शांत बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से मोबाइल खेलने वाला बंदा जो है, हमारा बच्चा जो है, ये एकाग्र हो गया है। अब उसकी एकाग्रता को अचानक भंग नहीं करे, अचानक अगर आपने मोबाइल को छीन लिया तो क्या हो जाएगा, मारामारी हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा तेज गुस्सा करे। जैसे कि हम अगर देखते हैं कि बहुत ज्यादा गहरी निद्रा में कोई है या गहरे ध्यान की अवस्था में कोई बैठा हुआ है, तो उसको आप कभी पुकार करके देखिए, उसको आवाज लगा करके देखिए, उसके गात्र यानी पंच इंद्रिय जो है वो एकाग्र हो चुके हैं, वो आपकी आवाज को नहीं सुनेगा। ठीक वही प्रक्रिया मोबाइल खेलने वाले बच्चे के साथ में हो रही है, और उसकी माँ उसको पुकारती है, किचन के अंदर से उसको आवाज देती है कि बेटा खाना तैयार है या कुछ भी एक्स वाई जेड काम, तो बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, तो माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो 2 बार 3 बार बच्चे से बात करेगी, उसको तेज गुस्सा आ जाता है, नजदीक आ जाएगी, मोबाइल छीनेगी, शायद उसको एकाध झपड़ भी लगाएगी। सो दैट इज रॉन्ग बिहेवियर, ये बहुत गलत तरीके से हम अपने बच्चों के साथ में पेश आ रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, बच्चे 1 बार 2 बार 3 बार आपकी बात को सुनेंगे, उसके बाद में घर के संस्कार अगर अच्छे हैं तो बच्चा म्यूट मोड पे चला जाएगा, यानी किसी से भी बातचीत करना बंद करेगा, ये पहली रिएक्शन आएगी। या दूसरी रिएक्शन ये आ जाएगी, उसका एक्सट्रीम रिएक्शन, कि उसको अपने दोस्त प्यारे लगने लगेंगे, फिर वो क्या करेगा, किसी चौराहे पे बैठा, किसी दोस्त के घर पे जाकर के बैठा, तो वहां पे जाकर के ये लोग मोबाइल खेलने लगेंगे, और इसी के कारण पबजी के जैसे जो हिंसक ऐसे गेम होते हैं उसके अंदर जाकर के लोगों के बहुत ज्यादा दोस्त बन जाते हैं, पक्के दोस्त बन जाते हैं, और घर के लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। तो अगर माता पिता को दुश्मन नहीं बनना है, बच्चे को अगर हैंडल करना है या बच्चे के हाथ से मोबाइल अगर लेना है तो लेते कैसे हैं, एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूं, लेकिन ये ट्रिक बहुत ज़्यादा कारगर साबित करेगा। और ये क्या करना है, खास करके माँ ने, अगर पिताजी घर पे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पिता भी ये अगर करे तो भी चलेगा। सबसे प्रथमतः मोबाइल के अंदर जो बच्चा डूब गया है, बहुत गहराई से उसको अगर खेल रहा है, तो बच्चे के पास जा करके लेफ्ट हैंड को उसके सहस्त्रार चक्र यानी सर के ऊपर रखना है। दैट इज स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, हमारा राइट हैंड उसके सहस्त्रार यानी के उसके सर से लेकर के पीठ से होते हुए उसके पीठ के अंत तक लेना है, एक बार, दो बार, तीन बार। ये क्या हो जाता है कि कुंडलिनी शक्ति अंदर से जब जागृत हो जाती है और बच्चा जब एकाग्र हो गया है तो पहले इसके चक्र जो खुल गए हैं उनको हमें बंद करना पड़ेगा। और उसका ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है कि जब हम हाथ घुमाते हैं तो बच्चे को अपने हाथ के द्वारा प्यार का एहसास हो जाता है, उसके ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन तैयार हो गया है, जिसको खाद मिल रही है किसके द्वारा, मोबाइल के स्क्रीन के द्वारा, अब ये उसका अंतर्मन उसको कहता है कि नहीं, इससे बेहतरीन चीज मुझको कुछ मिल रही है, क्योंकि स्पर्श के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा उसको प्रेम की भावना मिल रही है। और तीन बार केवल हम उसके पीठ पर हाथ घुमाते हैं तो बच्चा जो है वो अपने ध्यान की निद्रा से जागृत अवस्था में आ जाएगा और पूछेगा, हाँ बोलो मम्मी। और फिर तभी हम क्या करेंगे, हम उसके हाथ से मोबाइल अचानक खींच करके नहीं लेंगे। बच्चे ने अगर उस वक्त मोबाइल बाजू में रख दिया, बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज हम दूसरे तीसरे किसी विषय पे बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे से प्रेम पूर्वक उसके हाथ से मोबाइल ले लेते हैं। और मान लीजिए बच्चा अगर किसी गेम में है, हो सकता है उसका टारगेट कंप्लीट ही होने वाला है और उसको हमने जगा दिया, तो बोलेगा, मामा थोड़ा सा एक मिनट के लिए मैं जरा टारगेट कंप्लीट करूं। उसको टारगेट कंप्लीट करने दीजिए, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा उसके लिए रुक जाइए, एक मिनट, दो मिनट के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, एक मिनट, दो मिनट रुक जाइए, उसको उस अवस्था से बाहर लेकर के आइए। अब उसका मोबाइल हम लेंगे अपने हाथ में, बाजू में रख देंगे और उसको हम एहसास दिला देंगे कि भाई कितने समय के लिए आप खेल रहे हैं। ध्यान रखिए, हमेशा बच्चों को डोज नहीं पिलाना है, बच्चों को हमेशा लेक्चर नहीं देना। मैं किसी किसी पेरेंट को देखता हूं, अरे बाप रे, हर एक घंटे में, आधे घंटे में लेक्चर देना शुरू, लेक्चर देना शुरू, या तो फिर क्या करेंगे, उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। दैट इज अगेन रॉन्ग पेरेंटिंग, क्योंकि उसका अंतर्मन अब जागृत हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि उसके चक्र जागृत हुए हैं, तो चक्र जागृत होने के बाद में जितनी पॉजिटिव बात आप करोगे उतना वो एब्सॉर्ब करने वाला है, और निगेटिव भी बात करोगे तो भी उसको वो एब्सॉर्ब करेगा और उसके बाद में उसको छोड़ेगा नहीं और आपसे वो दुश्मनी ले लेगा। तो सकारात्मक बात ये हम करते हैं कि बेटा देखिए, आप अभी एक घंटे से या आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया खेल रहे हैं, पढ़ाई करनी है कि नहीं है, या आपके स्कूल में कुछ होमवर्क तो दिया होगा। अच्छा बताइए तो स्कूल में क्या हुआ था, अच्छा इस टीचर ने क्या होमवर्क दिया। उस प्रकार से हम अलग प्रकार से उनको पेरेंट ये पढ़ाई के सब्जेक्ट के ऊपर धीरे से ट्रैक को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना शुरू कर देंगे। आगे हम जानेंगे कि मोबाइल के द्वारा बच्चों को कैसे ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो आने वाली तांत्रिक बदलाव, आने वाले तांत्रिक बदलावों को एक्सेप्ट कर सके और हमारी सनातन धर्म की वैल्यू जो है, हमारे प्राचीन परंपराएं जो है, ये विषय हम इसके अंदर टिंट के द्वारा हल्का हल्का कैसे डालते हुए जाएंगे।
0: डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमें जो है टर्निंग पॉइंट की तरफ बच्चे को ले जाना है और डोपामाइन भी उनका जो है अच्छा काम करता रहे और उनकी आदतों में जो है एक बहुत बड़ा ट्रैफिक चेंज स्लो एंड स्टडी के साथ हम लोग कर सकते हैं, ताकि बच्चा जो है परमानेंटली बुराइयों से बचे रहे और अच्छी चीज़ों की तरफ आकर्षित होता रहे। ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कुंडलिनी जागृत वाला, और कैसे बच्चों को डील करना है बच्चों के साथ में, ये भी आपने बहुत ही अच्छी बात बताया। जैसे आप आशीर्वाद की तरह जो है सर पे हाथ फेरेंगे तो एक प्यार जो है बच्चे को मिलेगा और बच्चा जो है आपकी बात मानने के लिए तैयार होगा। अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे तो आपने करके भी देखा होगा कोई बच्चा नहीं सुनता। तो आइए आगे इसी विषय को लेकर और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ साधना सरगम। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चंदा रे चंदा रे, कभी तो जमीन पर बैठेंगे, बातें करेंगे।
2: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा विषय लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेरेंटिंग के बारे में। पेरेंटिंग की बात बहुत ज़्यादा जो है विस्तार से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आज हम जो बातें करेंगे वो बच्चे और माता पिता के बीच में एक समन्वय हो और बच्चों की या बड़ों की जो आदतें हैं वो एडिक्शन से कैसे फ्री हो सके, वो चीज़ें हमने प्राथमिकता के साथ आज के इस एपिसोड में बातें की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब बात हो रही थी योग की, बच्चे के लिए एक जो है पेरेंटिंग कैसे हो, बच्चे को कैसे हम अपने साथ में रखे, उसे प्यार दुलार दे और उसके पॉजिटिव इमोशन के साथ में उसकी पॉजिटिव शक्तियों को कैसे बढ़ाएं और उनके करियर को कैसे बेहतर बना सकते हैं उनके आदतों में बदलाव करके। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं जी। डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर।
3: धन्यवाद रमेश जी। अब हम ये चर्चा कर रहे थे, बहुत रोचक और रोमांचक ऐसी चर्चा हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है कुछ चीज़ें हमें बताने के लिए, क्योंकि पेरेंटिंग या सब्जेक्ट केवल मन का नहीं है, केवल तन का नहीं है, ये अंतर्मन का और आत्मा के लेवल का भी विषय है। इसी के लिए और ज़्यादा गहन और बेहतरीन ढंग से चर्चा होना ज़रूरी है। मोबाइल फोन के अंदर क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इसकी थोड़ी सी रिसर्च अपने माता पिता ने करना बेहद ज़रूरी है। साइंस को रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे चैनल्स होते हैं, इंस्टाग्राम में चैनल्स होते हैं, तो उसको सब्सक्राइब करके रखना, बच्चे का जो नंबर होगा उसके अंदर भी उसको सब्सक्राइब करके रखना। और वाकई में जैसा कि इंस्टाग्राम को अगर आपने देखा तो ये जिंदगी जैसा काम करता है। जो भी ऐसे कहा जाता है, उसके पुख्ता सबूत अपने पास नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि हर एक मोबाइल की जानकारी जो बड़े बड़े जायंट है यानी फेसबुक या गूगल, उनके पास होती है। जो भी कुछ चर्चा आप घर में कीजिए, नए जूते लेने हैं या नया टीवी लेना है, कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम जब आप सर्फ करने लगते हैं तो उस प्रकार की एडवर्टीजमेंट सामने आना शुरू हो जाता है। कोई भी विचार, जब भले मोबाइल आपका स्विच ऑफ है, और कोई भी विचार आप जब फैमिली में या किसी मित्र के साथ में डिस्कस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसी प्रकार के चित्र या उसी प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स या उसी प्रकार के वीडियोस आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, वाकई में जिंदगी जैसे ये काम करता है। हो सकता है कि इसके अंदर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी है कि जो हमारे मन के अंदर के विचारों को कैच करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, कार्टून से रिलेटेड यानी कि कार्टून की परिभाषा में या कार्टून के वीडियोस के अंदर गहन विषय को आसान करके बताया हुआ है, कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं, कुछ बोधप्रद कहानियां हैं। ऐसे चैनल्स को हम अपने इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर हम उसको सेव करके रखेंगे और ये मोबाइल सेव किया हुआ चैनल हम बच्चों के मोबाइल के अंदर भी सेव करके रखेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि बच्चा जब भी एक सर्फिंग करना शुरू करेगा तो उसको उसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो सामने आना शुरू हो जाएगा, जिसका निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम बच्चों के ऊपर होता ही है। अब होता क्या है, अपने टाइम पास के लिए माता या पिता कोई भी अगर है, वाहियात वीडियोज अगर देखते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी चैनल के ऊपर वाहियात वीडियोज अगर देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर अगर वाहियात वीडियोज देख रहे हैं, और ये कभी ना

0: भी बच्चों के समझ में आ जाता है तो बच्चे को पता चलता है कि यार ये लोग तो दोगुला बात करते हैं, दो मुंह की बात करते हैं, मुझको तो बोल रहे हैं माइंड कंसंट्रेशन करो, पढ़ाई करो, ये करो, और ये लोग देखो चोरी चोरी कितने गंदे गंदे वीडियोस देखते हैं, तो मेरी मम्मी कितनी बेकार है, मेरे पापा कितने बेकार हैं। क्यों कभी ना कभी बच्चों को ये चैनल दिखाई देते हैं या ये नंबर हमारे आपस में जुड़े हुए होने के कारण। एग्जाम्पल बता दो, टेक्निकल बहुत अच्छी जानकारी बता रहा हूं कि मैंने अगर मोबाइल का एक नंबर लिया तो उस मोबाइल को लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो मेरे स्वयं के डॉक्यूमेंट्स होंगे। बच्चे के लिए जब मैं दूसरा मोबाइल लेकर के देता हूं तो मेरे ही डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, जिसके कारण ये दोनों सिम कार्ड जो वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं समझिए कि आपने अगर इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ वाहियात वीडियोस ये देखे हुए हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उनका सर्वर एक ही जगह पे है, अलग प्रकार से टेक्नोलॉजी काम करती है, तो बच्चे के मोबाइल में भी वो रिफ्लेक्ट होने का शुरू हो जाता है। तो बच्चे का बिगाड़ने का काम कौन करता है? तो खुद माता पिता। लो कर लो बात, अगर आप स्वयं जिम्मेदार माता पिता बनना चाहते हैं तो ये परिवर्तन, ये बदलाव लाइए। ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि बच्चे के मोबाइल के अंदर भी अच्छे वीडियो, जानकारी वाले वीडियोस, कुछ प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मंदिरों के बारे में जानकारी देने वाले वीडियोस, ध्यान धारणा के बारे में जानकारी देने वाले वीडियोस, ये भी उसके मोबाइल के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के ऊपर चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस है कि जो केवल लेक्चरबाजी नहीं, वो बच्चों को उसके अंदर बड़ा परेशानी वाला काम हो जाता है। कई बार ये होता है ना, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको शायद वो चैनल अच्छे लगे कि कोई एक धर्मगुरु आ गया है और वो धर्मगुरु रट रट रट रटाई बातें जो है वो बोल रहा है और ये बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो सुन रहा है। ऐसा वीडियो अगर बच्चे के हाथ में हमने दिया हो तो बोर हो जाएगा, बोलेगा ये क्या चीज़ है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। तो हमें बच्चों के एंगल से समझना पड़ेगा कि इसको कौन से विषय किस प्रकार से ये समझ में आएंगे, और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किए हुए लोग हैं, उनके चैनल्स को हमें ढूंढना पड़ेगा, अपने आप को हमें उसके अंदर डालना पड़ेगा। क्योंकि ये मोबाइल फोन नामक नया जिन्न जो हमें मिला हुआ है, ये जिन्नात क्या कर रहा है, ये जिन्नात हमारे ऊपर डिपेंड है कि उसको हम किस काम के ऊपर लगाएंगे। और जैसे जैसे आप अच्छे काम के लिए लगाएंगे, धीरे धीरे वाकई में बच्चों के वाहियात गेम खेलने का या टाइम पास करने के उनकी आदत जो लगी है, डोपामाइन जो तैयार हो रहा है अमुक गेम को लेकर के, इसको हम चेंज जैसे ही करना शुरू कर देते हैं, अब यह डोपामाइन धीरे धीरे अंदर कम तैयार हो। एक उदाहरण यहाँ पे मैं देना चाहूंगा, जैसे कि अगर आपने किसी शराबी को देखा, शराबी मतलब वो वाला नहीं, शराबी मतलब के घर में जो हाई क्वालिटी की ये शराब रखते हैं और कभी महीने में एक आध दो बार वगैरह उसका सेवन करते हैं, या हाई क्वालिटी का सिगरेट रखते हैं, या कुछ लोग गुटखा का सेवन करते हैं, कुछ लोग सिगरेट लेते हैं, तो उनको एक अमुक एक ब्रांड ही चाहिए। तो उनकी आदतें छुड़वाने के लिए कई बार उनके ब्रांड को हम छुपाने का काम करते हैं, वो ब्रांड अवेलेबल ही नहीं होगा उस प्रकार से करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो ब्रांड से उसका जो रिश्ता नाता या प्रेम जो जुड़ गया है वो टूटने के कारण क्या होता है, वो व्यक्ति फिर साधारण सामान्य होने के चांसेस तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने देखा तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अमुक प्रकार के गेम के अंदर उसको मजा आने लगता है, और गेम के साथ में जब प्रेम तैयार होता है, गेम के अंदर उस कैरेक्टर के ऊपर जब उसको प्रेम आने लगता है तो ये बड़ा दिक्कत वाला काम हो। इसी के लिए उस पर्टिकुलर गेम की जगह पे हम उनको बाधित करते हैं, अपने पाल्य को, अपने बच्चे को हम बताते हैं कि बेटा ये देखो ना, हम उनके साथ में बैठते हैं और बिल्कुल साथ में बैठ करके देख लेते हैं कि ये देखो कितना अच्छा वीडियो है, देखो ये कैसे व्यायाम कर रहा है, ये छोटे बच्चे देखो कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, या कोई गाना अच्छा गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, इस प्रकार के उनके साथ में। तो वाकई में बगल में बैठ करके बच्चे के कंधे के ऊपर हाथ रख करके बहुत प्रेम पूर्वक आधा घंटा एक घंटा जितना बच्चे के साथ में हम बिता रहे हैं और उसको हम दिखा रहे हैं कि बेटा ये जिन्नात जो है, जिन्न जो है मोबाइल के नाम का, इसको हम अपने अच्छे काम के लिए कैसा यूज करते हैं, और देखो ये चीजें कैसे बेहतरीन आ रही है। जिससे दो काम हो जाएंगे, पहला तो एक ये कि बच्चे को एहसास हो जाएगा, अपने शरीर की गर्माहट उसको मिलेगी, बच्चे को एहसास हो जाता है कि माई पेरेंट, माई मम्मी या माई फादर इज विथ मी, माय पापा इज विथ मी, ये उसको एहसास दिलाएगा। और दूसरा, जब वो साथ में बैठते हैं तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि बच्चा कोई वाहियात वीडियो या कोई गेम वाला वीडियो वो देखे। और जब कि 24 घंटे में एक आध घंटे के लिए जब हम करते हैं, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके बच्चे की मोबाइल खेलने की आदत छूटने लगेगी। उसको मोटिवेशनल वीडियोस हम दिखाएंगे उसके लेवल के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 5 वर्ष का बच्चा है और उसको हम हायर लेवल के कॉर्पोरेट लेवल के वीडियोस दिखाएंगे, वो नहीं। छोटे बच्चे के उसकी मानसिकता के अनुसार जो वीडियोस होंगे वो जब ये आएंगे बताएंगे, तो यकीन मान लीजिए बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करेगा, बच्चा आपसे कभी गुस्सा नहीं करेगा और ये नींव डलती जाएगी कि आपका बुढ़ापा बहुत बेहतरीन ढंग से कटेगा, आपका परिवार कभी अलग नहीं होगा। अगर आपने ये नहीं किया, आज अगर आप बच्चे को बहुत डांटेंगे, आज अगर बच्चे को आप बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे, तो ये आपने बीज बो दिए हैं किस प्रकार के वृद्धाश्रम में जाने के लिए। हो सकता है आज से 25 वर्ष के बाद, 26 वर्ष के बाद आपका बच्चा, उसका अंतर्मन ये कहेगा कि ये बाप ने मुझको आईफोन लाके दिया था लाख रुपए का, लेकिन कभी प्रेम नहीं दिया। तो आपको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए ना। वृद्धाश्रम में जाइए, या दूसरा वृद्धाश्रम तैयार हो गया है और वो क्या, अपना स्वयं का घर, वो पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, और हम अपने खूबसूरत घर के अंदर कैद होकर के, बंद होकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि आज हमने अपने बच्चे को अच्छी आदतें नहीं लगवाई है। तो मित्रों, ये आदतें हमने, अच्छी आदतें लगवानी हैं। मोबाइल खराब वस्तु नहीं है, उसका अच्छा परिणाम साधने के लिए हमें कुछ चीज़ें पेरेंटिंग के अंदर आकर के अपने बच्चों को देनी है। थैंक्स अ लॉट। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा रमेश भाई का, आपके रेडियो चैनल का, आपके संपूर्ण टीम का। थैंक्स अ लॉट मुझको मौका दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू
1: डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, और आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को, माता पिता को और जो श्रोता मित्र हैं उन सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है आज के इस टॉक शो में जो बातें आपने बताया, जो मूल रूप से जिन चीज़ों पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते थे या बच्चों को डांट देते थे, उसको कैसे हम लोग डांटने के बजाय उससे प्यार करें और उसके अच्छे गुणों की तरफ हम आकर्षित रहे और उसे भी बताएं और उसके लिए उसको सपोर्ट करें, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताया। और जहाँ पर बच्चा अपने जो रुचि का विषय अगर लेकर काम करेगा तो वो आगे बढ़ेगा और सहजता से आगे बढ़ेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। और जब वो खुशी से कोई चीज़ करेगा और उसमें आपका सहयोग मिलेगा तो ज़िंदगी भर के लिए आपका बॉन्डिंग हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप निश्चित तौर पे मजबूत हो जाएगा, जिस तरह से डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी ने आप सभी को कार्यक्रम के दौरान अभी अभी बताया। तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें जो है हम सभी को एक परिवार एकता भी बना के रखता है पेरेंटिंग में, और साथ ही साथ हम बुरे चीज़ों से भी बचे रहते हैं और बच्चा जो है अपने गुणों के साथ एक्सेल करता है और अच्छा करता है और वो अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से फ्रेम आउट कर सकता है और माता पिता का नाम बड़ा कर सकता है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी, आज के इस एपिसोड में पेरेंटिंग का एक छोटा सा भाग आपने अपने साथ हमारे साथ शेयर किया और बड़ा मज़ा आया मुझे आपके साथ इस नॉलेज को सुनते हुए। आपने जो शेयरिंग किया बेहद खुशी हुई हमें, और हमारे श्रोताओं को और ख़ास बच्चों को बहुत इसका लाभ मिलेगा, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सम कहां, तुम कहां, हम कहां, ताल कहां, सम कहां, तुम कहां, हम कहां, तेरे कर तुम, ना लगड़ तुम, तेरे कर तुम, ना लगड़ तुम, हम तुम, नाता हाथ, खिपा था, लता हाथ, पता पाथ, मेरा कच करामत,
1: ताते छेता, ताते देता, ताते छेता, ताते देता, थैया, थैया, थै, तकत दूम, तकत दूम, तकत न्या

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज मेरे साथ बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया, जहां हम बात करते हैं बच्चों से उनकी दुनिया के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनकी अपनी अलग सोच के बारे में। तो मिलते हैं सभी बच्चों से। सबसे पहले हमारे साथ है शिवम। शिवम, आप अपने बारे में बताओ।
1: मेरा नाम शिवम गुप्ता है, मैं MP बाजौर से आया हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो शिवम?
1: 5th।
0: और उसके बाद युग। युग आप बताओ।
2: मैं सूरत वराचा से आया हूँ, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ।
0: और हर्ष?
3: मेरा नाम हर्ष है, मैं गुजरात के सूरत वराचा से आया हूँ।
0: और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
3: मैं 9th में पढ़ता हूँ।
0: ईश्वरी?
4: मेरा नाम ईश्वरी है, मैं पुणे से आई हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: 2nd।
5: मेरा नाम पायल सोलंकी है, मैं MP से आई हूँ, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम है कशिश सोलंकी, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
0: अरे वाह। तो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो?
8: हाँ दीदी।
0: तो रात को देखते हो कि दिन में देखते हो?
8: रात को
0: देखते हो। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपना कौन सा सपना कौन बताएगा, जिसको याद है, जो सबसे फेवरेट वाला सपना देखा हो, जो अभी तक याद है, कौन बताएगा? आपको याद है युग, आप बताओ।
9: मुझे एक सपना में संगीत का शौक आया ना, तो मैं संगीत के क्लास में जाने लगा, इसलिए मुझे बहुत शौक है संगीत का।
0: अच्छा, मतलब आपने सपना देखा कि आपको संगीत सीखना है, तो आप संगीत सीखने लगे?
9: हाँ दीदी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा सपना था जिसको आपने रियलिटी में बदल दिया, है ना? और किसी को अपना सपना याद है? और पायल, मुस्कान, आप लोगों को कोई सपना नहीं आया ऐसा जिसको देख के आप डर गए हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो? कोई भी नहीं, किसी को नहीं याद। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है? देखी है नहीं ना, तभी तो अच्छी बात है, क्योंकि डरावने सपने आते हैं ना उसको देख के। फिर
9: मैंने देखी थी।
0: तो कोई सपना आया आपको?
9: हाँ।
0: उसको देखने के बाद
9: जग गए?
0: नींद से जग गए? इतना डर गए कि नींद से जग गए। अच्छा, ये तो हमारे सपने जो हम रात को देखते हैं, आपको पता है हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। वो सपने होते हैं जो हमारी ड्रीम्स होती है ना, जो हम पूरा करना चाहते हैं। हमें लगता है हम स्कूल में ये करेंगे, वो करेंगे, या हम बड़े होके ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा सब सोचते हैं ना। अच्छा, तो फिर ये बताओ पायल, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनोगे बड़े होके?
10: मैं डॉक्टर बनूंगी।
0: डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप?
10: दीदी, मरीजों का इलाज।
0: मरीजों का इलाज करने के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान, आप बड़े होके क्या बनोगे?
11: मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी।
0: आप भी डॉक्टर बनोगे? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या अच्छा लगता है आपको? पता है उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, करोगे?
8: हाँ।
0: और कशिश, आप क्या सपना देखते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
12: टीचर।
0: टीचर? और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो?
12: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपको अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा शिवम, आप बताओ, आप क्या सपना देखते हो बड़े होके, क्या बनोगे?
13: मैं बड़ा होके सोचूंगा।
0: बड़ा होके सोचोगे कि क्या बनना है? अभी कुछ मन नहीं करता आपको बनने का, किसी को देख के? कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो शिवम बड़ा होके डिसाइड करेगा। पर युग ने तो डिसाइड किया होगा क्या बनना है?
9: संगीत कलाकार।
0: संगीत कलाकार? अरे वाह, संगीत कलाकार क्यों बनना है आपको?
9: मुझे एक बार देखा था ना एक संगीतकार को, इसलिए मुझे ऐसा रस जग गया कि मुझे जाना ही है इसलिए।
0: अच्छा, मतलब इतना मन करता है आपको उनको देख के। कि कौन सा म्यूजिक बजाओगे पहले ये बताओ, क्या बजाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो आप?
9: आधा गिता था है, थोड़ा सा दो के।
0: अच्छा चलो ठीक है, वो तो हम युग से बाद में सुनेंगे। फिर हर्ष, आप बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
3: बड़ा होकर CID बनना चाहते।
0: CID बनना चाहते हो? CID क्या होता है मैं बताओ तो?
3: वह देश की रक्षा के लिए एक कानून होता है।
0: अच्छा, तो आप क्या करोगे CID बनके?
3: हम सभी देख रहे हैं कि अभी देश में कितना जुर्म बढ़ रहा है और उसको मैं मिटाऊंगा।
0: देश में जुर्म बढ़ रहा है, उसको आप मिटाना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जुर्म मिटाना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर चीज में किसी ना किसी की सेवा होती है। और ईश्वरी, आप क्या बनना चाहते हो?
4: टीचर।
0: टीचर? टीचर क्यों बनना चाहते हो?
4: दीदी, बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: बच्चों को पढ़ाओगे आप? अच्छा, और पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं ईश्वरी, आपको तो पुलिस में जाना था ना? नहीं अच्छा हम अच्छा ये बताओ, आप लोग के जो मम्मी पापा है वो आप लोगों को कभी कुछ कहते हैं कि हम लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बताते हैं? कुछ बोलते हैं आपको कभी? किसी के भी नहीं? अच्छा स्कूल जब जाते हो तो कुछ ऐसा मनता है काश मैं ये करती या मैं वो करता स्कूल में, ऐसा वैसा कुछ भी सोचते हो कभी?
14: हाँ।
0: क्या सोचते हो बता?
14: मुझे कभी टीचर बोर्ड पे लिखने का कहते हैं इसलिए।
0: अच्छा मतलब आपको बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है? हाँ भाई सही बात है, बोर्ड पे लिखते हैं तो टीचर्स हमें बहुत तारीफ करते हैं ना। और कौन क्या सोचता है? ईश्वरी आप?
4: मुझे टीचर बताते हैं मैं स्कूल के बाहर जाऊंगी तो सब बच्चों का ध्यान रखना।
0: सब बच्चों का ध्यान रखना, और ये आपको अच्छा लगता है? अरे वाह। और पायल?
5: दीदी बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है। और मुस्कान को क्या चाहिए?
11: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना। आप बताओ पहले कशिश? कोई से भी कर लेते हो? तो क्या मन करता है सबसे ज्यादा आपका करने?
5: डांस।
0: डांस, अरे वाह। और आपका क्या मन करता है हर्ष?
3: मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी मेहनत से उसमें
0: प्राइज प्राप्त करोगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइज नहीं मिलता है तो क्या बुरा लगता है? किसी को भी नहीं?
9: किसी को लगता है पर हमें से नहीं
0: लगता है। आप में से किसी को भी नहीं लगता?
5: नहीं लगता।
0: क्यों बुरा नहीं लगता? अच्छा बताओ, बाकी लोगों को तो लगता है?
3: क्योंकि कभी कभी हमको भी प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता है।
0: इसलिए औरों को
3: जब भी औरों को प्राइज मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी मेहनत की, मैं उस स्टेज पर गया, यही सबसे बड़ा प्राइज
0: है। बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोगों को क्या लगता है?
5: दी हमको भी यही लगता है
0: कि उन्होंने भी मेहनत की है ना? बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, बड़े हो जाओगे जब सब कुछ करोगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? अभी तो मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है कि नहीं? तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे बताओ?
5: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: उनका नाम रोशन करोगे? और ईश्वरी आप क्या करोगे मम्मी पापा के लिए?
4: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: मम्मी तो अभी आपके लिए कितना सब कुछ करती है ना, खाना भी बनाती है, आपको लेके घुमाने भी जाती है, तो आप नहीं घुमाओगे मम्मी को जब बड़े हो जाओगे तो?
4: घुमाऊंगी।
0: तो बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें ध्यान रखना है ना, अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाना। और पता है क्या, मम्मी से आप प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना तो मम्मी खुश हो जाएंगी। और युग?
9: बड़ा सा घर बनाऊंगा, उसमें वो आराम से रहेंगे।
0: बड़ा सा घर बनाओगे जिसमें मम्मी आराम से रहेंगी, अरे वाह। और हर्ष?
3: हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े बड़े बड़े लड़के कैसे अपने मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा और वो जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा और उसका नाम रोशन करूंगा।
0: बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत सारा प्यार देंगे जो वो हमें अभी देते हैं, है ना? तो पायल आप क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे? और आप लोग मुस्कान? और
11: मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी और बड़े होके उनका नाम रोशन करूंगी।
0: मम्मी पापा की सेवा करोगे? आप क्या करोगे
5: दीदी? हम
0: आप भी सेवा करोगे? और ईश्वरी क्या करेगी? घुमाने लेके जाएगी मम्मी को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है बताओ? फैमिली में कौन कौन है घर पे?
5: मम्मी पापा दादी दादाजी चाची चाची।
0: अरे वाह आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है। तो इस फैमिली में आपका सबसे फेवरेट कौन?
5: दीदी मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा है? मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए।
5: हाँ।
0: और हमारी जो भी वो पूरी करते हैं ना, सारी इच्छाएं भी तो वही पूरी करते हैं, है ना? और आप बताओ ये?
9: वो जो हम कहते हैं वो सब ले देते हैं
0: इसलिए वो फेवरेट।
9: कैसी हो मंगा था तो उसने थोड़े दिन में ही मुझे ले दिया था बड़ा सा।
0: अच्छा पापा ने? और आपकी फैमिली में कौन कौन है?
9: दादी दादा और मैं और मम्मी पापा।
0: तो दादी दादा के साथ आप खेलते हो? अच्छा तो उनसे
9: वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं जो कुछ मांगू वो मुझे देते हैं
0: दादी दादा। अरे वाह। और आप बताओ पायल, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
5: मम्मी पापा दादा दादी
0: और सबसे अच्छा?
5: दीदी मम्मी पापा।
0: और सबसे फेवरेट कौन है आपका? मम्मी के पापा?
5: मम्मी।
0: क्यों, मम्मी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा, ईश्वरी की फैमिली में कौन कौन है?
4: दीदी, अग्रजा और मम्मी पापा।
0: और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको?
4: मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा अच्छे क्यों लगते हैं ईश्वरी को?
4: तो मुझे मैं कल ही चप्पल मांगी थी और आज ले आई।
0: अच्छा, और मुस्कान?
6: मेरी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची।
0: और आपका फेवरेट कौन है?
6: मम्मी और पापा दोनों।
0: दोनों मम्मी पापा हमारी विशेष पूरी करते हैं। और कोई भी स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
6: वो हमें बहुत प्यार करते हैं।
0: प्यार तो करते हैं, अगर डांटते हैं तभी बहुत प्यार करते हैं, नहीं है कि नहीं?
2: तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
0: हाँ, और आप बताओ?
4: दीदी हमको भी
2: वैसे कि हमको चित्र दौड़ना नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, तो हमको हमारी दीदी
0: मतलब जो मुश्किल लगती है वो दीदी सॉल्व कर देती है। अच्छा ये बताओ, घर में कभी लड़ाई होती है आप लोगों की? कभी गुस्सा होते हो क्या आप लोग?
2: कभी कभी होती है।
0: होते हो?
4: हाँ दीदी।
0: क्यों होते हो? क्या होता है जब आप गुस्सा
2: होते हो? एक क्वालिटी लाए होता उसमें से दो भाग करने पड़ते हैं, इसलिए भाई बहन में किसी का ज्यादा आता है किसी का कम आता है इसलिए।
0: अच्छा, जब दो भाग करने पड़ते हैं तब लड़ाई होती है, और इक्वल इक्वल हो जाए तो नहीं होती। हाँ, और शिवम तो कभी लड़ता नहीं होगा? नहीं। क्यों लड़ते हो आप? कान आपको मारती है? अच्छा, क्यों मारते हो? मुस्कान क्या करते हो आप, ऐसे शरारत करते हो? बताओ, ऐसे ही मारते हो? क्या शरारत करते हैं मुस्कान, बताओ?
6: वो कभी भी मस्ती करता रहता है, मेरी चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पे फेंक देता है।
0: आपकी चीजें फेंक देते हो ऐसा शिवम? कोई नहीं, तो दीदी की चीजें लेने का और फिर सही जगह पे रख देना, है ना? तो फिर दीदी नहीं डांटेगी, ठीक है? हाँ युग बोलो।
2: एक साइकिल होती है तो दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे चलाना है इसलिए।
0: साइकिल एक होती है तो दोनों झगड़ते हो, और फिर जीतता कौन है
2: भाई?
0: आप नहीं जीतते हो।
2: टीवी में भी सब लोग लड़ते हैं, आधा घंटा मेरा आधा घंटा तुम्हारा।
0: अच्छा, टीवी के लिए लड़ाई होती है?
2: हमारे घर में तो है ही नहीं, और मैं एक ही हूँ।
0: अच्छा, तो फिर लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या करते हो?
2: चुप हो जाते।
0: जो देख रहा होता है उसको देखने देते? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ईश्वर, आप कभी गुस्सा होते?
4: नहीं।
0: लड़ाई करते? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मम्मी से भी नहीं? मम्मी जब कहती है सब मानते हो?
4: हाँ।
2: मेरी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है।
0: झगड़ा होता
2: है? पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
0: आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? अच्छा, क्या होता है और फिर आप क्या करते हो उसमें?
2: टीवी के लिए मेरी दो बहनें हैं, वो झगड़ती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ।
0: टीवी के लिए झगड़ा होता है तो आप टीवी बंद कर देते? हाँ। हो और फिर जब दोबारा ऑन होता है फिर
2: रिमोट लेके भाग जाता हूँ।
0: अच्छा, और आप लोग बताओ, कशिश कभी झगड़ते हो?
4: हाँ दीदी।
0: क्यों झगड़ते हो?
4: दीदी मेरी छोटी बहन है, वो टीवी के लिए हमको रिमोट नहीं देती है, तो हम झगड़ते हैं। तो दीदी फिर कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते।
0: फिर उनको टीवी देखने देते हो?
2: हाँ।
0: अरे वाह, ये तो सारे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, झगड़ते नहीं और देखने देते हैं।
2: नहीं तो कोई प्लान बनाता है कि ऐसे करने का है, फिर ऐसे कर, फिर लेने का, जब वॉशरूम जाते हैं तब कोई ले लेता है ऐसे।
0: क्या प्लान बनाते हो?
2: मैं तो नहीं बनाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, क्या प्लान बनाते हैं बताओ सब लोग?
2: कोई बना रहा होगा, पर मैं तो कह रहा हूँ उसे।
0: अच्छा, और ईश्वरी आप तो झगड़ते नहीं हो ना?
2: और कोई टीवी देख रहा हो, पानी पीने के लिए जा रहा हो, तब भी कोई रिमोट ले लेता है। ऐसा भी बनाते हैं?

0: अच्छा, घर में तो सब लोग रिमोट के लिए लड़ते हैं।
1: हाँ,
0: और किसी बात पे लड़ाई होती है?
1: खिलौने से होती है।
0: खिलौने से? तो आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना। अच्छा, जब स्कूल जाते हो और फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब किसी की लड़ाई होती है क्या?
1: हाँ, कभी कभी होती है।
0: होती है?
2: हाँ दीदी,
0: सबकी होती है।
1: फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं।
0: मतलब लड़ाई होती है फिर हम सब अपने दोस्त भी बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान?
3: दीदी, मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरा बैग नीचे फेंक देती है बेंच।
0: तो मतलब वो आपको ऐसी टीज करते हैं, है ना? तो फिर आप क्या करते हो?
3: मैं भी उनका बैग नीचे फेंक देती हूँ।
0: तो बाद में फिर लड़ाई नहीं होती?
3: फिर वो टीचर से बोल देती है, टीचर उसको अलग बिठा देती।
0: और वापस फ्रेंड्स कैसे बनते हो फिर?
3: बन जाते हैं
0: तुरंत तुरंत। अरे वाह, है ना? तो क्या हुआ, लड़ाई की, उसके बाद तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, है ना? और ईश्वरी, आप लड़ते हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ कभी?
2: मेरे फ्रेंड मुझे धक्का देते हैं, फिर मैं भी फिर हम फ्रेंड्स बन जाते हैं।
0: अच्छा, और धक्का देते तो लगती नहीं है?
2: थोड़ी
0: थोड़ी। अच्छा, मतलब खेल खेल में ऐसा होता है। लेकिन जोर से नहीं देना, नहीं तो लग जाएगी चोट, फिर तो मम्मी से डांट पड़ेगी, है ना? और आप बताओ?
1: कभी झगड़ा हो जाता है।
0: क्यों?
1: बातचीत करते हुए।
0: बातचीत करते हुए झगड़ा हो जाता है?
1: हाँ।
0: फिर क्या करते हो?
1: मैं उसको अपना सीक्रेट बात बताता हूँ और वो किसी और को बता देता है।
0: अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा होता है?
2: दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी को, मेरी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो दूसरे को बता देती है।
0: अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप लोग? तो फिर क्या करते हो आप लोग?
1: कभी सीक्रेट हम किसी और को बता देते हैं।
0: अच्छा, दोनों लोग ऐसे करते हो?
1: हाँ।
0: और उसके बाद क्या होता है, फिर लड़ाई नहीं होती?
1: लड़ाई नहीं होती, ठंडा हो जाता है।
0: तो फिर अपने फ्रेंड से हमें बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारी जो बात है वो सबको नहीं बताने का। वैसे आप लोगों के सीक्रेट्स होते क्या है? क्या सीक्रेट होते हैं बताओ?
1: कहीं छुपने की जगह, जब खोपड़े खोपड़े खेलते हैं तो
0: छुपने की जगह सीक्रेट होती है, वो आपका फ्रेंड किसी और को बता देता है। हाँ, तो फिर आप उसको क्या सीक्रेट बताते हो?
1: उसकी भी जगह बता देते।
0: उसकी भी जगह बता देते हो?
1: वो तो पता कैसा चलता है कि उसकी जगह यहाँ है।
0: अच्छा, फ्रेंड ने जो जगह दिखाई होती है वो बता देते हैं। और आप क्या करते हो पायल?
2: दीदी, हमारी जो बात रहती है वो दूसरों को बताती है मेरी फ्रेंड, तो हम भी उसकी बात बता देते हैं।
0: क्या बात रहती है आपकी?
2: दीदी, ये तो भूल गए।
0: और उसकी क्या बात रहती है? अच्छा,
2: सब भूल गए।
0: सब भूल गए। कशिश?
4: दीदी, हमारे साथ
0: क्या होता है?
4: दीदी, कभी मेरी फ्रेंड कटर मांगती है तो हम नहीं देते तो लड़ने लग जाते।
0: कटर नहीं देते? अच्छा, तो शार्पनर जब आप नहीं देते हो और आपकी फ्रेंड लड़ती है, उसके बाद क्या करते हो?
4: कुछ भी नहीं करते, फिर से बोलने लग जाते।
0: फिर से बोलने लग जाते हो? अच्छा, अरे वाह। और यू?
5: हमारे स्कूल में एक लड़का बहुत ताकतवर है ना, मेरी ताकत सब उसकी टीम में ही जाते हैं। जब मेरी टीम मेरे साथ साथ ही आओ और फिर झगड़ा होता जाता है, फिर सब साथ हो जाते हैं।
0: आपकी टीम में कोई नहीं आता, सब उसकी टीम में चले जाते हैं।
5: मैं तो टीम रखते ही नहीं।
0: तो फिर आप भी उसी की टीम में चले जाया करो, है ना? अच्छा, ये बताओ मुझे, आप लोगों को अब तक सबसे ज्यादा मजा कब आया या सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, जब आपने बहुत एंजॉय किया हो या आपको बहुत अच्छा लगा हो, बताओ?
5: मैं मेरे मामा के साथ जब छुपा छुप गया था ना, वहाँ बहुत मजा आया था।
0: मामा के साथ क्या किया था?
5: वहाँ बहुत बड़ी राइड्स होती है ना, वो पानी में गिरती है ना
0: लहरें,
5: वहाँ बहुत मजा आता है।
0: अच्छा, मतलब आपको पानी में खेलने में मजा आता है मामा के साथ?
5: मेरे मामा भी आए थे।
0: अच्छा,
5: पहले तो मुझे बताया नहीं था, फिर मेरे मामा कह रहे थे ले जाओ ले जाओ मेरी मम्मी को, पहले तो नहीं कह रहे थे, फिर मेरे फिर क्या चल चल ले चलते हैं, फिर मुझे पता चल गया ना, तो मैंने कहा मम्मी को, देखा मुझे पता चल गया ना, मेरे मामा से भी नहीं बोलते ले जाते हैं।
0: मामा आपको लेके गए खेलने के लिए पानी में लहरों पे, तो आपको बहुत मजा आया।
5: हाँ।
0: अरे वाह। और आप बताओ शिवा, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
6: जब मेरे पापा उज्जैन में सीएसटी में मेरे को डुबकी लगवाते हैं तब।
0: डुबकी लगवाता उज्जैन में? अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे? और
6: मेरा वहाँ पे साथ साथ तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं।
0: अच्छा, डुबकी लगाने में बहुत मजा आता है, यानी सबको पानी में खेलने में मजा आता है?
6: हाँ दीदी।
2: हाँ
0: नहीं
2: दीदी।
0: हाँ, तो फिर बताओ हर्ष, आपको बताओ।
1: मेरा एडवेंचर्स बहुत ही फेमस है।
0: एडवेंचर में आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ। क्या करते हो आप?
1: इसे मैं एडवेंचर्स सीखूंगा तो बड़ा होके भी बड़े बड़े एडवेंचर्स करूंगा।
0: अभी क्या किया है आपने?
1: तेज स्केट चलाना और पानी में स्विमिंग कर।
0: तो आप स्केटिंग करते हो और पानी में स्विमिंग करते हो? हाँ। तो स्केटिंग कैसे आप सीखते हो? स्केटिंग तो उसको चलाने में मजा आता है आपको?
1: हाँ।
0: कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने?
1: हाँ।
0: क्या लिया है बताओ?
1: कंपटीशन में एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा सेकंड नंबर आया था।
0: अरे वाह, तो चलो सब लोग भैया के लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ईश्वरी, आपको कब मजा आता है सबसे ज्यादा?
2: डांस में।
0: डांस में? कौन से गाने पे डांस करते हो आप?
2: राधा के।
0: राधा के? अच्छा, तो स्कूल में डांस करते हो? और कौन सिखाता है आपको?
2: मैं, टीचर।
0: टीचर? और आपके बर्थडे पे मजा नहीं आता आपको? क्या करते हो बर्थडे पे?
2: सब लोग केक खिलाते हैं मुझे।
0: सब लोग आपको केक खिलाते हैं, इसलिए मजा आता है। और आप सबको केक नहीं खिलाते?
2: खिलाते।
0: खिलाते हो? अच्छा, पायल आप?
7: मुझे भी डांस में बहुत मजा आता है।
0: डांस में बहुत मजा आता है। आप किस गाने पे डांस करते हो?
7: दीदी सारे गाने पे करते हैं, बहुत सारे गाने।
0: सारे? बहुत सारे? मतलब स्कूल में जब भी डांस कॉम्पिटिशन होता है आप पार्ट लेते हो?
7: हाँ दीदी।
0: अरे वाह। और मुस्कान?
3: दीदी मुझे भी डांस में।
0: आपको भी डांस में मजा आता
5: है? दीदी मुझे।
0: अच्छा, डांस करना तो हमारी हॉबी, हमें पसंद। कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जिस दिन आपने बहुत इंजॉय किया हो? कुछ याद है आप लोगों को? कभी घर पे, स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हुआ हो तो आपको बहुत मजा आया हो, या कहीं गए हो घूमने? नहीं।
1: हाँ
0: बताओ।
1: बार एक योगा में कॉम्पिटिशन किया था और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। वो दिन मेरे को बहुत
0: मजा आया था। वेरी गुड। तो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हमें प्राइज मिलता तो मजा आता ही है?
1: और नहीं मिलता तब भी आता है।
0: नहीं मिलता तब भी आता है? नहीं मिलता तब क्यों आता है?
1: क्योंकि हमें जब प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता होगा ना। हम ऐसा सोचे कि वही हमको अगले साल मिलेगा, इसीलिए हम दुगनी मेहनत से फर्स्ट प्राइज में मिलेंगे हमको।
0: ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, दुगनी मेहनत करेंगे। और वैसे भी जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मजा आता है ना, वो हॉबीज में, गाने में, सिंगिंग में, डांस में, तो उसको एंजॉय करके हमें मजा करना चाहिए, है ना? अच्छा, अब ये बताओ, आप लोगों को मजा आता है, कभी बुरा लगता है किसी चीज का? घर पे या स्कूल में टीचर ने कुछ कहा या फ्रेंड्स के साथ या मम्मी पापा के साथ किसी चीज का बुरा लगता है कभी आप लोगों को?
2: नहीं।
0: नहीं?
2: नहीं,
0: किसी चीज का बुरा नहीं लगता कभी भी?
2: नहीं,
0: कभी नहीं लगा। युग?
5: कभी खाने में अच्छा नहीं होता, इसलिए
0: क्या होता है?
5: कभी खाने में करेला का साग होता है ना, इसलिए
0: करेला। अच्छा, तो करेला होता है इसलिए बुरा लगता है आपको। और फिर क्या करते हो, खाते हो कि नहीं?
5: फिर खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा खा लेते
5: हैं। रात में दूध पी के सो जाते हैं।
0: रात में दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, और आपको पायल?
2: दीदी किसी से नहीं किया जो।
0: कभी बुरा नहीं लगता? कभी कोई डांटता है या टीचर ने कुछ बोला तभी भी नहीं?
3: नहीं लगता।
0: और आपको?
5: नहीं लगता।
0: ईश्वरी?
2: नहीं,
0: ईश्वरी को तो कुछ बुरा लगता ही नहीं कभी, है ना? बहुत समझदार है। तो हम बात कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों से, उनकी दुनिया के बारे में, उनकी बातों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी आशाओं और उनके प्यार और उनके झगड़ों के बारे में। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे और नई और बच्चों के साथ। तब तक के लिए रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।
8: बाय।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हजार है, हप हप खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या?

0: गुड मॉर्निंग छोड़ हाथ
1: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
0: अरे 1 2 3 4
1: वन टू थ्री फोर
0: दूंगी थप्पड़ रखे
2: डाबरा
0: आया अंग्रेजी बोलने वाला
1: कॉपी गेस व्हाट वाटर स्टैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टिंग पटा

होए हुस्न की आगमी पलके, अरे होए रोशनी करते हम जलते, अरे जो मिलते नहीं ये तारे तो अंगारों से तन को सजाती हूँ मैं हुस्न की आगमी पलके, अरे होए रोशनी।

करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।